0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ तीना। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। यूके में एक नया विधेयक मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता सौंपे जाने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किए गए इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले शागस वासियों की राय ली जानी चाहिए। ओलिविए बांको इस समय लंदन में शागस शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद है। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टीफन डाउटी, ब्रिटिश सांसदों, ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कॉर्बिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविए बांको ने मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागस वासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया गया। कैबिनेट ने ध्यान दिया कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के पत्र के अनुसार कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में इबोला वायरस का प्रकोप अब भी गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है और इसके फैलने की आशंका अधिक है। स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जनेवा में मॉरिशस के राजदूत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से परामर्श किया है। सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय यात्राओं और इन देशों से जुड़े कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाओं को सीमित करने की सलाह दी है। और विदेश में मध्य पूर्व में जारी संघर्ष लाखों लोगों को भूखमरी के कगार पर धकेल रहा है, क्योंकि ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। वहीं धन की कमी के कारण सहायता एजेंसियों को सहायता कम करनी पड़ रही है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने कल दी है। और अंत में मौसम का हाल।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: मस्करेंस के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन से जुड़े सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। रात्रि के समय भी रह रहकर वर्षा होगी, ज़्यादा बारिश ऊंचे इलाकों पर होगी और कुछ जगहों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी।

कठोर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में। सूर्योदय आज 6:40 पर और सूर्यास्त शाम के 5:37 पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: रात कब की बीत चुकी है, सुबह होने को आई है और ये सुबह बहुत ही खूबसूरत है और रात का बीता हुआ सपना भी पूरा हुआ और अब जागने का समय है। जी हाँ, नई सुबह नए दिन का आगाज कीजिए MBC रेडियो मॉरिशस चैनल के साथ। सभी श्रोताओं का और हमारे देवी और सज्जनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अपने होशर दोस्त और जय प्रताप सिंह सीतालू का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। भोर के इस बिरा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और बेशक आज है शनिवार का दिन, शनिवार 6 जून साल 2026। परमपिता परमेश्वर प्रभु से यही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी के लिए एकदम अच्छी तरह से बीते। आज आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और एक मुस्कुराहट के साथ इस नई सुबह का स्वागत कीजिएगा और आप देखेंगे कि आप दिन भर आप खुश रहेंगे। जो बीत चुका वो एक सपना था, जो है वो आपका हकीकत है, आपका वर्तमान है। सो अपने वर्तमान में जिए और आने वाले भविष्य के बारे में सोचे, हमेशा प्यार खुशियाँ बांटते रहे। सो चलिए शुरू करते हैं इस प्रातःकालीन सभा को गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ और प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

0: हेरोट राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
2: आनंद मंगल करूं
0: वैदिक नाथ
2: जय गायत्री माता
3: ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं महियं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आदरणीय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिकनाथ इस कार्यक्रम में मैं पंडित राम सेवक आप लोगों का स्वागत करा हूँ। हम जून महीने में कदम रख चुके हैं। हम सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव मना रहे हैं। वेद प्रेमियों को, वेद भक्तों को स्वामी दयानंद के प्रति धन्यवाद से भर उठना चाहिए। उनके उपकार के प्रति सदा सचेत क्षण क्षण सज्ञान रहना चाहिए। यही उनके प्रति हमारी अपार कृतज्ञता का श्रेष्ठ व उत्तम प्रमाण होगा। वेदों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता, जिसे हम वेद अध्ययन व प्रचार प्रसार हित अपने तन अपने मन अपने धन व वचन और कर्म को समर्पित करके प्रमाणित कर सकते हैं। उन महामानव के जैसे कृणवंतो विश्वमारम की आग्रहपूर्ण अभिशसा को स्वयं के भीतर जगाकर हम उन्हें अपना श्रद्धादान दे सकते हैं। इस संकल्प इस आग्रहपूर्ण अभिशता को पल प्रतिपल प्रतिक्षण सिंचते

पुष्टि अर्थात सींचते हुए पालन पोषण करते रहने का सबल प्रयास ही हमारी श्रद्धांजलि होगी। उन महामानवों और उपकारी दिव्य पुरुष के प्रतिनत नतमस्तक होकर मैं हृदय की गहराई से नमस्ते कह रहा हूँ। तचक्षुर देवहितम पुरस्ता चुक्रमुचरत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शिनुयाम शरदशतम प्रभ्रवाम शरदशतम अदीना श्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। वेदवाणी का प्रसार करना मानवों के लिए प्रभु का आदेश है। संध्या के मंत्र तचक्षुर अधिवहितम में भी हम प्रार्थना करते हैं कि सौ शरद ऋतुओं तक बल्कि उससे भी अधिक काल तक हम न केवल वेद को श्रीनुयाम सुनने रहे बल्कि प्रभ्रवाम उसका प्रवचन भी करते रहें। परमेश्वर परम गुरु है, वह सबका कल्याण चाहता है। अपने पुत्र पुत्रियों के लिए शाश्वतीभ्य प्रजाभ्य अपने कल्याणी वेद प्राणी का उपदेश किया है। हे मानवों मनुष्यों, इस कल्याणकारक ज्ञान का प्रसार करो। यथेमं वाचम कल्याणी महाहानिनी जनेभ्य ब्रह्मराजन्य अभ्यम शुद्धाय चर्याय च। आदरणीय श्रोतागण, मंत्र के प्रथम भाग में वेद ज्ञान दाता परमेश्वर ने बताया है कि वेद वाणी कैसी है और उसका उपदेश की किन किन के लिए है। मनुष्य को कहा है कि तू भी इसका प्रचार प्रसार किया कर। मंत्र के दूसरे भाग में मानव को उपदेश किया है कि तू इस संबंध में कामना किया कर। देखिए परमेश्वर कहा है, मैंने जो वेदवाणी प्रदान की है वह कल्याणी है। हम देखते हैं कि सृष्टि के आदि से ही महान आत्माएं वेद को कल्याणकारी ज्ञान मानती आई है। वेद के एक एक मंत्र के स्वाध्याय से तो यह विश्वास दृढ़ हो ही जाता है कि उसमें पाया जाने वाला संदेश मानव मात्र के लिए कल्याणकारक है। आज से लगभग 5100 वर्ष तक पूर्व की घटना महर्षि वेद व्यास ने वर्णित की है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर प्रश्न पैदा हुआ कि अग्नि पूजा किसके किया जाए, सर्वाधिक सत्कार किसका किया जाए। भीष्म जी ने श्री कृष्ण के नाम का प्रस्ताव किया। श्री कृष्ण जी को अप्र शब्द कहने वाला भी वहां उपस्थित थे। प्रायः ऐसे लोग रहते ही है जो भले लोगों की टांग खींचते रहते हैं। श्रोताओं, उन्हें आप दस्यु कहे या असुर, यह आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई है कि कृष्ण की ही अग्नि पूजा क्यों हो। भीष्म जी ने श्री कृष्ण जी के गुणों का बखान करते हुए कहा कि दो हेतु है कृष्ण का सत्कार करने में, पूज्यता मानश्च गोविंदे हेतु दिव्यपि संदृशयो वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाम्यह धिकम तथा। एक तो वेद वेदांग का विशेष ज्ञान और दूसरा यह कि बल में भी वे बड़े चढ़े थे। दुर्भाग्य से कृष्ण का रूप बिगाड़कर लोगों ने, कवियों ने, लेखकों ने उसे नाजुक सा नचैया बना दिया। आज का महाभारत ग्रंथ जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था उसका पहला नाम जय था। एक प्रसंग में यह बताया गया है कि भीष्म को भी वेद वेदांग का विशेष ज्ञान था। इससे पता चलता है कि 50 शताब्दियों पूर्व भी वेदवानों में वेद का कितना महत्व था। यही नहीं, 1,81,46,000 से अधिक वर्ष पूर्व खोजों से पता चलता है कि रामायण युग में भी वेद का महत्व सर्वोपरि था। वाल्मीकि ऋषि राम के गुणों का वर्णन करते हुए

उन्हें वेद वेदांग तत्वज्ञान बनाना आवश्यक मानते थे। परमेश्वर कहता है, वेद रूपी कल्याणी वाणी का प्रकाश मानव मात्र के लिए है। उपदेश यह है कि हे मानव, तू कामना किया कर कि मैं इस जीवन में दिव्य विद्वानों का प्यारा हो जाऊं। कल्याणी विद्वानी रूप दक्षिणा के दाता परमेश्वर का प्यारा हो जाऊं। मेरी यह कामना समृद्धि को प्राप्त हो जाए और मैं मोक्ष पद को पा जाऊं। पुनः शिनो भीष्मरण्यः भूमविदस्तः घोषम हत्यायः मृत्युस्मसम सुनाय जिना आश्रयगा मनुनाम कुरियेव पुष्यम वहति प्रपूर्णा। एक बार फिर हम वनों को छोड़कर घरों गांवों और शहरों में वेद के स्वर को गुंजारित होते हुए सुन रहे हैं। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा से वातावरण गूंज रहा है जो हृदय के लिए आत्मा के लिए अमृत समान है। यह मानव सरिता मुनियों के गंभीर ज्ञानयुक्त आश्रम की ओर प्रवाहित हो रही है। हम जुलाई महीने में श्रावणी मास में श्रावणी उपाकर्म मनाएंगे और ज्ञान की रूपी गंगा बह रही है। चलिए इसमें हम डुबकी लगाते हुए यह प्रतिज्ञा करें कि पहली बात वेदों को मात्र श्रद्धा भाजन व पूज्य ग्रंथ मानकर उनके हितार्थ समझें का दृढ़ प्रयास करें व उनका अनुसरण करें। दूसरी बात, वेद ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, परमात्मा ने हमें दान स्वरूप में दिया है। हमें वेदों से अपने तन अपने मन के तापों से मुक्ति पाकर हरा भरा व सार्थक जीवन जीने का प्रयास करना है। तीसरी बात, वेदों के बराबर किसी भी ग्रंथ को स्थान देना मान्यता देना अनुचित है। वेदों के अतिरिक्त कोई भी ग्रंथ कितना भी श्रेय व सार्थक पात्र हो उसे वेदों के समक्ष माना भूल है। अभी ग्रंथ व वक्ता या श्रोता की मति सीमा से बंधे है, लेकिन वेद सीमाओं से बंधी नहीं है। वेद अस्थार्थ से सत्य की ओर, तमस से ज्योति की ओर एवं मृतत्व से अमृतत्व की ओर मानवता के उद्धार के विधि व्यवस्था ग्रंथ है। इसमें समाधान परम सौभाग्य एवं परम सार्थकता का प्रमाण है। इसलिए प्रत्येक आर्यजन वेद प्रेमी को कम से कम एक सूक्त या मंत्र या ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को नित्य भावना श्रद्धा व जानकारी के भाव से स्मरण करना चाहिए। दूसरी बात, मंत्रों को स्मरण कर लेने से उन पर खाली समय में विचार विमर्श किए जा सकते हैं। प्रतीक्षा के समय इंतजार की घड़ी में यात्रा करते समय इसका सुंदर उपयोग किया करें। तीसरी आवश्यकता बात, अवसर को ध्यान में रखते हुए काल पात्र आदमी अर्थात अवसर देखकर वेद वेद के मंत्र वेद के विचार आदि पर वार्तालाप किया जा सकता है। चौथा विचार, वेदों पर आधारित गोष्ठियों संगोष्ठियों एवं विचार सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस किए जा सकते हैं। इस तरह देवियों और सज्जनों वेद पुनः वेद बार बार वेद पर चर्चा करते हुए अपने जीवन और अपने बाल बच्चों का जीवन सुखमय बनाने का प्रयास करें। तो आदरणीय श्रोतागण, इन्हीं विचारों के साथ वैदिक नाथ कार्यक्रम यहाँ विराम ले रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम रक्षक।

सुबह के 6:18 और 50 सेकेंड्स हो रहे आप हमें सुन रहे हैं AM2 रेडियो मर्चेस की लहरों पे और आप हमें देख भी सकते हैं AM2 के टिकटॉक पेज पर। जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को हम कहेंगे सुस्वागतम और बेशक कुछ ही क्षणों में सत्यार्थ प्रकाश माह के संदर्भ में आप सुनेंगे एक विशेष प्रोग्राम गहलोत राजपूत महासभा की ओर से। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश माह के संदर्भ में और ये वार्ता हमें लेकर जाएगा सुबह के ठीक साढ़े छः बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल और स्पोर्ट्स रिव्यू। उसके बाद 7 बजे हम प्रस्तुत करेंगे मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे सत्यार्थ प्रकाश माह के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस।

श्रीयुक्त दयानंद सरस्वती स्वामी विरचिता दयायानंदो विलसति परस्वात्म विदिता सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा।

सको दांत शांतो विदिता विदितो वेद्या विदिता सत्यार्थ प्रकाशाय ग्रंथस्ते नैव निर्मिता वेदादि सत्य शास्त्राणां प्रमाणैर्गुणा संयुता। आज का विशेष कार्यक्रम में श्रद्धेय श्रोताओं का अभिवादन। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से पंडिता सुनीता रोजन बुदोई का सादर सप्रेम नमस्ते और कार्यक्रम में स्वागत। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थी समुलास में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। पूरन विद्या प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत धार करहिं प्रवेश गृहस्थ महा आर्य धर्म अनुसार गुरु की आज्ञा ले।

यजुर्वेद का यह मंत्र आया है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्रुतागण, इसका अर्थ देवान यथा रक्षिता आसन, यानी देवता लोग हमारे रक्षक होते हैं, दिन प्रतिदिन 24 घंटे हमारे रक्षक होते हैं। अप्रायुवो, दिन प्रतिदिन रक्षितार दिवे दिवे। आयंतु, प्राप्त होए क्या, तो ऋषि जी कहते हैं हर गृहस्थी का कर्तव्य है अवश्य करे।

यह पांच प्रकार का कर्म यज्ञ से हमारा जीवन शुरू होता है। पहला ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, तीसरा माता पिता की सेवा सत्कार, बड़ों का आदर और पालन करें, चौथा साधु संत विद्वान अतिथि का स्वागत सेवा सत्कार अवश्य करनी चाहिए, पांचवा बलि वैश्व देव यज्ञ यानी जानवर पशु पक्षी चिड़िया की रक्षा और उसका भी ख्याल हर गृहस्थी को आवश्यक है। पितृ भीर भ्रातृ भीश्चैताः पति भीर देवरैस्तथा पूज्या भूषयि तव्याश्च बहुकल्याणमी सुभिः। मनु महाराज का कथन है पिता भाई पति और देवर इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसा करें। फिर ऋषि जी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। यानी जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष हो के देव यज संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती है। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा का अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब जब प्रथम मिले वा पृथक हो तब तब प्रीतिपूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। यह बहुत ज़रूरी है बच्चों को भी यह संस्कार सिखानी चाहिए हर गृहस्थी को। सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता। जो संध्या संध्या काल में होम होता है वह हूत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। फिर पितृयज्ञ अर्थात जिसमें देव जो विद्वान ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने वाले पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करते हों। पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध अर्थात श्रद्ध सत्य का नाम है, श्रद्ध सत्यम दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम्, कि जिससे सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो जो श्रद्धा से सेवा रूप कर्म किए जाएं उसका नाम श्राद्ध है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। सत्यात प्रकाश में स्वामी जी कहते हैं जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रम से सब आशय स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों को निर्वाह होता है। तीन आश्रमों को दान और अन्न आदि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है। इससे गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है अर्थात सब व्यवहारों धुरंधर कहता है। इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहस्थ आश्रम का धारण करें। जो गृहस्थ आश्रम दुर्बलेंद्रिय अर्थात भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उसको

0: अच्छे प्रकार धारण करें। इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहस्थ आश्रम न होता तो संतान उत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहाँ से हो सकते। जो कोई गृहस्थ आश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। प्रिय श्रोतागण, गृहस्थ आश्रम जो है सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूके में शागस पर नया विधेयक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। अंतिम निर्णय से पहले शागस वासियों की राय का प्रावधान रखा गया है। ओलिविया बॉन्कुल्ट ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात की। कैबिनेट ने इबोला जोखिम को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और यात्राओं पर सख्त कदम उठाए हैं। कुछ कार्यक्रम वर्चुअल किए गए हैं और एक बड़ा यूएस अफ्रीका समिट स्थगित किया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज सुधार पर चर्चा जारी है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनडायरेक्ट ग्रांड इलेक्टर्स प्रणाली पर विचार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव का अध्ययन संवैधानिक आयोग कर रहा है। विदेश में मध्य पूर्व संकट से खाद्य और ईंधन आपूर्ति प्रभावित है। वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्ग बाधित होने से स्थिति और गंभीर हो रही है। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेता शागस मुद्दे को लेकर अभी भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं दिख रही है। मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने वाले विधेयक को फिलहाल अलग रखे जाने के बाद डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के लॉर्ड वेयर ऑफ बालीहॉल्म ने कल सुबह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी भी आगे की प्रक्रिया को रोकना है। उन्होंने इसमें तीन शर्तें रखी है, यानी तीन तरह की बाधाएं। उनका कहना है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक मॉरिशस इन द्वीपों पर अपना अधिकार आधिकारिक रूप से लागू नहीं कर सकेगा। ज्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, लॉर्ड वेयर ऑफ बालीहॉल्म।
2: लॉर्ड वेयर द्वारा प्रस्तावित ब्रिटिश सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन शागस आइलैंड्स बिल एक ऐसे संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है जब द्वीप समूह के भविष्य को लेकर यूके और मॉरिशस के बीच वार्ता जारी है। इस बिल में तीन चरणों की सुरक्षा प्रक्रिया का प्रावधान है। संप्रभुता सौंपे जाने की कोई भी प्रक्रिया के लिए भावी निर्वाचित BIOT सरकार की स्वीकृति, एक रेफरेंडम के जरिए शागस वासियों की सहमति और बरतानी संसद

0: प्रतिशत का मतदान।
1: My lords, I beg to introduce a bill to affirm and protect the sovereignty of the United Kingdom over the Chagos Islands and the British Indian Ocean Territory, to make provision restricting the cession or transfer of sovereignty without the approval of Parliament and without the consent of the Chagossian people, to provide for the protection of the territory's strategic and defence importance and for connected purposes.
0: इस बिल में मॉरिशस और यूके के बीच होने वाली किसी भी समझौते से जुड़े खर्च पर संसदीय नियंत्रण का भी प्रावधान है। ऐसे किसी समझौते के तहत मॉरिशस को आर्थिक प्रतिबद्धता देने से पहले ब्रिटिश सरकार को हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चागोस वासियों के लिए द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर पुनर्वास की व्यवस्था तैयार करने का भी प्रस्ताव है। ये विधेयक शुक्रवार को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली परत पर पेश किया गया। चूंकि एक प्राइवेट मेंबर बिल है, इसलिए इसके पारित होने की संभावना अभी अनिश्चित है और ये इस पर निर्भर करेगा कि इसे ब्रिटिश संसद में कितना समर्थन प्राप्त हो। अटॉर्नी जनरल की भी यही राय है। उनके अनुसार इस बिल के पारित होने की बहुत कम संभावना है। ये बिल असल में कानून बनने के लिए नहीं है, मकसद बरतानी प्रधानमंत्री कस्टमर पर दबाव डालना, चागोस संधि पर पब्लिक बहस को बढ़ावा देना और संधि के आखिर नज़दीक आने पर सरकार को कमज़ोर करना है। ये बिल संसदीय की अपेक्षा राजनीतिक है।
2: और ओलिविया बैंकल्ट इस समय लंदन में चागोस शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद है। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टीफन डाउटी, ब्रिटिश सांसदों, ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कॉर्बिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविया बैंकल्ट ने मॉरिशस और यूके के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही चागोस वासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया। उनका कहना है कि जिन लोगों ने उनकी मुलाकात हुई उन्होंने चागोस वासियों की चिंताओं और मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन पर विचार किया। ओलिविया बैंकल्ट को सुनते हैं।
3: उफिन दिए कि उनके क्रॉस पार्टी सपोर्ट किसाना उफिन स्वयं एक ही क्वालिटी सूचियां उफिन गई
4: सा मिशन ला एन विजन वेमेंट इंपोर्टेंट पोर नू पार्स की ना ट्रो बोकू बन कॉन्ट्राडिक्शन पे फेयर क्रोर की बन सागोशिया पापे सुतेनिर les deals tenant au gouvernement anglais et au gouvernement maurice. Et nous avons envie de montrer, à travers cette délégation-là, notre présence physique dans l'Angleterre pour montrer sa bonne membre du Parlement britannique et aussi bonne membre de la Chambre des Lords qui nous bel et bien nous soutenir. À aucun moment, nous pas compte et nous apporte nous full soutien à sa dit là. D'abord, nous avons un de mon grand supporter, la Ligue Sagouchin, Jeremy Corbyn, et aussi, comme vous venez de mentionner, un membre qui siège le haut parti parlementaire groupe de Sagos, qui au nom de 46, qui apporte de tout parti, qui apporte notre soutien à la cause Sagouchin, et qui toujours finit un membre du CRD, la communauté Sagouchin, pour qu'elle trouve le chemin. Et mon zone aussi, même mon conservateur, par exemple, mon zone, c'est Ian Duncan Smith, qui s'est opposé à ça. Nous partageons avec lui, nous disons lui, qui nous expectation. Et je suis capable de dire qui aussi nous zone mon Lord, par exemple, mon zone Lord Lister, Lord Ledford, et les autres Lords encore qui nous zone. Et ce qui est plus important, nous zone aussi. The chairperson of Joint Commission on Human Rights, qui peut vraiment concerner par ça.
2: चागोस द्वीप समूह 20वीं और 21वीं सदी के सबसे लंबे कूटनीतिक संघर्षों में से एक के केंद्र में रहा है। अमेरिकी दबाव, ब्रिटिश संसद में हुई बहसें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान, मिसले मौदाहा की साहसिक पहल तथा उन लोगों के बीच जो इस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लंबे समय से विवादों और गलत धारणाओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि चागोस के इतिहास, अधिकारों और संप्रभुता से जुड़े तथ्यों को सामने

0: किया जाए और प्रचलित भ्रांतियों का मुकाबला किया जाए।
1: यूके ने शागुद द्वीप समूह को मॉरिशस उपनिवेश से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की स्थापना की। इसके बाद लंदन और वाशिंगटन ने एक समझौता तय करके जिगोगोसिया में एक अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी। उस समय मॉरिशस स्वतंत्र नहीं हुआ था। शागुसवासियों को बलपूर्वक मॉरिशस और सेशल्स भेज दिया गया। 1980 के दशक में शागुसवासियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शागुस रेफ्यूजी दल में संगठित होना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने अपने मत में कहा कि मॉरिशस की उपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी नहीं हुई थी और यूके को शागुस द्वीप समूह का प्रशासन खत्म करना चाहिए। आज मॉरिशस में रहने वाले अनेक शागुसवासी खासकर युवा पीढ़ी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अपनी जगह बना ली।
2: J'ai fait faire civil engineering dans l'université Maurice et mon fini avec first class qui vraiment m'a bien fait que mon fier mon content mon reste Maurice parce que si moi je suis en Angleterre mon père je peux aider dans le processus comment on est ici comme mon cas activement participe avec groupe de chagos comme mon cas exode participe exode à l'exode et c'est causé c'est principe d'une perspective 23e génération. Parce qu'il n'y a pas toute troisième génération qui paraît. Essayer de montrer aux autres qui ont l'espoir de manger, montrer aux autres qui nous l'a pour aider aussi.
1: London, Ravana, on est séparé. Hamari Moulakat, Olivier Bancoul, c'est Huiti.
3: Moi, qui suis né dans Sagos, mon génération qui est née dans Sagos, nous dire où il faut, ce qui est content, content, ce qui n'est pas content, pas content, Sagos appartenir à l'île Maurice.
1: शागुस एक ऐसा द्वीप समूह जो स्मृतियों और सामरिक शक्ति के बीच झूलता रहा है। राजनीति, राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय तनावों से परे यहाँ एक ऐसी जनता भी है जो इस इंतजार में है कि इतिहास उससे छीनी गई चीजें उसे वापस लौटाए।
0: कैबिनेट ने नोट किया कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के पत्र के अनुसार कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में इबोला वायरस का प्रकोप अब भी गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है और इसके फैलने की आशंका अधिक है। इस स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा में मॉरिशस के राजदूत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से परामर्श किया है। सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और इन देशों से जुड़े कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाओं को सीमित करने की सलाह दी है। कैबिनेट ने यह भी नोट किया कि जुलाई 2026 में सेशल्स में होने वाला क्षेत्रीय संसदीय मंच अब केवल वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। साथ ही मॉरिशस में प्रस्तावित यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने इबोला वायरस के अफ्रीकी प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी यात्रियों के लिए यात्रा से पहले स्वास्थ्य घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा और कोंगो, युगांडा तथा दक्षिण सूडान से आने या होकर गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं मॉरिशस नागरिकों और वैध वीजा धारक को 21 दिनों की क्वारंटीन शर्त पर प्रवेश की अनुमति होगी। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, जोखिम मूल्यांकन यानी रिस्क असेसमेंट और निगरानी को सख्त किया जाएगा तथा कुछ मामलों में तुरंत आइसोलेशन लागू होगा। रियांबेल स्थित साज रिक्रिएशन सेंटर को क्वारंटीन केंद्र घोषित किया गया है और निगरानी प्रणाली तथा संक्रमण नियंत्रण उपायों को और मजबूत किया गया है। इन उपायों को लागू करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम और क्वारंटीन नियमों के तहत आवश्यक नोटिस और संशोधन जारी किए जाएंगे। और कैबिनेट ने ट्रैफिक अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल नंबर 2 रेगुलेशन 2026 को जारी किए जाने पर ध्यान दिया है जिसके तहत पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के अंतर्गत

ड्राइविंग के दौरान हाथ में पकड़े जाने वाले माइक्रोफोन या टेलीफोन हैंडसेट का उपयोग के अपराध के लिए पॉइंट्स की सीमा 3 से 6 से बढ़ाकर 5 से 10 कर दी गई है। ये नियम 10 जून 2026 से प्रभावी होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज, ये दो शब्द पिछले

0: लिसे मौजूद था, लेकिन इस विधेयक में औपचारिक रूप से 26 मई को दूसरी परत के दौरान शामिल किया गया। लेकिन आखिर ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है जो भविष्य में राष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी संभाल सकता है, इसकी संरचना कैसी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, इन सवालों के जवाब हमें देश की सीमाओं से बाहर अन्य देशों की व्यवस्थाओं को देखकर मिल सकती है। ज्यादा जानकारी पूजा सुकालो के साथ।
1: एक इलेक्टोरल कॉलेज और विशेष निर्वाचक यानी मतदाता, प्रधानमंत्री के अनुसार ये व्यवस्था अधिक संतुलित और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक माध्यम हो सकती है। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी के अनुसार मॉरिशस के संदर्भ में ये विशेष निर्वाचक पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।
2: Le président des conseils des districts, le commissaire Rodriguez, qui forment le collège électoral, et c'est ça maintenant qui peut choisir parmi les candidats déclarés à l'élection présidentielle, et ces autres qui peuvent voter. Et à ce moment-là, le candidat, il peut faire campagne auprès de sa bande électorale. Alors, nous avons fait de manière un petit peu plus élargie aussi.
1: ऐसी प्रणाली को अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, जो आम चुनावों में होने वाले प्रत्यक्ष मतदान से भिन्न होती है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण यूनाइटेड स्टेट में देखा जाता है, जहां 538 विशेष निर्वाचक यानी मतदाता राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सामान्यतः ये निर्वाचक अपने अपने देश के जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं, हालांकि बहुत ही दुर्लभ मामलों में अपवाद हो सकते हैं। ये व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में बनाई गई थी ताकि विभिन्न राज्यों के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। फ्रांस में भी इस प्रणाली का उपयोग सेनेटरों के चुनाव के लिए किया जाता है। वहां लगभग 16,200 विशेष निर्वाचक, जिनमें सांसद, क्षेत्रीय परिषदों और नगर पालिका के सदस्य शामिल हैं, मतदान की जिम्मेदारी निभाते हैं। मॉरिशस में इस संभावित सुधार का अध्ययन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश बेनो सिक्यूएन कर रहे हैं।
0: उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक नया सुधार तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की मान्यता यानी एक्रेडिशन देने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। 31 अगस्त से सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम की स्वीकृति और मान्यता का कार्य अब हायर एजुकेशन कमीशन हैक के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि ये जिम्मेदारी सीधे संबंधित संस्थाओं को दी जाएगी। इसके बावजूद विश्वविद्यालयों को एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता प्रणाली स्थापित करनी होगी, ताकि पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को डिजाइन से लेकर कार्यान्वयन, मूल्यांकन और निरंतर सुधार तक सुनिश्चित किया जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर कविराज सुको ने इसकी जानकारी दी, उनको सुनते हैं।
3: Alors nous permet un changement fondamental maintenant. Qui fait? Parce que quand High Education Commission dit fini de son approval. Mais il va pas garder non.
1: हम एक मूलभूत बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि पहले जब उच्च शिक्षा आयोग यानी हाई कमीशन ऑफ एजुकेशन किसी कार्यक्रम को मंजूरी देता था, तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है। इसी कारण हम ये बदलाव ला रहे हैं। अब हम केवल कार्यक्रमों को मान्यता नहीं देंगे, बल्कि उस मान्यता प्रणाली यानी एक्रेडिटेशन सिस्टम को मान्यता देंगे जो संस्थान स्वयं लागू करता है। इसका मतलब है कि कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंतिम दस्तावेज तक की पूरी प्रक्रिया अब संस्थान के तहत आएगी। इस नए बदलाव के तहत संस्थानों की एक जिम्मेदारी होगी कि वे पूरी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करें। उन्हें ये साबित करना होगा कि क्या ये कार्यक्रम वास्तव में आवश्यक है, क्या इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता है। इसके बाद ये प्रस्ताव विभिन्न समितियों के समक्ष चर्चा के लिए जाएगा, जहां ये तय किया जाएगा कि क्या वास्तव में इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए और क्या ये शैक्षिक स्तर तथा गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
3: Pour capable discuter est-ce qu'il vraiment nous besoin faire ça cours là est-ce qu'il est suffisamment à un certain niveau.
0: मॉरिशस लेबर कांग्रेस और ऑल वर्कर्स फेडरेशन ने गुरुवार 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस

इसमें कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े मामले को उठाया है जो कैथोलिक स्कूलों में कार्यरत थे। यूनियनों के अनुसार नॉन टीचिंग कर्मचारी सिकम के माध्यम से पेंशन फंड में योगदान देते रहे हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वार्षिक बोनस और वेतन समायोजन का लाभ नहीं मिल रहा है। करीब 30 सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले से प्रभावित बताए जा रहे हैं, जबकि लगभग 300 कर्मचारी जो 46 स्कूलों में कार्यरत है भविष्य में इससे प्रभावित हो सकते हैं। सिकम का कहना है कि शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 3 प्रकार की पेंशन योजनाएं मौजूद है और वो केवल निर्धारित नियमों को लागू कर रहा है। वहीं सिडेक ने कहा है कि उसने पेंशन योजना के संभावित पुनर्गठन की लागत का आकलन करने के लिए एक एक्चुअरियल रिपोर्ट मंगाई है। सिडेक का मानना है कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में समान कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। और दो घरेलू विवाद 24 घंटे के भीतर दुखद घटनाओं में बदल गए। पहली घटना गुरुवार शाम कैथोबोन में हुई, जहां एक बहस ने जानलेवा रूप ले लिया। नीलम मुनिसामी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने साथी फाब्रिनो क्यूपिडो की हत्या की। उनके अनुसार फाब्रिनो उन पर सिंथेटिक ड्रग्स लेने का आरोप लगा रहा था, जिसे वो पूरी तरह गलत बताती है। दूसरी घटना कल सुबह लिसाली में हुई। 29 वर्षीय प्रवेश चंग्या ने अपनी साथी स्नेहा जुतन पर चाकू से हमला कर दिया। पोटवी सुध की सीआईडी द्वारा पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसे अपने साथी की बेवफाई का शक था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। विदेश में मध्यपुर में जारी संघर्ष लाखों लोगों को भूखमरी के कगार पर धकेल रहा है, क्योंकि ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। वहीं धन की कमी के कारण सहायता एजेंसियों को सहायता कम करनी पड़ रही है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कल दी। ईरान पर फरवरी में अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों ने खाड़ी क्षेत्र से लेकर लेबनान तक फैली क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दिया, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सहित प्रमुख समुद्री मार्ग बाधित हो गए। इसके कारण जहाज़ों को अपना मार्ग बदलना पड़ा और वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखलाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन से जुड़े सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी खासकर दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। और रात्रि के समय भी बादल ही रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। कुछ जगहों में ज़्यादा बारिश होगी खासकर ऊंचे इलाकों पर और कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगोनों में। सूर्योदय 6:40 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:37 पर होगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के बाद आई आज की प्रमुख खबरों को दोहराती है। यूके में शागुस पर नया विधेयक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। अंतिम निर्णय से पहले शागुस वासियों की राय का प्रावधान रखा गया है। ओलिविया बॉन्कुल ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात की। कैबिनेट ने बोला, जोखिम को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और

0: यात्राओं पर सख्त कदम उठाए हैं। कुछ कार्यक्रम वर्चुअल किए गए हैं और एक बड़ा यूएस अफ्रीका समिट स्थगित किया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज सुधार पर चर्चा जारी है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनडायरेक्ट रन इलेक्टर्स प्रणाली पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव का अध्ययन संवैधानिक आयोग कर रहा है। विदेश में मध्य पूर्व संकट से खाद्य और ईंधन आपूर्ति प्रभावित है। वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्ग बाधित होने से स्थिति और गंभीर हो रही है। तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Railroad Mont-Saint-André-Mi, Railroad Mont-Saint-André-Mi, tira si sa la ki 83 years old ki shi Kumar Jagdhar, shi Kumar Jagdhar jo काशी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री संजय जगधर के घर वायरोड मोसलमोसंतंत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमोसंतंत्र की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। पावियों कप मालोरोमे 73 साल की 73 years old की श्रीमती तुलस्यामा कादियावालू, श्रीमती तुलस्यामा कादियावालू पैदाइशी नाम कुलापा और जो आली नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज इनके दो बजे उनके घर पावियों कप मालोरो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कप मालोरो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। नंबर 103 सिटी गारीबू वाली दे फ्रैट में, नंबर 103 सिटी गारीबू वाली दे फ्रैट में 83 साल की 83 years old की श्रीमती चांदो जोगना जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री सुनील उजागिया के घर नंबर 103 सिटी गारीबू वाली दे फ्रैट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 1:30 PM। सिटी लाफेम बॉम्बू में, सिटी लाफेम अब्दुल कलाम आज़ाद स्ट्रीट, सिटी लाफेम बॉम्बू में अब्दुल कलाम आज़ाद स्ट्रीट सिटी लाफेम बॉम्बू में 63 साल की 63 years old की श्रीमती राजकुमारी कोयलाश पैदाइशी नाम थियाबुन और जो अनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर अब्दुल कलाम आज़ाद स्ट्रीट सिटी लाफेम बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 11 AM। ला वियोलेट रोड लिस्कालिए प्लेन मान्यों में 55 साल के 55 years old के श्री प्रकाश नायकू जो चंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो एक पूर्व पुलिस अफसर थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पिता श्री सुभाषेहंद नायकू के घर ला वियोलेट रोड लिस्कालिए प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। नंबर 4 B एम्पास डिले बाउंडेरी रोजल में, नंबर 4 B एम्पास डिले बाउंडेरी रोजल में 51 साल के 51 years old के श्री भुवनेश्वर सिंह अंगातिया जो राकेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर नंबर 4 BM पास जिले बाउंडेरी रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौदगा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 1 PM। नंबर 14 A सर इलारी ब्लड एवेन्यू कैथरबोन में, नंबर 14 A सर इलारी ब्लड एवेन्यू कैथरबोन में 103 साल की 103 years की श्रीमती सनमत दसोई पैदाइशी नाम गोकुल और जो सुगीने नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर नंबर 14 इलाही ब्लड एवेन्यू कैथरबोन से उठाकर दफनाने के लिए थामा मेल की

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: रविवार 7 जुलाई को सुबह 8:30 बजे नादेस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स के हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर में सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में यज्ञ और भजन का आयोजन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 7 जून को मुका आर्य समाज बॉडेजामोगत आर्य समाज में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: सुबह के 7:01 हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 11 जून की रात से 19 जुलाई तक दुनिया का सबसे बड़ा और रोमांचक फुटबॉल महोत्सव फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने जा रहा है, और जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ने वाला उत्सव है। ऐसे में आने वाले दिनों में पूरा विश्व फुटबॉल के रंग में रंग जाएगा। विश्व के 48 देश 48 कंट्रीज पहली बार यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में अपने फुटबॉल का कौशल दिखाएंगे। और इस बीच सहमेजबान देश मैक्सिको अपना शो शुरू कर चुका है। फ्रेंडलीज में कल मैक्सिको ने सर्बिया को 5-1 से परास्त किया, सो कल मैक्सिको की जीत हुई। कुछ और मैच कल खेले गए, नतीजे इस प्रकार हैं। मोल्डोवा और बुल्गेरिया के बीच मैच ड्रॉ रहा 2-2। हंगरी ने फिनलैंड को 2-1 से हराया। पराग्वे 4, निकारागुआ 0, स्लोवेकिया 2, मोंटेनेग्रो 2, सिंगापुर की हार हुई, सिंगापुर 1, चाइना 2, इंडोनेशिया 3, ओमान 0, और चेक रिपब्लिक ने ग्वाटेमाला को 3-1 से हराया। तो मैक्सिको की जीत हुई 5-1 से सर्बिया के विरुद्ध। मैक्सिको के लिए गोल बनाए वास्केज ने, बुकिनाक का एक डबल रहा, राउल रिमेनेज ने भी एक गोल स्कोर किया, शावेज और एब्दिक के भी कुछ गोल रहे। सो इतना सब कुछ कल के खेले गए मैचों को लेकर। आज भी, आज से लेकर अगले 11 जून तक कई तैयारी मैच खेले जाएंगे। आज इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में आज भी पुर्तगाल का मुकाबला चिली से होगा, रोमानिया वर्सेस वेल्स, जर्मनी वर्सेस यूएसए। सो ये सभी इंटरनेशनल फ्रेंडलीज आज रात खेले जाएंगे। बोलीविया वर्सेस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड का मुकाबला आज रात न्यूजीलैंड से होगा। सो तैयारी के रूप में बहुत सारे मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026, एक फाइनल, एक गेंद, एक मैदान और एक सपना, इसे जीतने का, यही है विश्व कप का जादू जो पूरे विश्व को एक परिवार में बदल देता है। और इस बीच लिवरपूल फुटबॉल क्लब फिर सुर्खियों में आ गया है। नया कोच एंटोनी इराउला आ गया, पुराना खिलाड़ी एंडी रॉबर्टसन चला गया टोटेनम हॉटस्पर में। द स्पर्स का पुराना कोच थॉमस फ्रैंक अरसे से एंडी रॉबर्टसन को लंदन स्टेडियम लाना चाहता था, और अब जबकि एंडी रॉबर्टसन फ्री है, तो 1 जुलाई से 32 वर्षीय 32-year-old एंडी रॉबर्टसन टोटेनम का हो जाएगा। नए कोच रॉबर्टो डेज़ेर्बी को भी वो बहुत पसंद है। इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक

तौर पर ये सौदा तय हो गया है। 32 साल का एंडी रॉबर्टसन लिवरपूल से टोटेनहम हॉटस्पर की ओर। इधर खबर ये भी है कि द रेड्स का 17 वर्षीय विंगर रियो एनगुमोहा बायर्न म्यूनिक की निगाहों में आ गया है, किंतु लिवरपूल उसे बेचना नहीं चाहता। हालांकि यान जो मंडे आरबी लाइप्ज़िग से यदि आ गया तो एनगुमोहा के खेलने का चांस, खेलने का समय और भी कम हो जाएगा, इसलिए कुछ भी हो सकता है। रियो एनगुमोहा लिवरपूल में रहेगा नहीं रहेगा, देखते रहिए और सुनते रहिए। टेनिस में वर्तमान फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता झटके पे झटका देती जा रही है। टाइटल फेवरेट अलेक्जेंडर जेरेव के लिए एक मेडन रोलां गारोस जीतने का यही सबसे बड़ा मौका है। कल शाम यदि उसने काफ़ी कठिनाइयों के बाद याकूब मेंसिक को 7-5, 6-2, 3-6 और 6-3 से हराया तो फाइनल में उसका मुकाबला इटली के फ्लाविओ कुबोली से होगा। 24 वर्षीय कुबोली वर्सेस बनाम 29 वर्षीय अलेक्जेंडर जेरेव, मामला अभी भी गर्म है। ये फाइनल कल खेला जाएगा, कल रविवार को, जबकि लड़कियों का फाइनल आज ही खेला जाएगा मीरा एंड्रीवा और माजा च्वालिंस्का के बीच। और क्रिकेट में आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच 4 मैचों की श्रृंखला एक टेस्ट मैच से शुरू हो रहा है आज से ही, यानी ये टेस्ट मुकाबला आज से चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ होगा। फिर 3 एक दिवसीय मैच भी निर्धारित है भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:06 और 6 सेकंड आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

Nous travaillons l'avenir de la Ministry of Labour and Industrial Relations साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जात बा. सेक्टर एग्रीकल्चर GPS एग्रो लिमिटेड जुन सुबागा लेन पालमा का ट्रबोन में है खोजता एगो मेल ड्राइवर मर्चेंडाइजर जिनका एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बा, एगो फीमेल अकाउंट्स क्लर्क जे एससी ले पढ़ले बा और दूगो एग्रीकल्चरल वर्कर. Application Khadin call career 425N00N per Yasakan set 89-69-80 per RGBG ki akri tarikh 30 June 2026. Sector Poultry and Mixed Farming Island Eggs Limited jun Ile d'Ambre Rivière du Rempart me ha khojata dugo female egg collecting worker JCPU le parle ba. Application khadin forward kariya second set 04-28-98 per RGBG ki akri tarikh 20 June 2026. सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सफर्न कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड घोंबा में है खोजता तीन गो मेल ग्रेड टू कैबिनेट मेकर जिनका दो बरिस स्किल एक्सपीरियंस बा, तीन गो मेल ग्रेड टू अप होल्ड स्टीयर जेकर दो बरिस स्किल एक्सपीरियंस है. एप्लीकेशन का तीन फोन करिए 5867-4991 पर. अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 जून 2026. सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ए टू जेड यूनिफॉर्म्स लिमिटेड जुन लैंडस्कोप बिल्डिंग गुडलैंड्स में है खोजाता नौ गो मेल स्विंग मशीन ऑपरेटर जिनका तीन बरिस स्किल एक्सपीरियंस बा. एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 92-55-7708 पर. अर्जी भेजे गए आखिरी तारीख 12 जून 2026. सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग लुकोफो लिमिटेड जुन सेंट अंतवान रोड कॉन्फुको फिनिक्स में है खोजत वंजा 10 गो मेल कैबिनेट मेकर और एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 69-69-2NN पर. अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 31 मई 2026. सेक्टर टेंथ सर्विसेज एस धनु टेंथ सर्विसेज कंपनी लिमिटेड जोन स्कूल लेन कौंदिमास पावे में है खोजता चार गो मेल टेंट इरेक्टर और इनका चाहना एक बरिस के कम से कम एक्सपीरियंस रहे कि आपने कास्टों का थीन फोर करिए सेकंड सेट 67-44-04 पर. अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 13 जून 2026. सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जनरल रोड कौंदिमास पावे में है खोजतवंजा 5 गो मेल

इलेक्ट्रिशियन जिनका एक बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा, पांच गो मेल प्लम्बर जिनका एक बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा, आपने काशो खातिन फोन करिए कत सौ से स्वसन सैंक 00 पर, या तो फिर कभी भी जाके आप जेएस सेफ्टी कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड और रॉयल रोड कौन दे मास्क पावे। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 13 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन दाना लक्ष्मी एंटरप्राइज लिमिटेड जो नेहरू नगर आरजी फ्लैक में है खुजतवंजा 14 मेल मेसन जिनका 3 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा, एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 59 2246 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 18 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन के एस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो 11 एडगर गैलिट स्ट्रीट पोर्ट लुइस में है खोजतवंजा एगो मेल लॉरी ड्राइवर जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा, और साथ में एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 214 23 95 या 57 90 98 48 या 52 55 78 20 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन सत्यानाम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जुन ले ग्रांड ब्रांच रोड घोंबा में है खोजा था 4 मेल मेसन 3 मेल कॉपेंटर 3 मेल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हेल्पर, और एप्लीकेशन खातिन आप लोग से बचा फोन करे 57 04 57 19 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 30 जून 2026। सेक्टर प्रिंटिंग मास्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिमिटेड जुन रॉयल रोड लाहौजा में है खोजा था 4 मेल ऑफसेट मशीन ऑपरेटर जे एस सी ले पढ़ लेबा, साथ में एन से 3 कर लेबा इन प्लेट मेकिंग एंड मशीन प्रिंटिंग, साथ में 3 बरिस के चहला एक्सपीरियंस रहेगी। एप्लीकेशन खातिन अपन सीवी विदा करिया बाय मेल mpstationery@yahoo.com। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 13 जून 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड टॉप सेरामिका लिमिटेड जोन बुले रूज फ्लैक में है खोजता 3 फीमेल सेल्स पर्सन, एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 58 35 00 11 पर या 413 55 11 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 14 जून 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड अकील कोल्ड स्टोरेज जो रॉयल रोड रविया जुगाँव पाँव में है खोजतवंजा 5 मेल कोल्ड रूम अटेंडेंट जे एस सी ले पढ़ लेबा 3 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा, एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 59 99 91 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 31 मई 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड यूजीस लिमिटेड जो हुदला सालेत गांव में है खोजता 80 केशियर जे फोम साइकिले पढ़ लेबा, 80 शेल्फ वर्कर जे फॉर्म 2 या फॉर्म 3 ले पहर लेबा, एप्लीकेशन खातिन अपन सीवी विदा करिए vashishta.gokul@superu.mu पर। अर्जी भेजी का आखिरी तारीख 30 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट शे चीनो रेस्टोरेंट जोन रॉयल रोड थोड़ो दूस में है खोजतवंजा 2 मेल किचन हेल्पर, एप्लीकेशन खातिन आप कभी भी सक बजाए रेस्टोरेंट शे चीनो जो उनकी रॉयल रोड थोड़ो दूस में है, या तो फिर सब फोन करे 480 27 69 या 57 43 55 21 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 11 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट फूड फ्लो लिमिटेड जोन सुपे रॉयल रोड गुडलैंड में है खोजतवंजा 3 फास्ट फूड ऑपरेटर जिनका कम से कम 6 के एक्सपीरियंस बा, एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए 52 57 81 61 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 12 जून 2026। सेक्टर एजुकेशन नानीज प्री प्राइमरी स्कूल जोन बिजादर स्ट्रीट रविया जुगाँव पाँव में है खोजता एगो फीमेल प्री प्राइमरी टीचर जे एस सी ले पढ़ लेबा, साथ में थोड़ा 5 क्रेडिट बा इंक्लूडिंग इंग्लिश फ्रेंच एंड मैथमेटिक्स और अर्ली चाइल्डहुड कोर्स चाहला रह के, एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 57 54 34 14 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 8 जून 2026। सेक्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स सिल्वर टूल्स लिमिटेड जोन रॉयल रोड बेलिया रविया सेश में है खोजाता 2 मेल स्प्रे पेंटर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा, 2 मेल मोटर व्हीकल मैकेनिक जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा, 2 मेल पैनल बीटर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा, 2 मेल इलेक्ट्रिशियन जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा, 10 मेल फील्ड क्रॉप लेबर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा, साथ में चला 5 मेल बस ड्राइवर जिनका 3 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा और एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी बा। एप्लीकेशन खातिन सक बचा आप कभी भी सिल्वर टूल्स लिमिटेड रॉयल रोड बिलिया रिवियर सेश जाए, या तो फिर फोन करिए 59 99 99 00 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 20 जून 2026। सेक्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स स्पाई 2 लिमिटेड जोन राम जीवन लेन बेलवी मोगल में है खोजाता 2 मेल मैकेनिक जिनका 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा, एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 52 63 66 95 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 10 जून 2026। सेक्टर पैरास्टाटल महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जोन महात्मा गांधी रोड मोका में है खोजाता एगो

0: दिन लोकल गवर्नमेंट सर्विस खो जाता है लैंड सर्वेयर पहली जून से पहले तो अपन अर्जी विदा कर दे के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिवियर जो पर खो जाता है ट्रेड्समैन असिस्टेंट वेल्डर पहली जून से पहले एप्लीकेशन विदा करिए। कप मालोरे विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिवियर जो पर खो जाता है विलेज हॉल एंड सब हॉल अटेंडेड पार्ट टाइम 2 जून से पहले एप्लीकेशन विदा कर दिया। पोस्ट दे फ्लाक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ फ्लाक खो जाता है सब हॉल अटेंडेड पार्ट टाइम 3 जून से पहले तरह एप्लीकेशन छाला विदा करेगी। कागवा काशा विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ग्रांपो विलेज हॉल और टीवी अटेंडेंट खो जाता पार्ट टाइम 3 जून से पहले आपने काशों विदा कर दिया। पुत्र दो हमलेट विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिवर जहाँ पर विलेज हॉल और सब हॉल अटेंडेंट खो जाता पार्ट टाइम 3 जून से पहले आपने काशों विदा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ पॉम्पलेमोस खो जाता एगो ड्राइवर रोस्टर बेसिस पर 8 जून से पहले आपने काशों विदा करिए। विलेज काउंसिल ऑफ बेनारस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ सावान खो जाता विलेज हॉल एंड टीवी अटेंडेंट पार्ट टाइम 8 जून से पहले आपने काशों विदा कर दिया। और लोकल गवर्नमेंट सर्विस खो जाता अकाउंटेंट एंड सीनियर अकाउंटेंट और 9 जून से पहले तोहरा चाहेला अपन अर्जी विदा कर दे के। और ज्यादा जानकारी के लिए एप्लीकेशन खातिर जाइए http://lgsc.gov.au.org पर। तो ई रहल न्यू थवाई नू लावेनी जोन तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।
1: सुबह के 7:20 हो रहे एक बार फिर आप सभी लोगों का हम तहदिल से स्वागत करते हैं MBC रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। हाईलैंड्स मोसेलमो रहीमिया ओवादारी लेन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर क्योपेप राफ्रे स्ट्रीट रूट जॉर्डन ऑगस्ट एनोब स्ट्रीट लिस्ले जोफ्रे स्ट्रीट बेन ऑर्डन दे सेंट पियर स्ट्रीट दारूती द ग्रैंड प्रे स्ट्रीट कॉलेज लेन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और फिर जी हाँ कॉन्फिरेंगा पॉइंट साबल ला रीजन ब्लेज के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 6 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और फ्लिकॉन फ्लाक एवेन्यू दे कोलंब एवेन्यू दे सेग्रेट एवेन्यू दे कनारी एवेन्यू दे एग्लों एवेन्यू दे पेड्री एवेन्यू दे फ्लामों एवेन्यू दे कोमोरों और एवेन्यू कारोल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 6 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और कॉन्सोना कॉन दे मास्क पावे पेटिट काबान और यूनिटी के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8 बजे से 9 बजे के बीच और दोपहर बाद के 2 से 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और कॉन दे मास्क के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और मोसेल मोनूदाली जेरानियम रोड और आदर्फ डिप्लेविट्स के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर कॉन्फुक्रो टुकू रोड रिजर्वो रोड इम्पास नंदोल इरिस लेन नंबर 1 नंबर 2 मोसेलमों एंग्रे काटन दोहा प्री प्राइमरी स्कूल BRA गंगादीन मेटल इंडस्ट्री वेनो लेन बाजा लेन मोसेलमों रामाना कॉन्फुक्रो रोड बिस्नाथ लेन गालिया रोड कॉन्स्टेंटिन लेन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी रविवार 14 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और

0: फिर क्रिमेशन रोड और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8:15 से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और पॉइंट द फ्लैक मोसेलमो गल्फ के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8:15 से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मोका रोड, लिक्लेजो एवेन्यू, माउंट ओरी, कॉ सामी रोड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मोका एल्विसिया, मोसेलमो मेरीटाउन और ऑक्सफोर्ड लेन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 6 जून को सुबह के 8:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और घोंबी वैम्पियर रोड, घोंबी और ट्रिबल असेट और मोविलाक के पास के, और फिर से सुनिए सूचना, वैम्पियर रोड, घोंबी, ट्रिबल असेट और मोविलाक के आसपास के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 7 जून को दिन के 11 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीएन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह के 7:26 हो रहे हैं। सभी प्यार प्यारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा प्यार भरा नमन स्वीकार करें। माइक पे हम हैं आपके होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह, और अभी मस्त मॉर्निंग शो प्रस्तुत है सुबह का नजराना, अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी है कुशल मंगल है, तंदुरुस्त है और हमारा साथ दे रहे हैं। सुबह का नजराना वो कार्यक्रम है जहाँ पर हम लाते हैं प्यारे प्यारे गाने, लवली म्यूजिक, फिर होता है कुछ बॉलीवुड न्यूज़, कहानी, चुटकुले, कविताएं और मीठी मीठी बातें। सो आपकी मॉर्निंग को एकदम मस्त बनाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर आप लोगों का साथ देने के लिए रेडियो मॉरिशस पर, और आप हमें सुन रहे हैं लाइव, साथ में आप हमें रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं। थैंक यू हमें देखने के लिए, हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को आज के चिंतन के साथ, और आज का चिंतन आप सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी द्वारा।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: निवेश वही कीजिए जहां से लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं हों, फिर बात चाहे पैसों की हो, भावना की हो या समय की हो।

जिंदगी हर एक क्षण जो है, जिंदगी का हर एक क्षण एक इम्तिहान है, और इम्तिहान में वही पास होता है जो इंसान बहादुर होता है, समझदार होता है। सो ये जिंदगी एक जंग के समान है, इस जंग को लड़ना पड़ता है। कुरुक्षेत्र है ये दुनिया, हर किसी को अपना जंग लड़ना ही पड़ता है, और जीत उसी की होती है जिसके पास हिम्मत और साहस है।

0: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन
1: लेकर आ रहे हैं आपके लिए
2: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल दिस सैटरडे 6 जून फ्रॉम 1 PM टू 4 PM एट ब्लू बे पब्लिक बीच.
1: म्यूजिक, गेम्स, गिफ्ट्स, full on masti, full on entertainment,
2: live performances, music, games, gifts aur bahut kuch.
1: So save the date,
3: miliye hamari aajis ke sath aur sath mein hamari artist Kunal Hirilal. Wagan pe amal dam dam diga diga mausam diga diga dam dam diga diga aur sath honge dance in the city.
2: Full on musti and manoranjan this Saturday 6th of June from 1 pm to 4 pm at Blue Bay Public Beach.
4: जय दोस्तों, जरूर आइएगा आज फैमिली बीच फन डे 6 जून 2026. आज हम आपसे मिलेंगे दिन के 1 बजे से दिन के 4 बजे तक. इसका प्रसारण होगा रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन पर भी. सो बेशक द होल टीम ऑफ रेडियो मनोरंजन एंड रेडियो मस्ती विल बी देयर मदर्स डे स्पेशल. सो आइएगा जरूर, ढेर सारे गिफ्ट्स, गेम्स. कहाँ पर आपको आना है? एट ब्लू बे बीच. जी हाँ, ब्लू बे सी साइड पर आइएगा और खूब मस्ती करेंगे MBC रेडियो की टीम के साथ. यस, वहाँ पर हम होंगे और आपसे मुलाकात करेंगे. आई एम श्योर यू वेलकम. यस, आइएगा अकेले नहीं, अपने दोस्तों के साथ, परिवार, बच्चों के साथ खूब मस्ती करेंगे दिन के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक एट द पब्लिक बीच ऑफ ब्लू बे. सो डोंट फॉरगेट द रेंडेवू आज दिन के 1 से 4 बजे के बीच. स्पेशल मदर्स डे विद द होल टीम ऑफ MBC रेडियो, रेडियो मनोरंजन एंड रेडियो मस्ती. और बेशक अब हो जाए एक प्यारा सा गाना, बहुत ही प्यारा सा गीत है शमशाद बेगम जी की आवाज़ में. और शमशाद बेगम के जो गाने हैं ना, एकदम ही प्यारे होते हैं और उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में प्लेबैक का सहारा दिया है. यस, एंड बहुत ही अच्छी गायिका है शमशाद बेगम और बहुत सारे गीतों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है. और बता दें कि उनके सभी गाने बहुत अच्छे होते हैं और लोग उसकी आवाज़ को बेहद पसंद भी करते हैं, है कि नहीं? और बेशक शमशाद बेगम जो है भारतीय सिनेमा की शुरुआती और सबसे प्रभावशाली पार्श्व गायिकाओं में से एक थी. उनकी आवाज़ बुलंद, स्पष्ट और अलग पहचान वाली थी. उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग की महान गायिकाओं में गिना जाता है. और उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में और बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था. और उन्होंने औपचारिक संगीत शिक्षा बहुत कम ली.

0: लेकिन उनकी प्राकृतिक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। उनकी प्रतिभा के को संगीतकार गुलाम हैदर ने पहचाना। उन्होंने रेडियो और रिकॉर्डिंग से शुरुआत की और फिर फिल्मों में गाने लगी। आगे चलकर वे उस दौर की सबसे लोकप्रिय महिला गायकों में शामिल हो गई और उनकी गायकी की बहुत विशेषताएं हैं। तेज़ और दमदार आवाज़ है उनकी, लोक संगीत का प्रभाव है, शब्दों की स्पष्ट प्रस्तुति है और भावनात्मक और ऊर्जावान शैली। उन्होंने लगभग 6000 से अधिक गीत विभिन्न भाषाओं में गाए, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी और तमिल। और उनके प्रसिद्ध गीत है कभी आर कभी पार, लेके पहला पहला प्यार, सैया दिल में आना रे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा, बुझ मेरा क्या नाम रे। और इन गीतों ने उन्हें घर घर प्रसिद्ध बना दिया शमशाद बेगम को। और उन्हें 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और 13 अप्रैल 2013 को उनका निधन मुंबई में हुआ, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के बीच जीवित है। सो आप में से जितने भी लोग शमशाद बेगम के चाहने वाले हैं, उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं, सो हो जाइए प्यारा सा गाना मेरे पिया गए रंगून। आगे क्या होता है एक साथ सुनते हैं।
1: बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

इस गीत के साथ ही इस सुबह का नजाना, इस प्रोग्राम का पहला भाग यहीं पर संपन्न होता है। याद रहे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सरोवर कार्यक्रम। उसके बाद सुबह के 8 बजे का पूरा समाचार बुलेटिन और शोक समाचार भी भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी समाचार। और फिर उसके बाद 8:05 पर हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर, रेडियो मॉरिशस पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: हिंदी स्पीकिंग यूनियन के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में आप सभी को डॉक्टर अंजलि चिंतामणि का सादर सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, हिंदी संगठन की प्रधान के नाते आप सभी को आज संबोधित करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि पिछले दो सप्ताहों के अंतर्गत हिंदी संगठन ने प्राथमिक पाठशालाओं के लिए जो कहानी कथन प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसका अंतिम चरण फाइनल्स 28 मई को पोर्टलिस के म्युनिसिपल सिटी काउंसिल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चार प्रारंभिक सत्रों अर्थात प्रिलिमिनरीज के अंतर्गत देश के चारों जोन से लगभग 100 छात्रों ने अपनी सुंदर कहानियां प्रस्तुत की, जिनमें से 20 छात्र फाइनल्स में चयनित हुए। और आज बड़े ही गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमारे साथ प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता स्टूडियो में अपनी अध्यापिका सहित उपस्थित हैं। चलिए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। प्रथम स्थान पर आए हैं ताकू प्रसाद खरांशु, जो ग्रेड 6 से हैं और जो राजकुमार गजाधर सरकारी पाठशाला में पढ़ते हैं। उनके साथ उनकी अध्यापिका श्रीमती इतिशा बाबू बुझनुत, जो वहाँ DHT हैं, वे भी आई हुई हैं। आपका स्वागत है। साथ में द्वितीय स्थान पर आई हैं चतुर्वेदी श्रेया, जो ग्रेड 6 से ही हैं, एनएस फ्लोरा सरकारी पाठशाला में पढ़ती हैं, और उनकी अध्यापिका श्रीमती आराधना राजवंती हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, जो डेप्यूटी हेड टीचर हैं। आपका भी दिल से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
1: धन्यवाद।
0: आप दोनों विजेताओं और अध्यापिकाओं को मैं पुनः बधाई देती हूँ। और विशेषकर बच्चों, मैं जानती हूँ कि हमारे श्रोता आपको सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक होंगे। तो सबसे पहले श्रेया, आप हमारे श्रोताओं को अपनी कहानी का एक अंश कृपया सुनाइए।
2: कहानी के अंतर्गत अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि किसने गृह कार्य पूरा नहीं किया, और हेमा का उत्तर कुछ इस प्रकार से आता है, अध्यापिका जी, हमर माँ बोलन, आयो देर हो गलबा, हिंदी होला छोड़ दे। भोजपुरी सुनकर कुछ बच्चे हा हा हा हंसने लगे, यहाँ तक कि कुछ बच्चे शर्माने लगे। दैया रे दैया, कैसी दशा हो गई है आज, हिंदी भाषा पर हंसी, भोजपुरी भाषा पर शर्माना, क्या हिंदी भाषा इतना पीछे छूट रही है। सावधान, अगर भाषा गई तो संस्कृति भी गई, भले ही भूल होना प्रकृति है, लेकिन मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है, स्थिति सुधारना है। आज कल के बच्चों में हिंदी और भोजपुरी का उत्थान करना ही होगा, हिंदी और भोजपुरी का झंडा लहराना ही होगा, हाँ लहराना ही होगा। कक्षा में तो पूरा नमूना है, अलग अलग नमूनों के लिए

0: अलग अलग टेक्निक अपनाना, कभी अध्यापिका तो कभी माँ बनकर ममता की भावना जगाना, कभी डांट कर तो कभी प्रेम से समझाना, कड़ी मेहनत तथा अनेक गतिविधियों का प्रयोग। साल के अंत तक आते आते सभी के पैरों तले सफलता चूम ही गई। एक दूजे के प्रति आदर की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान, हिंदी भोजपुरी अपनाना और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में रुचि जागृत हुई। सच में जब कुछ ठान लेते हैं तो जीत हो ही जाती है। अंत भला तो सब भला, कहानी से यह सीख मिलती है, हिंदी भोजपुरी सीखना, सिखाना एवं प्रचार प्रसार करते रहना। प्राचीन युग, आधुनिक युग, भविष्यत युग, जय हिंदी, जय भोजपुरी।
1: बहुत सुंदर शैया, धन्यवाद। और मैं कहूँगी कि पहले यह बताओ कि तुम्हें क्या हिंदी भाषा पसंद है?
0: हाँ, बचपन से ही मैं हिंदी वातावरण में पली बड़ी हुई हूँ। हिंदी भाषा की मधुरता और सरलता मुझे बहुत पसंद है। जैसे हम इस भाषा को बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। अपनी कहानी में मैंने जैसे बताया, भाषा गई तो संस्कृति भी गई। हिंदी भाषा हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है।
1: अच्छा, बहुत धन्यवाद। इतिशा जी, आप हमें यह बताइए कि खरांशु जिस कहानी की प्रस्तुति उसने की थी वह किस पर थी?
2: जिस कहानी का चयन हमने किया उसका शीर्षक मटके वाली बुढ़िया है। इस कहानी में जंगल में शेर, भेड़िया और मगरमच्छ बुढ़िया को खाना चाहते हैं और बुढ़िया बहाना बनाकर एक मटके में छिप जाती है। अंत में उसकी भेंट शेर से होती है। तो खरांशु, यहाँ से कहानी सुनाओ।
3: शेर बुढ़िया की बाट जो रहा था, जैसे उसकी नज़र मटके पर पड़ी वह जोर से गरजा। उसने कहा, अरे ओ मटके, क्या रास में तुमने किसी बुढ़िया को देखा है? अब बुढ़िया बहुत डर गई थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में उत्तर दी, चल मेरे मटके तिम भगतू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। शेर ने बुढ़िया की आवाज़ को पहचान लिया। उसने अपने पंजे से मटके पर जोर से चोट की और मटके के दो टुकड़े हो गए। बुढ़िया मटके से बाहर निकल आए। शेर ने कहा, अहा, अब मैं तुम्हें आसानी से खा सकता हूँ। परंतु बुढ़िया तुरंत नीचे झुक गए। उसने मूठे पर मिट्टी उठाई और शेर की आंख में झोंक दी। उफ, शेर चिल्लाया, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। बुढ़िया भागी, वह दौड़ती रही दौड़ती रही। शीघ्र ही वह जंग से बाहर निकल आई। वह सुरक्षित अपने घर पहुँच गई। बुढ़िया ने कहा, मैंने सबको खूब ललचाया पर कोई मुझे खा ना पाया। माना कि मैं बुढ़िया हूँ पर अकल में बढ़िया हूँ। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर खरांशु, आपने इस छोटे ही अंश में जैसे आवाज़ बदल बदल कर बात की और अलग अलग भूमिकाएं निभाई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको।
3: धन्यवाद।
1: आराधना जी, अब आप हमें बताइए कि हिंदी के प्रति बच्चों में ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के प्रति उनकी रुचि आप कैसे जगाती हैं?
4: सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगी कि हिंदी के प्रति प्रेम जगाना ज़रूरी है। हमें पुस्तकीय दुनिया और कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हिंदी की पढ़ाई को मज़ेदार, आकर्षक और प्रभावशाली बनाए रखना है। खेल तथा मनोरंजक माध्यमों का प्रयोग और साथ ही साथ छात्रों को अभिनय और नाटक द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ती जहां हिंदी का बोलबाला नहीं
1: जी।
4: चाहे प्रातःकालीन प्रार्थना के समय, संगीत दिवस हो, पुरस्कार वितरण दिवस हो, चाहे जो भी उत्सव हो, छात्र हिंदी गीत, हिंदी कविता, हिंदी नृत्य तथा हिंदी कहानी ज़रूर प्रस्तुत करते हैं। साथ में जब भी कोई उत्सव होता है तो मैं छात्रों से शुभकामना कार्ड बनवाती हूँ ताकि वे अपने दोस्तों एवं माता पिता या परिवार के सदस्यों को हिंदी में ही शुभकामनाएं दें। मैं एक ऐसी क्षेत्र से जुड़ी हूँ जहाँ हिंदी सीखना, सिखाना एवं प्रचार प्रसार करना मेरा परम लक्ष्य है।
1: बहुत अच्छा राजवंती जी,

0: आपने सही कहा, इसी तरह प्रेरित करते रहें छात्रों को। और इतिशा जी, अब मैं आपका अनुभव थोड़ा जानना चाहूँगी, कैसे आपने खरांशु का मार्गदर्शन किया?
1: जी, इस प्रतियोगिता में भाग लेकर मेरा अनुभव बड़ा ही सुखद और संतोषजनक रहा। स्कूल में हम 4 हिंदी अध्यापिकाएं हैं और हम सब ने मिलकर खरांशु का मार्गदर्शन किया। यह हमारा सौभाग्य है कि स्कूल की मुख्य अध्यापिका हमेशा ऐसी गतिविधियों तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा अपना सहायता देती रहती है।
0: जी, बहुत ठीक। और खरांशु, आप हमें बताइए, इस प्रतियोगिता में जब आपने भाग लिया तो आपको कैसा लगा?
2: वहाँ पहले मुझे कुछ डर लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से अनजान लोग और छात्र थे। सभी बच्चे अच्छा कर रहे थे। अपनी बारी इंतज़ार करते करते मुझे विश्वास हुआ कि मैं भी अच्छी तरह से कहानी सुना पाऊँगा। बहुत अच्छा लगा और डर भी, परेशान भी हुआ।
0: अच्छा, चलो, कभी कभी परेशानी अच्छी होती है ना। देखो, मेहनत रंग लाई। और तुमने विशेष रूप से क्या सीखा इस प्रतियोगिता में भाग लेकर?
2: मैंने सीखा कि मेहनत करने से सफलता और सम्मान मिलता है, डरना नहीं चाहिए। अब मुझ में आत्मविश्वास आया है कि मैं मंच पर निर्भय होकर लोगों के सामने हिंदी में बोल सकता हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छा है। मैं आशा करती हूँ कि जितने हमारे श्रोता या बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनको भी प्रेरणा मिले और आगे चल के जब भी इस तरह की गतिविधियाँ हो, चाहे स्कूल के स्तर पर, तो इन गतिविधियों में वे खूब भाग लें। ऐसा नहीं है कि डर गए, बोलते हैं ना, डर गए तो मर गए। मतलब डरना नहीं है, भले दिल में डर थोड़ा हो, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना है और भाग लेना है, तभी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना? अच्छा, वंदना जी, आप हमें बताइए कि कभी कभी बच्चों को तैयार करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो होती होंगी, आपको किसका सामना करना पड़ा?
3: हाँ, कठिनाइयां तो होती हैं। वैसे तो कुछ भी आसान नहीं होता है, लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा कि जब कुछ ठान लेते हैं तो जीत हो ही जाती है। और बहुत परेशानियों के बाद जो मेहनत हम लोगों ने किया वो आज फल लाया और हम विजेता के रूप में हैं।
0: ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही। और इतिशा जी, आप बताइए कि आपके स्कूल के स्तर पर आप कैसे रुचि जगाती हैं बच्चों में?
1: जी, हम बच्चों को केवल कक्षा में नहीं रखते हैं, वार्षिक गतिविधियों में हमारे छात्र हर साल भाग लेते हैं। और इसके अलावा गत साल से मुख्य अध्यापिका के निर्देश से हम एक हिंदू पर्व पर 20 मिनटों का एक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। उसमें छात्र हिंदी में बोलते हैं, नाटक प्रस्तुत करते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, और 700 छात्रों के बीच खड़ा होकर बोलना और 60 स्कूल कर्मचारियों के बीच खड़ा होकर बोलना, इससे छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ रही है। बच्चों को लगता है कि हिंदी आज भी महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है।
0: जी बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं। इसी तरह मेहनत कीजिए, दिशा निर्देश बच्चों का करते रहें। तो श्रोताओं, हमारी अध्यापिकाओं को, हमारे बच्चों को सुनकर हमें लग रहा है कि हिंदी भाषा बोलना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी होता है कि अतिरिक्त गतिविधियों में बच्चों का भाग लेना, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही सहायक होता है। और वैसे तो मन तो करता है कि इन बच्चों को हम सुनते रहें, इनकी सुंदर सुंदर कहानी हमें ये बच्चे सुनाकर आनंदित करते रहें, लेकिन फिर भी समय की मर्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगी कि जल्दी ही MBC TV पर जो भी हमारा फाइनल्स हुआ है उसका पूरा प्रसारण होगा MBC TV पर, और हमारे वेबसाइट में हम उसकी सूचना डाल देंगे कि कब यह प्रसारण होगा। जो लोग उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए, कम से कम इस कार्यक्रम को देखने से बच्चों में जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, वह आप लोग देख पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो 20 छात्र थे जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन सभी की प्रस्तुतियाँ आप सुन पाएंगे। और हमारे लिए, हम तो कहेंगे कि सभी प्रतिभागी, ये जो 100 पार्टिसिपेंट्स थे, प्रतिभागी थे, वे सब हमारे लिए विजेता हैं। हम उनके माता पिता, मुख्य अध्यापक, अध्यापक और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच में आराधना जी, इतिशा जी, खरांशु और श्रेया, आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हिंदी को अपनाकर आगे बढ़िए, सफल

0: सफलता आपके कदम चूमेगी। एक और कार्यक्रम तक आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार, शुभ दिन।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: भोजपुरी में समाचार सुना जा। ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेता शगस मुद्दा के लेके अभी ले अपन रुख बदले के तैयार ने हवन जा। मॉरिशस की संप्रभुता के मान्यता देवे होला विधेयक के अभी अलग रखे के बाद डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के लॉर्ड वेयर ऑफ बालीहोल्म कल फजर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक नवा प्रस्ताव पेश कर लन। प्रस्ताव के उद्देश्य कोनो भी आगे की प्रक्रिया के रोके के बात है। वो लोग एकर में तीन गो शर्त रख ले हवन जा, यानी तीन तरह की बाधा। वो बोलन के जबले ई शर्त पूरा नहीं हो तब ले मॉरिशस ई द्वीप पर अपना अधिकार आधिकारिक रूप से लागू नहीं कर सकी। ओलिविए बोंकुल्ट ई वक्त लंदन में शागस शरणार्थी समूह के कई गो सदस्य लोग संगे मौजूद हवन जा। पूरा सप्ताह वो स्टीफन डाउटी, ब्रिटिश सांसद और पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्य और जेरेमी कॉर्बिन संगे कई गो बैठक में भाग ले लंजा। ओलिविए बोंकुल्ट मॉरिशस और यूके के बीच होल समझौता के समर्थन में अपन बात रख लंजा। एक संगे शागस वासी के अपेक्षा और चिंता पर भी बात कर लंजा। बोलन के जो नजना से वो भेंट कर लंजा। वो शागस वासी की चिंता और मांग के खूब ध्यानपूर्वक सुन लंजा और उन पर विचार कर लंजा। कैबिनेटी नोट कल के अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के पत्र के अनुसार कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में बोला वायरस के प्रकोप अभिले गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बनल बाते और वायरस के फैले की आशंका जस्ते बाते। स्थिति के देख के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा में मॉरिशस के राजदूत विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से परामर्श कर लंजा। सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और विदेश से जुड़ल कार्यक्रम सम्मेलन और कार्यशाला के सीमित करे के सलाह दे लंजा। कैबिनेट की भी नोट कर ल कि जुलाई 2026 में सेशेल में होल क्षेत्रीय संसदीय मंच अभी खाली वर्चुअल रूप से आयोजित हो। एक संगे मॉरिशस में प्रस्तावित यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की आवत आदेश ले स्थगित करे के भी निर्णय लेवल गल बाते। इलेक्टोरल कॉलेज ई दूगो शब्द गैल मंगल की राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पारित होवे के बाद असी लगातार चर्चा में बाते। किंतु ई विचार अलायंस डू शांजमों के चुनावी घोषणा पत्र में पहले से मौजूद रहल और ई विधेयक में औपचारिक रूप से 26 मई के दूसरका परहत के बखत शामिल करल गल। किंतु आखिर ई इलेक्टोरल कॉलेज का है जो भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव के जिम्मेदारी संभाले सकेला। प्रधानमंत्री के अनुसार ई व्यवस्था जस्ती संतुलित और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे के एगो माध्यम हो सकेला और संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी के अनुसार मॉरिशस के संदर्भ में ई ग्रैंड इलेक्टर्स पहले से चुनल गल जनप्रतिनिधि भी होवे सकेलन जा। विदेश में मध्यपुर में जारी संघर्ष ढेर जना के भूखमरी के शिकार बनाईले बाते। कहे कि ईंधन और परिवहन के बढ़त लागत से खाद्य सामान की कीमत बढ़ गल बाते और धन की कमी से सहायता एजेंसी की सहायता कमटी करे के परता। ई जानकारी संयुक्त राष्ट्र

0: राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP काल देलंजा। तेरी रहल भोजपुरी में समाचार, आप लोग के ध्यान का थी धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा। नंबर 14 ए सहिलारी ब्लड एवेन्यू कैथोबोन में, नंबर 14 ए सहिलारी ब्लड एवेन्यू कैथोबोन में 103 बरिस के 103 ans के श्रीमती सनमत दसोई पैदाइशी नाम गोकुल जिनकरा लोग सुगिन नाम से जानत रहनजा गुसरगल हवन करमा थी। आज दिन की 12:00 आज दिन की 12:00 उनकर घर है। नंबर 14 ए सहिलारी ब्लड एवेन्यू कैथोबोन से उठा के दफनावे खातिन 3 माइल के शमशान भूमि ले जावल जाए। फिनिश फॉर टुडे एट 9:30। नंबर 4 बी एम्पास जिले बाउंड्री रोज जिल में, नंबर 4 बी एम्पास जिले बाउंड्री रोज जिल में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री भुवनेश्वर सिंह अंगातिया जो राकेश नाम से जानते रंजा गुजर गल हवन करमा थी। आज दिन के एक बजे उनकर घर है। नंबर 4 बी एम्पास जिले बाउंड्री रोज जिल से उठा के अंतिम संस्कार का दिन कोडो गांव के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे at 1 PM. La Violette Road, l'escalier pleinement nommé. La Violette Road, l'escalier pleinement nommé. Pachpan Baris, qui 55 ans, qui est Shri Prakash Naiku, j'en karalog, j'en nam, si j'en net l'anja, ou j'en go pourve, police officer l'anja, gozer gal havan karmati. Aj din ki ek baji, un kar pita, Shri Subhash Chand Naiku, qui gharé La Violette Road. इसकालिए प्लानमानियों से उठा के अंतिम संस्कार का दिन प्लानमानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे आज 1 PM। अब्दुल कलाम आज़ाद स्ट्रीट सिटी लाफे अम्बांबू में, अब्दुल कलाम आज़ाद स्ट्रीट सिटी लाफे अम्बांबू में 63 बरिस की 63 अंक श्रीमती राजकुमारी कोयलाश पैदाइशी नाम तिरबन और जिनकरा लोग अनीता नाम से जनत रंजा गुजर कर हवन करमा थी। आज दिन के ग्यारह बजे उनकर घर है अब्दुल कलाम आज़ाद स्ट्रीट सिटी लाफे अम्बांबू से उठा के अंतिम संस्कार खातिन बेजिन बाम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। नंबर 103 सिटी गारीबू वाली दे प्रेत में, नंबर 103 सिटी गारीबू वाली दे प्रेत में 83 बरिस के 83 ans के श्रीमती चांदो जोगना जिनकरा लोग शांति नाम से जानत रंजा गुजरगर हो उनकर माती। आज दिन के डेढ़ बजे उनकर बेटा श्री सुनील उजागिया के घर नंबर 103 सिटी गारीबू वाली दे प्रेत से उठा के अंतिम संस्कार का दिन सिपाही भूली के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे एट 1:30 PM। पावियों कप मालोरो में 73 बरिस के 73 ans के श्रीमती तुलस्यामा कार्यवालू पैदाइशी नाम कोलापा जिनकरा लोग आली नाम से जानत रंजा गुजर गल हवन करमाती। आज दिन के दो बजे उनकर घरे पावियों कप मालोरो से उठा के अंतिम संस्कार खातिन कप मालोरो के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे एट 2 PM। Rairoud Mont-Salmon-Saint-André mais Tirasi Baris qui 83 ans Kishi Kumar Jagdhar Shri Kumar Jagdhar Jinkara Log Kasi Nam Si Janat Ranja Guzar Galhon Karmati Aaj Din Ke 3 Baje Aaj Din Ke 3 Baje Unkar Beta Shri Sanjay Jagdhar Ki Ghari Rairoud Mont-Salmon-Saint-André Si Utha Ke Antim Saskar Katin Mont-Salmon-Saint-André Ki Shamshan Bumi Li Jawa Jai Krivishan Tudi At 3 PM Shogras Parivar Sange Hamni Ki Sahanubuti Bate

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सुबह के 8:16 हो रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, आप सभी को एक बार फिर राजे प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। और अब लीजिए सुनिए एक विज्ञप्ति। जी हाँ, श्री सत्य साई बाबा जो है, श्री सत्य साई ग्रुप कोटेज में पाया जाता है, सो वहाँ पर कल रविवार 7 जून को रक्तदान हो रहा है, ब्लड डोनेशन हो रहा है। सुबह के 8 बजे से दिन के 1 बजे तक साई बाबा मंदिर रॉयल रोड कोटेज में। सो जनता आमंत्रित है इस रक्तदान में भाग लेने के लिए। जी हाँ, आपका एक बूंद का खून किसी का जीवन बचा सकता है। सो ज़रूर अपना खून दीजिएगा। ब्लड डोनेशन रक्तदान कल इसका आयोजन किया गया श्री सत्य साई ग्रुप कॉटेज साई बाबा मंदिर रॉयल रोड कॉटेज में सुबह के 8 बजे से दिन के 1 बजे के बीच। अपना आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। और अब प्रस्तुत है सीबी की ओर से एक ज़रूरी विज्ञप्ति। जी हाँ, सीबी की ओर से एक ज़रूरी विज्ञप्ति है, सुन लीजिए। यस, मोका एविशिया मोसेलमो मोन्टोक्यू मोसेलमो मेरीटाउन और ऑक्सफोर्ड लेन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 6 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी असुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन लेकर आ रहे हैं आपके लिए
1: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल दिस सैटरडे 6 जून फ्रॉम 1 PM टू 4 PM एट ब्लू बे पब्लिक बीच.
0: म्यूजिक, गेम्स, गिफ्ट्स, full on masti, full on entertainment,
1: live performances, music, games, gifts aur bahut kuch.
0: So save the date,
2: miliye hamare artist ke sath aur sath mein hamare artist Kunal Hirilal. Wagan pe amal dam dam diga diga mausam diga diga dam dam diga diga aur sath honge dance in the city.
1: Full on musti and manoranjan this Saturday 6th of June from 1 PM to 4 PM at Blue Bay Public Beach.
3: जी हाँ, सो जरूर आइएगा आज दिन के 1 बजे से 4

4 बजे तक ब्लू बे के साइड पर और खूब मस्ती होगी वहाँ पर। रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती की पूरी थी। वहाँ के ऑडियंस होंगे, फिर बहुत सारे कलाकार परफॉर्म करेंगे। मदर्स डे के अवसर पर होगा ढेर सारे गिफ्ट, सरप्राइजेस, गेम्स। सो आइएगा ज़रूर, हम भी आपसे मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट द रेंडेवू आज दिन के 1 से 4 बजे एट ब्लू बे सीसाइड। सुबह 11:20 हो रही है और अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक सुबह का नजराना कार्यक्रम, इसका दूसरा भाग। इसमें आप अपनों के नाम गीत मांग सकते हैं, लाइन खुली हुई है 4028085, या फिर हमारे टिकटॉक पेज पर आप SMS द्वारा भेज सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट गाना धीरज आधीन के नाम, नंदेश्वर साहनी है गीत अपने नाम भी। जोन बेग भी हमारा साथ दे रही है। हेलो रिया, अगला गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। करण कुमार आपके नाम भी अगला गीत। फिर याली शाम यह गीत आपके नाम। आनंद प्रादा तनिषा ये गीत आपके नाम भी। इंदिरा लौटन ये गीत आपके नाम हम करेंगे ज़रूर बहुत प्यार के साथ। और फिर यू आर फ्रांसवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू जी। उषा दीना यह गीत आपके नाम भी हम करेंगे। और गीत कौन सा है? गीत है फिल्म अनमोल का, आएगी वो आएगी डोरी चली आएगी। आरती जी ये गीत आपके नाम भी हम करेंगे। फिर यही गाना कविता दलीप के नाम, मीनू ये गीत आपके नाम भी। और यही गाना रेबिका रूबी के नाम, सुल्ताना ये गीत आपके नाम, सुलीमा यह गीत आपके नाम हम करेंगे। और यही गाना हम चला रहे हैं आशा मित्यु किरसन के सभी परिवार के लिए। आशा मित्यु रेजी काम करती है, फिर मावती हाजब है, उनकी बेटियाँ, उनके पति और सब राजा परिवार के नाम। अगला गीत वरुणा सेवन यह गीत आपके नाम भी। और वैन भी हमारा साथ दे रही है, सुल्ताना जी यह गीत आपके नाम। और जितने भी लोग रेडियो मोशन पर हमें सुन रहे हैं और हमारे टिकटॉक पेज पर हमें फॉलो कर रहे हैं, सो यह गीत आपके नाम, आएगी वो आएगी दौड़ी चली आएगी।

0: आएगी वो आएगी, दौड़ी चले आएगी, अगर वो सच्चे दिल से आपसे प्यार करती है तो वो जरूर आएगी। अगला गाना, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर, शमशाद बेगम की प्यारी सी आवाज में ये गाना। और इस गीत के मांगने वाले कौन से दोस्त है, चलिए उनसे मिलेंगे। अभी फोन पर कोई है? हेलो,
1: हेलो, नमस्कार प्रणाम जी।
0: नमस्कार जी, आपका नाम?
1: मैं एक फरमाइश कर,
0: नहीं पहले आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम नैना है, ट्वाबजिक से।
0: ओके, आपका स्वागत है नैना।
1: मेरी एक शादी की सालगिरह हुई है आज, 1 year, दीपा और राजीव जो कार्डबोर्ड रहते हैं।
0: सोने ढेर सारा प्यार, कांग्रेचुलेशंस,
1: थैंक यू। और उनके सासू माँ के लिए, उनके ससुर के लिए, और उनके माता पिता जो मेबैग रहते हैं, उनके माता के नाम है ज्योति और उनके पिता के नाम है देव, और उनके छोटे भैया जो सुजाफिक में पायलट की काम कर रहे हैं, उनके नाम है केशव, और सभी परिवार के लिए डाल देना।
0: सो नाम, अगला प्यारा सा गाना हम करेंगे, कभी यार कभी पार।
1: फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।
0: नहीं, गीत है हमारे पास, हम आपका नाम जोड़ देंगे। ओके, ऑलराइट। श्यामा जी विल में से, हेलो श्यामा जी।
2: हेलो, नमस्ते प्रताप जी,
0: कैसी है आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: आपका आशीर्वाद है।
2: मैं श्यामा विल में से बोल रही हूँ,
0: आपका स्वागत है।
2: तो मेरी नाती का जन्मदिन है, यानिश मांगो, आज ही वो 16 साल के हो रहे हैं।
0: ओह, हैप्पी बर्थडे।
2: तो उसके माँ है श्वेता, उसके पापा है मान।

0: बहन परी और आंटी है नीतू, रेशमा, यानिश, विष्णु, निधि, अनुष्का, यश और मंगो और मिला परिवार की ओर से।
1: ओके, हमारी ओर से भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है।
0: ओके
1: ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और एक दूसरे लाइन पे, हेलो
2: हेलो,
1: नमस्ते श्रीमती जी, सुयाक से, कैसी है श्रीमती जी? ठीक है,
2: ठीक है, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है।
2: वो गाना जो चलाने वाला है,
1: कभी यार कभी पार,
2: ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: हाँ, मुझे भी।
2: जैसे मैंने सुना ये गाना चलने वाला है,
1: हाँ,
2: तो मैंने झट से
1: फोन कर दिया,
2: टेलीफोन धर लिया।
1: और आपको लाइन मिल गई, क्या बात,
2: मिल
1: है?
2: गया, मिल गया, ऊपर वाला के भाग से मिल गया। तो मेरे खातिर बजा देना ये गीत, और मेरे सारी परिवार की तरफ से,
1: ओके,
2: चंद्रमुनि परिवार, मोहित परिवार की तरफ से ये गीत चला देना।
1: जी हाँ, चलाएंगे जरूर ये गीत आपके नाम भी। और इस समय बहुत से लोग मुझे टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं। जय रॉकस्टार, यह गीत आपके नाम, स्वीति आपके नाम, स्वर्णाकर स्वीति जिसे हमने बताया, ये गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। लवली भी हमारा साथ दे रही है, सलीमा और बेशक क्वीन भी हमारा साथ दे रही है इस समय, और जित रोशनी भी अभी आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए टिकटॉक पेज पर और रेडियो मॉरिशस, और ये लाइव चलेगा दिन के 9 बजे तक। सो आप हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, और रेडियो का ये कार्यक्रम आप टिकटॉक पेज पर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाय अभिषेक, यह गीत आपके नाम भी हम करेंगे, और यही गीत संजय बिहारी की ओर से उनकी पत्नी सुरेखा और पूरे बिहारी परिवार के नाम, माधव की ओर से गीत उनके पापा कवि, मामा चीना, दादी माला, पपोरीना और सब बैरव परिवार के नाम। फिर यह गीत हम चलाएंगे रविश मंडू के नाम, उनकी मामा, उनके पापा, भाई, भाभी और सभी मंडू परिवार के लिए। और यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे बनमाली के नाम, भाई बनमाली जो मौताबा के रहने वाले हैं, शास्त्री बनमाली, यह गीत आपके नाम भी। और यही गीत हम चलाएंगे आयशा, दीपशिखा, दीपा, कियारा के नाम, ऑन बिहाफ ऑफ जय रॉकस्टार। मौची नौसेनी भी हमारा साथ दे रही है, यह गीत आपके नाम भी हम करेंगे। बहुत ही पुराना गाना है, पर एकदम ही प्यारी सी दिलकश आवाज़, वाह भाई वाह, क्या आवाज़ पाई है शमशाद बेगम जी ने। यस, फ्रॉम द गोल्डन हिट्स, यस, कभी आर कभी पार। और जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको लाइन नहीं मिल रही है, तो सभी रेडियो मॉरिशस के सुनने वालों के नाम और सभी रेडियो मॉरिशस के दर्शकों के नाम जो हमें टिकटॉक पेज पर फॉलो कर रही है, कभी आर कभी पार।

0: दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जीवन में हम जो कुछ चाहते हैं वो हमें मिले। जरूरी ये है कि जो कुछ मिला है हम उसमें खुश है, संतुष्ट है कि नहीं। वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। सोचने वाली बात है कि नहीं। अगला गाना फिल्म हवस से लिया गया है बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में, और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अक्षय दर्शनी, यह गीत आपके नाम। फिर लुईज, ये गीत आपके नाम भी। और ये गाना हम चलाएंगे, यस, शिव मंदिर के सभी सदस्यों के नाम ग्लेन पॉग वाकवा से। और यही गाना हम चलाएंगे अनीता लाल जी के नाम, आप हैं मौदाल बेया से, उनके पूरे गोगा परिवार के नाम। और अभी एक फ़ोन है, चलिए हम फोन लेते हैं। हेलो, हेलो जी,
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते।
1: हेलो प्रताप जी, नमस्ते।
0: आपका रेडियो सेट का वॉल्यूम बहुत जोर है, प्लीज कम कर दीजिए, वरना आपसे बात नहीं कर पाएंगे। हम कई बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, पर पता नहीं कुछ लोग क्यों नहीं सुनते। जब भी आप फोन करें कृपया अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दें, वरना आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। हर काम में नियम होता है, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, प्लीज फॉलो द डिसिप्लिन। मनोज पैथिया, यह गीत आपके नाम और सब लिसा परिवार के लिए, सेबास्टोपोल से है। और चलिए, और एक कॉल है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते।
2: हाँ नमस्ते प्रताप जी।
0: प्रेमिला जी, कितने दिनों के बाद आप हमें फोन कर रही है ना?
2: हाँ, तब ना एक बार की थी, आपने बोला कि अब फोन करना।
0: आप हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर? देख पा रहे हैं? नहीं
2: नहीं देख पा रहे हैं, देखूंगी।
0: आपके मोबाइल में शायद वो फंक्शन डालना होगा, तब आप देख पाएंगे। ये प्रोग्राम लाइव है, टिकटॉक पेज पर लोग हमें देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं। कैसे हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है?
2: स्वास्थ्य अच्छा है अभी के लिए।
0: परिवार सब कुशल मंगल?
2: हाँ हाँ, सब कुशल मंगल। आपके परिवार सब कुछ?
0: सब ठीक, आपके आशीर्वाद से। आपको भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। और आज हम मदर्स डे मना रहे हैं ब्लू बे सी साइड में, आइएगा वहाँ पर। दिन के 1 से 4 बजे रेडियो एमबीसी का रेडियो वहाँ पर होगा आपका मनोरंजन करने के लिए।
2: कोई सहेली लेके
0: आऊंगी, जरूर आइएगा हमसे मिलने, हम भी वहाँ पर होंगे। ठीक है,
2: मेरे छोटा सा लवर कुश है।
0: हाँ,
2: फूले रहते हैं।
0: ओके, उनके नाम भी?
2: पापा का नाम है प्रवेश, विद्या। माता का नाम है विद्या। देवनाहन परिवार और विशेषर परिवार और श्री शंकर परिवार, जो गीत बाजार चल रहा है।
0: ओके जी,
2: 1 साल हो गया वो लोग का।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और एक दो लाइन पे हेलो से मिलेंगे। हेलो
3: हेलो प्रताप भाईजी, नमस्ते।
0: नमस्ते बहना, आपका नाम?
3: मेरे, मैं रीता भिखारी हूँ लालोगा से। आपने पुकारा, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई।
0: चलिए अच्छी बात है। और अगला गीत किसके लिए?
3: हाँ, मेरे बच्चों के लिए। मेरी बेटी है सविता, रेशमा, कृतिका, श्वेतिका, दामाद है विजय, और मेरे 3 बेटे हैं।

0: सूरज, विकास, प्रवीण, मेरे बिकारी परिवार, बंधु परिवार के लिए और बस गीतिया परिवार के लिए एक गीत डाल देना, जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए, क्या बात है।
0: हाँ, जब कोई मुश्किल पड़ जाए
1: तब तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है। सुख के समय में तो सभी लोग, सुख के समय में सभी लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, दुख दुख के समय में देखना चाहिए कौन आपके आगे पीछे।
0: ठीक है, ठीक है,
1: ओके। और एक दोस्त से लाइन पे मिलेंगे। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, प्यारी सी आवाज किसकी है?
2: मैं हूँ विद्यावती बालिशों से।
1: आपका स्वागत है।
2: हाँ, मेरे जन्मदिन है।
1: हैप्पी बर्थडे आपको, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद।
2: धन्यवाद। मुझे मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी पूनम, रेनु, प्रीति, बिंदिया और मेरे दामाद शिवानंद, सुभाष, सुदेश, जगदीश और सभी परिवार, सभी बच्चों की ओर से उन लोगों ने मुझे बधाई दी है। हाँ, तो हम, मेरे लिए एक गीत जन्मदिन के लिए डाल देना बाबू।
1: ओके, जरूर चलाएंगे अगला गाना। और यही गीत हम चलाएंगे पैट्रिसिया के नाम, जो हमें टिकटॉक पर फॉलो कर रही है, फिर क्रिस्टोफ है, फिर अलहयात सारा, फिर कौन है और, ये है दिव्यांका, दिव्यांका भी हमारा साथ दे दिया, थैंक यू जी। और दीपा, दीपा तिवारी दुखित है कनाडा से, उनके पति केविन, उनके बेटे और सब दुखित परिवार के नाम। वीना कुमसामी मेबर्ग से है, उनके बच्चे पति के नाम भी गीत। विश्वानी बाबूलाल लागोजा से है, आपके पूरे परिवार के लिए सुलमा दुखित, ये गीत आपके नाम भी। और सभी स्टूडेंट्स और अध्यापकों के नाम भी, स्पेशली सेंटोबैन SSS कॉलेज के रेक्टर ने, वहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स के नाम यह गीत। यही गाना MGI कॉलेज मोका के सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम, विदाउट फॉरगेटिंग यूनिवर्सिटी मॉरिशस के फैकल्टी और सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के BA फ्रेंच ईयर 1, ईयर 2 ईयर फ्री, MA फ्रेंच ईयर 1, ईयर 2 और PhD में एनरोल, फ्रेंच वो स्टूडेंट्स जो एनरोल है फ्रेंच में PhD कर रही है, एनरोल है, सो उनके नाम भी अगला गीत हम करेंगे। तेरी चाहत में, बहुत ही प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी हवस, चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं।

तेरी चाहत में मिटने लगे हैं, मरने लगे हैं, हाय क्या बात है। किसी की चाहत में इंसान अपने आप को खो देता है कि नहीं। अगला गाना है दिल मेरा चुराने लगा, फ्रॉम द मूवी अंगरक्षक। बहुत ही प्यारा सा गाना, कुमार सानू आका याग्निक की आवाज़ों में। और यह गीत हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम। यह गीत सतीश की ओर से उनके बेटे यश के जन्मदिन के शुभ अवसर पर माता पिता भाई सभी कज़न नानी ज्योति आशीर्वाद दे रहे हैं। और यश ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ कर रही है, हार्दिक शुभकामनाएं उनके परिवार की ओर से। सो यश, हैप्पी बर्थडे टू यू, लोड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन योर वे, ढेर सारा आशीर्वाद है। और राइट, और जितने भी लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, यह गीत आपके नाम हम करेंगे। और लक्ष्मण मौर्या, यह गीत आपके नाम। कियाना एलियोना, गुड मॉर्निंग, दिस गाना विल बी फॉर यू। फिर विशन साहब है, वसंती गोकुल भी हमें समय देख रही है टिकटॉक पेज पर ऑफ रेडियो मॉरिशस, शोभा जी भी है। और फिर अनिल मंगरू, पत्रिसिया भी है, और बेशक जो लोग काम कर रहे हैं बोंकुआश कहते हैं, जो लोग घर पे आराम फरमा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करे, सो गीत आपके नाम भी। जिमी दुखिया, ये गीत आपके नाम। राजमन्ना, सुदेश जसवा, उनकी मामा राजकुमारी, सब जसवा परिवार, होचा नायको परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं। एंड यही गाना हम चलाएंगे राधा सिबालक के नाम, और उनका बेटा है, बहू है, बेटी दामाद, और सिबालक परिवार के नाम। चंपा और देविका रामगतिया, वो भी हमारा साथ दे रही है, सो उनके नाम भी है गीत। प्रेमिला लकीर, ये गीत आपके नाम। और आज के कियाना एलियोना के भाभी का जन्मदिन है, आपने उनका नाम नहीं बताया, व्हाट्स हर नेम। ऑलराइट, सो गीत आपके नाम कियारा। यह गीत उनके पापा आनंद, मामा वीना के लिए भी बहुत बहुत प्यार के साथ सन, यह गीत आपके नाम भी। तो चलिए सुनते हैं यह गाना फ्रॉम द मूवी अंगरक्षक।

दोस्त सबको याद दिला देते हैं कि 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा प्रोग्राम सुनेंगे किरण चतुर जानकी जी द्वारा, और आज उनका विषय होगा कॉम्बैट अगेंस्ट ड्रग। उनके मेहमान होंगे आत्सुक ऑफिसर WPS नंदू देवी जी और वेद पाठक जी। सो डोंट फॉरगेट द रेंडेवू 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा पे टाइम मैगजीन विद किरण चतुर जानकी, और वो बात करेंगे कॉम्बैट अगेंस्ट ड्रग्स।

चिकली चुम चुम क्या गाना था मजा आ गया। एंड द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस प्रोग्राम शमशाद बेगम की आवाज कजरा मोहब्बत वाला, बहुत ही प्यारा सा गाना, वाकवा की शोभा की और उनकी बहन वीना और जिम्बसिया के नाम, क्याना एडियोना की ओर से उनके सिस्टर इन लॉ के नाम, नारायणन लवना के नाम भी यह गीत हम चलाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। रजनी गुहाया, फिर रजनी की ओर से ये गीत उनके डैडी, फिर मान देजी शिवबुदत और कालीचैन परिवार, नीलिमा की ओर से ये गीत उनके परिवार के नाम, कियाना हिरुना की ओर से उनके सिस्टर नौदानीचा के नाम यह गीत, और कियारा की ओर से गीत उनके पापा आनंद मामा वीना के नाम भी। और जितने भी लोग समय हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर और हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, सो गीत आपके नाम कजरा मोहब्बत वाला। इसी गीत के साथ ही इस वक्त का नजराना प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। द मस्त मॉर्निंग शो कम्स टू इट्स एंड, सुबह के 6 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर SMS, फॉर योर फोन कॉल्स एंड फॉर फॉलोइंग अस ऑन द टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस। हमारी आपकी मुलाकात होगी आज दिन के 1 से 4 बजे, हम आपसे मिलने आएंगे ब्लू बेस साइड पर, खूब मस्ती करेंगे दोस्तों, आइएगा ज़रूर। यस, दैट विल बी फैमिली बीच वन डे मदर्स डे स्पेशल, और MBC के ऑडियंस वहाँ पर होंगे, रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती, बहुत सारे सरप्राइजेज होंगे, ज़रूर आइएगा हमसे मिलने के लिए। फिर हमारे आपकी मुलाकात होगी आज, फिर कल मुलाकात होगी कल दिन के 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर, ऐसा भी होता है कार्यक्रम में, और कल रात को फिर से हम आपसे मिलेंगे 9 से 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी और जय प्रताप सिंह की ओर से, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, हैव ए वंडरफुल सैटरडे, बॉन वीकेंड, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं टीना बुधना। नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेता शागस मुद्दे को लेकर अभी भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं दिख रही है। मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने वाले विधेयक को फिलहाल अलग रखे जाने के बाद डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के लॉर्ड वेयर ऑफ बालीहॉल्म ने कल सुबह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी भी आगे की प्रक्रिया को रोकना है और उन्होंने इसमें तीन शर्तें रखी है, यानी तीन तरह की बाधाएं। उनका कहना है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक मॉरिशस इन द्वीपों पर अपना अधिकार आधिकारिक रूप से लागू नहीं कर सकेगा। और ओलिविए बांकुल इस समय लंदन में शागस शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद है। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टीफन डाउटी, ब्रिटिश सांसदों, ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कॉर्बिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविए बांकुल ने मॉरिशस और यूके के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागस वासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया। कैबिनेट ने नोट किया कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के पत्र के अनुसार कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में इबोला वायरस का प्रकोप अब भी गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है और इसके फैलने की आशंका अधिक है। स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जनेवा में मॉरिशस के राजदूत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से परामर्श किया है। सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और इन देशों से जुड़े कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाओं को सीमित करने की सलाह दी है। दो घरेलू विवाद 24 घंटे के भीतर दुखद घटनाओं में बदल गए। पहली घटना गुरुवार शाम काथोबोन में हुई, जहां एक बहस ने जानलेवा रूप ले लिया। नीलम मुनिसामी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने साथी फाब्रिनो क्यूपिडो की हत्या की। उनके अनुसार फाब्रिनो उन पर सिंथेटिक ड्रग्स लेने का आरोप लगा रहा था, जिसे वो पूरी तरह गलत बताती है। दूसरी घटना कल सुबह लिसालिन में हुई। 29 वर्षीय प्रवेश चेंग्या ने अपनी साथी स्नेहा जुटन पर चाकू से हमला कर दिया। पोर्टविस्ट की सीआईडी द्वारा पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसे अपनी साथी की बेवफाई का शक था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। और 9 बजे के इन समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम के तहत आज का विषय है ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष और किरण जानकी के मेहमान होंगे आजसू के अफसर पुलिस सर्जेंट श्रीमती नूतन नंदू देवी और श्रीमती विमला वेद पाठक। तो आज की चर्चा कार्यक्रम दिन के 10 बजे तक रेडियो मॉरिशस पर। विदेश में मध्य पूर्व में जारी संघर्ष लाखों लोगों को भूखमरी के कगार पर धकेल रहा है, क्योंकि ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। वहीं धन की कमी के कारण सहायता एजेंसियों को सहायता कम करनी पड़ रही है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने कल दी है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा में हम बात करेंगे ड्रग्स के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उस पर। आपको पता है कि ड्रग्स की समस्या दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और इस पर 2 सप्ताह पहले हमने बातचीत की थी और इस पर हमसे बात करने के लिए एक डॉक्टर साहब आए थे और आज हमारे साथ 2 आजसू अफसर हैं जो कि इस संघर्ष के बारे में हमसे बात करेंगे। और आप हैं सौजत नूतन नंदू देवी जी और फिर सौजेंट विमला वेद पाठक जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और जिस तरह से आप देख रही हैं हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, लेकिन ये 2 महिलाएं इस देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य चला रही हैं और ये कार्य हैं इस देश में ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष को जारी रखना। और ड्रग्स से क्या क्या हमारे समाज पर बुरा असर पड़ा है, इसके क्या गलत परिणाम हैं, इससे सभी लोग वाकिफ हैं आजकल। तो सबसे पहले तो हमें हम आप दोनों महिलाओं से, दोनों अफसरों से ये जानना चाहेंगे कि लाजसू जो हैं, ये जो पुलिस की एक इकाई है, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे देश में, हमारे समाज में आजसू की क्या भूमिका रही है?
2: आजसू की जो मेन भूमिका है वो तो है ड्रग के खिलाफ एक कम्बैटिंग ड्रग्स करते हैं।
1: जी हाँ।
2: कि ड्रग को आगे वो लोग ड्रग ना ले, उनको हम लोग वो मना करते हैं, उनको सब सिखाते हैं। फिर आजसू का ये भी काम है कि रिप्रेशन का जो जहाँ पे ड्रग डीलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वहाँ पे हम लोग पुलिस एक्शन लेते हैं, केस करते हैं, इंक्वायरीज चलाते हैं, फिर कोर्ट भेजते हैं।
1: अच्छा।
2: और लोगों को अरेस्ट करके फिर कोर्ट भेजते हैं।
1: ज़रूर। और आप लोग मानेंगे कि हमारे देश में जिस तरह से ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा है, वैसे ही ड्रग्स की जो समस्या है वो भी हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन इसके जो नए नए रूप हैं, जो नए नए ट्रेंड्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि इसके खिलाफ जो संघर्ष भी हैं, जो हमेशा से पर

0: परंपरागत संघर्ष रहा है, जिस तरह से आप लोग कार्य करते आ रहे हैं, आज उसमें नयापन लाने की आवश्यकता है। मतलब कि जिस तरह से समस्या का रूप बदल रहा है, इसके खिलाफ संघर्ष, इसके इससे निपटने के भी उपाय बदलते जा रहे हैं, तो ज़रा इस पर हमें बताएं।
1: तो जैसे जैसे अभी सबको दिख रहा है कि कैसे ये जो प्रॉब्लम है और बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, तो इसको लाइन में रखते हुए आचूर ने भी ऐसे कुछ वो कार्य कर रहे हैं हम भी, ताकि हम भी पेस टू पेस चल सके उनके साथ। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम भी वैसे वैसे एक्शंस ला रहे हैं, कानून में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ताकि इसके खिलाफ हम और अच्छे से लड़ सकें।
0: अच्छा, और फिर जब लड़ाई की बात हो रही है, मैंने कहा कि नए नए रूप, नई नई समस्याएं उभर कर सामने आ रहे हैं, तो सबसे जो पहला सवाल मन में आता है वो ये कि आज के दौर में ड्रग्स के हम देख रहे हैं बहुत सारे रूप हैं, तो ज़रा ड्रग्स के कौन, मतलब कि किस किस रूप में ड्रग्स आज उपलब्ध हैं, यही पता लगाना सबसे पहले आप लोगों का काम होगा। फिर इसके इसका जो संघर्ष है, इसके खिलाफ जो कार्रवाई है, वो आप स्थापित कर सकते हैं। तो जो ड्रग्स के नए नए रूप हैं, नए जो नई नई चीज़ें आ रही हैं समाज में, देश में, देश विदेश में, ज़रा इस पर हमें बताएं।
2: हाँ, तो किरण जी, नया नया ड्रग्स तो है
0: जी
2: बहुत सारा, लेकिन पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कैनाबिस जो है, गांजा जिसको बोलते हैं, और जो एओएन है, और सिमिक सिंथेटिक जो है, सिंथेटिक ड्रग्स जो है उसको सिमिक अभी बोलते हैं, तो वो नए प्रकार से अब मार्केट में आया है। जैसे एक सबसे पिछला प्रकार है, जैसे एक पेपर को लेके वो लोग सिमिक उसमें डालते हैं, फिर उसको काट काट कर छोटा सा टुकड़ा सिगरेट के जैसा इतना बड़ा उसमें डालते हैं, फिर इतना आसान है वो, जैसे मार्केटिंग करना उसका, उसको बेचना, उपलब्ध करना उसको बहुत बहुत आसान है। इसीलिए वो युवा जो है उसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अभी।
0: और फिर जब सिंथेटिक की बात हो रही है, तो एक मन में एक डर सा लगता है, और ये समस्या जो ड्रग्स की है वो आज कह सकते हैं घर घर की बात लगभग हो चुकी है। आप पहले तो ड्रग्स के बारे में हम सुनते थे, वीडियोस में देखते थे, लेकिन आज का जब आप गाड़ी लेकर निकलेंगे बाहर, तो ये नज़ारा ही, हमारा जो लैंडस्केप है वो बदल चुका है। और अभी हमने पर्यावरण दिवस मनाया, पर्यावरण की जब बात करते हैं, नज़ारों की जब बात करते हैं, तो हमारे देश की जो छवि है वो ये ड्रग्स की समस्या से जो ग्रस्त है, जो लोग वो बीमार भी हो सकते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे देश की छवि का एक हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसे में जब आपने शिमिक कहा, सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सभी लोग ये नाम सुनकर ही डर जाते हैं, तो क्यों डरते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि हर एक व्यक्ति जो किसी खंभे से कोई झूल रहा है या फिर कोई पड़ा हुआ है नीचे, तो क्या है ये सिंथेटिक?
2: तो थोड़ा भोजपुरी में बात करना चाहूँगी।
0: भोजपुरी बोली जाए।
2: हाँ, तो जैसे कि देखा तो रोज के फेसबुक में, टिकटॉक में, रोज के सब मोशन टिकटॉक फेसबुक में देखे जा, जे एक जना बाथेटिक ले ले बा, तो कौन पोजिशन में बा, कौन हाल में बा, वो बेहाल बा
0: जरूर,
2: कोनो खम्बा से जैसे बोलो थोड़ा थरा होल बा, कोनो ले जाता आगे जाए कि पीछे जाए।
0: हाँ,
2: जैसे बोलो ऐसा है, लादोग भी समझे हो गल बात है अब।
0: हाँ,
2: जैसे 20 साल पहले रहा वो अब ऐसे नहीं बा, बहुत मेलांज हो गया लादोग लोग में, आलो तो हवे खातिन हम लिफे हुआ जी फिर लौकता, 5 साल आगे नहीं लौकता भाई सब में, जैसे हबी बोलत हुआ तो ढेर लौकता हमें कि रोज के रोज बहुत कॉमन हो गल बा, जैसे बोले कि चाहना
0: कॉमन हो गल बा, और बोलल चला कि जस्ती खतरनाक भी बा।
2: हाँ, जस्ती खतरनाक सर, बस की जाने ना साइंटिफिक में कोनो चीज़ जना ला ओकर में, जैसे एरोइन तो एरोइन है, कैनाबिस तो कैनाबिस है, सिंथेटिक में नहीं जमना कौन चीज़ ओकर में डाले हुए सर, बस कि रोज के एगो क्वालिटी नुवो प्रोड्यू ओकर में डाले रहन सर, बस कि जब FSL भेजी ला सर हम सिंथेटिक जो सेजी करी ला जा, तो देखब ओकर डिफरेंट क्वालिटी नो लिख लेला।
0: हाँ
2: सर, जे एक एक चीज़ ओकर में लेबा, हमेशा वो लोग सहजे भी करते रहेला
0: जरूर।
2: हाँ,
0: और अगर मैं खतरनाक खतरनाक जो और एक से इंसान के मतलब कैसन खतरा बा जे ई लेवता
2: देखब।

0: दी लाद्रो कोनो लाद्रो गए शुअ टू साइंटिफिक वो ढेर प्रॉब्लमैटिक है ढेर घर में देख लड़ाई झगड़ा हुआ था ढेर घर में देख लड़का लोग माँ बाप के मारत बन लड़का लोग माँ बाप के जान निकाल दे हुआ था हयो हुआ था सगरो तो सुना था उसे तो हये साइंस चिक्के मेफे है बहुत दौजेरे है अरे हम भी बोलब सर युवा लोग के छुबे के नहीं उस
1: और ये भी सुना थे जा कि जब ई ओवरडोज ले लेबा तो कितने जना के मृत्यु भी हो जाता
0: है
1: मतलब जना कि उन लोग के स्वास्थ्य के सबसे पहला खतरा बा
0: स्वास्थ्य के सबसे पहला खतरा फैमिली में उन लोग के खतरा बस की रोज के रोज जैसे पैसा चाहे ना माँ बाप से लड़ाई करे रहन सा झगड़ा करे रहन सा
1: काम भी नहीं सके करे
0: काम भी नहीं सके करे बस कि वो लोग राजिक्षों में पड़ गए हम सर वो लोग की चला एगो ट्रीटमेंट एगो निमन ट्रीटमेंट नहीं चला देखे को लेके एगो क्रिमिनल हस पा ऐसे चला लोग एक मजे कॉम्पासियों थोड़ा चला रहे के हमें धन के दिल में बस कि वो लोग ए नहीं खुशी रहता सर हाँ ऐसे में रह के सकेला एगो कामारा डाल दे हो सकेला एगो सही खातिन वो लोग सुन ले बा लादोक साइंस ठीक था एक कुछ ज़्यादा सही करे तो सही कर ला में वो लोग जैसे बढ़िया जा
1: करो में पड़ गए
0: पीएस में तासे हो गए लंजा
1: अब नहीं सका था वंसनी करे
0: तो लोग के चला थोड़ा सुन एडी करे के हम बोली ला चला एडी करे के ओके चला मजे को ट्रीटमेंट पीटो
1: जरूर
0: ओके देवे के
1: जरूर तो जैसे सुनत हवा आज हमने के प्रोग्राम आज की चर्चा आधारित बा ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के लेके हमने के देश में और इस विषय पर बात करत हवन जा नूतन जी और विमला जी दुगो आजसु के अवसर आज हमने संगे हवन और हमने के जितना मन में सवाल बा और जितना हमने के देश में जो चलता ये सब समस्या से कैसे निपटल जाता कैसे पुलिस के इकाई जो बा आजसु एकर से निपटता ये सब बद हम बात करते थे जा और ये दोनों महिला हमने के ये सब सवाल के जवाब देवत हवन जा तो थोड़ा घड़ी में फिर मिलब जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

चर्चा कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। आज के जो विषय बा वो है ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष, और ये विषय पर बात करे खातिर

0: हमनी के स्टूडियो पर आज दुगो सुंदर महिला उपस्थित हवन जा। देखे में बहुत सुंदर हवन जा, लेकिन इन लोग के काम बहुत कठिन बा, बहुत सख्त काम करत हवन जा। एक बार फिर विमला जी और नूतन जी, आप लोग के ई मंच पर स्वागत बा। अभी हमनी के नूतन जी बोलत रहलन कैसे जो सिंथेटिक ड्रग बा वो कैसे बनेला, काहे वो जस्ती हानिकारक है, लेकिन दिक्कत है जा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही पीछे भागत हवन सा, चाहे कि सब कोई जानेला कि सिंथेटिक में बहुत ऐसन ऐसन पदार्थ मिलावल जाला जोन आपके स्वास्थ्य खातिर सकी आपके जान ले लेवे। तो हमने के आप विमला जी बतावा कि का बा इस सिंथेटिक ड्रग में कि सब कोई पागल की तरह कर पीछे भागत है बंजा।
1: हाँ तो किरण जी, जैसे अभी हमने सिंथेटिक के बारे में बात करा सही सा, तो सिंथेटिक एगो ऐसन लाद्रोग है जिसमें जो उसका इफेक्ट रहेला वो जल्दी होएला और उनको ज़्यादा इफेक्ट होला, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो सबसे सस्ता लाद्रोग है, इस जिकर मतलब है कि सब लोग ओके इजीली खरीद सकते सा, क्योंकि एगो डोज 100 रुपया में मिला था, तो इजी बा आसानी से लोग खरीद ले, जैन लोग के पास पैसा रहेला 100 रुपये में एगो डोज ले ले वा, तो ई एगो कारण है काहे के ज़्यादा करके सैंते चिकला लोग ले वा।
0: और यही वजह है कि देखते जा कि हमने के आगे जब ड्रग्स के बारे में बतियात रह लीजा, कोई तोहरा बोली कि ई व्यक्ति ड्रग्स लेवेला तो ओकर पर विश्वास करके थोड़ा मुश्किल होवे, लेकिन आज इस सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में बोले के नहीं चाहे ना, आपके खुद लग जाए। वो व्यक्ति चलते चलते सुते लगी, फिर अचानक देखबा फिर से उठ के चले लगल, तो देखत है जा कि कितना बहुत गलत बहुत कठिन स्थिति में चला रही जा। और जब इतना हाली से हमने के देश में ड्रग्स की जो समस्या बा ओकर नवा रूप ले ले बा और नवा नवा समस्या बहुत भारी संख्या में आवता, तो हमने के आप लोग के जो संघर्ष चलता हमेशा से चल ले आवता, तो ये जो सकब जा बोले 5 पिछला वर्ष बा सकब जा बोले कि यही अंतराल में इस सिंथेटिक ड्रग के बोलबाला जस्ती हो गए, तो आप लोग के मतलब कार्रवाई के दौरान कैसे अपन कार्रवाई जस्ती तेज करत हुआ जा, आप लोग के जो उपलब्धि बा कैसे सकत हुआ जा सफलता हासिल करे अपन कार्रवाई में, थोड़ा एक बारे में बोला।
2: हाँ बोलो लादोग सिंथेटिक जो बोला ला सीमिक, तो वो हमने के देश में ला पहला 2013 में अक्टूबर 2013 में अच्छा। पहला का मिला रहल, तो तब उतना ढेर नहीं रहा, अभी तो जैसे देखा तो बहुते ढेर बा, जहाँ देखब जैसे बोला तो चलते चलते आदमी सूच जाता, तो जाना कि जब सैंतिक लॉम्प्लॉयर हुआ था सवे जी ढेर का मिला था, तो हमने को अपन ओपेरेशन बढ़ाएला सा, हमने के रेंसेमेंट बढ़ाएला सा, हमने के रेजो जो रेंसेमेंट बा अरे हमने के फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर लोग बा जो काम करे ना सा तेरे में, और ढेर नागरिक ऐसा बा जो वो लोग खोजे था एगो कूद में दे के एगो सहायता करके ला पुलिस की, बस कि जब एगो जैसे बोले एगो कंता तो हर गोर में रही तो नहीं सब दूर ले चले चला कंता के निकाले के ना
0: जरूर,
2: तो हई खातिर ढेर अच्छा नागरिक लोग बा जो हमने भी आवेलन सा ओकर फासों बा करे के हमने के गाँव से मत देवेलन जा, ये हमने ओकर पर काम करके ढेर आगे ताशो करे तैसा सैंते छिकवो के कानाबिसवो के एरोइनवो के और एगो लाद्रोग जो बा सिकोथ्रोप सिकोथ्रोप कॉम्प्रिमे है जो बेचाला फार्मासी में सेलमा ओकरो ट्राफिक हुआ था, अभी दिन जो ढेर ट्राफिक सिकोथ्रोप हुआ था, तो सब जगह कानाबिस एरोइन सैंतेचिक और सिकोथ्रोप 5 साल से है ये जस्ती चला जाते।
0: अच्छा अब सबसे बड़ा सवाल ये बा कि जब हमने सब कोई दिखिला जाए एगो व्यक्ति जो ग्रस्त बा ड्रग से एक जगह पड़ गए बा ओकर हालत खराब बा, तो हमने जब दिखिला जा तो आम जनता या तो फिल्म में करके फेसबुक पर डाला था, दूसर कोई देख के वो लोग के दिल दहल जाता, लेकिन आप लोग जो लोग क्षेत्र में आप गार्दी के काम करता हुआ जाए, आप लोग जब ये देखेला जाता आप लोग के मतलब कैसे आप लोग के प्रतिक्रिया आवे लाइकर पर,
2: जैसे बोला तो जैसे देखते ही जान जाबा जे आगे जैसे बोला आगे गर्मी लादो तो देखबा तो नहीं जानबा अभी जैसे जैसे सैंतेचिक लेबा तो सा जैसे देखबा तो जान जाबा।
0: हाँ
2: तभी देखी ला सा ले लेबा सैंतेचिक तो एगो हाल में बा बेहाल हाल में बा जैसे सकेला बोले तो सब हम नहीं सकब सब कुछ करे ओकर खातिर सकब सको एगो थेटमा देवी जे देखब सको प्लस दौजे में बा तो सकब सा सर्विस मेडिकल के बिला ओबिस बा सामी के बिला

0: आवे हाय सका सक
1: विक्टिम हो
0: एगो विक्टिम हो गल बाती से म ओके एको लाल माने बाजे सकब सके से पा लेके जाय स ग्रुप से म प्रीमियर जाफे कर दिया सा एगो ट्रीटमेंट ओके सकब से एगो सामी के सकब सब रावे से पा एगो एम्बुलेंस के से पा सकब से त एगो ला पुलिस के वन मेडिकल के ले जाब स जितना हम सकब सा सहायता करे हमने करी ला
1: सर जरूर और मॉरिशस एगो छोटा टापू देश है आइलैंड नेशन है और यहाँ पर देखते हैं जाकि ड्रग्स बाहर से भी आवेला और ड्रग्स के समस्या हमने के एयरपोर्ट से हुआ पर सबसे बड़ा मतलब सुरक्षा एयरपोर्ट पर ही चाहिए कायम करेंगे तो एयरपोर्ट से शुरू हो इस समस्या पर आप लोग कैसे काम करे ला जा और नागरिक कितने को अब आजकल सफ़र करत हवन जा कैसे चाहिए आपके चौकन्ना रह के जब सफ़र करत हवा कहे कि नहीं सक बजाने कोई आपके सामने सफ़र करता वो ड्रग्स के कौन रूप में अपन संगे ले जाता तो एक बारे में मतलब कैसे आप लोग के कार्रवाई हो वेला
0: हाई बोला तोहरा कि एक गर्मी जब जाता विदेश देश विदेश उसका देश विदेश से आवाता तो के चाहना कोनो जना से कोनो चीज़ नहीं लेके हाई को कौन से ही देते हैं जा बस कि काहे बस कि जैसे बोलते हैं सैंथेटिक एगो एडमी सके एगो पापी में एगो मैगजीन में स्प्रे कर दे ला तो सैंथेटिक तू नहीं जानब बोली हमार फैमिली के है एगो ला एगो लिव लाफ्रिये है दे दे हमार फैमिली के जब जब मोगीस तू ले लेब बस एगो लिव लाफ्रिये
1: है
0: तो तू नहीं जानब में क्या बात है और लादोग सैंथेटिक दूसरा लादोगो अवता एगो फॉर्म लिखी दू में तू सोचब एगो विस्की है एगो पिए के चीज है तू आन देब का खातिन तो चला यही सब में सावधानी बरके के बस कि कोनो फॉर्म में लादोग आवेला हवे हमेशा जैसा सब बच्चा आए कम्युनिटी में सेंट सोशल में सेंट जेनेस में लेकुल में तब बोली ला जा कोनो चीज नहीं चाहला लेके अपन किन ला जाना तो अपन में कहा बा तो अपन वालिज में डाल के आओ
1: दूसर कोई से नहीं ला
0: दूसर कोई से नहीं रहा बस कि कोनो चीज एगो आदमी सकेला अब देखो तो एगो शोकोला जैसे एगो पार्किंग शोकोला बाटे शोकोला आदमी आज जाना था एगो शोकोला जनाओ के दिलक तो वो आना था मतलब हमारे चीज ऑफ लोग बात शोकोला बात दे दिया लोग के तो तू का कर बोले ले ले ला जानी ला लोके तो नहीं नहीं चला ले के बस कि एगो का होल बा ऐसे कि शोकोला नहीं रहल दूसर चीज रहल सब जला थोक रहल पार्किंग वहाँ शोकोला गई बा तो चला बहुत बहुत सावधान रह के
1: नहीं तो आप एगो ऐसा मुसीबत में पड़ जेबा जो जेकर से कोनो लेना देना नहीं रहा आपके
0: तो तुम्हारा डिफिसिल हो एक्सप्लिके करे के कैसे वो तुम्हारे संगे बा ए तू नहीं जानत हुआ का हो तब तुम्हारा बकू बकू बहुत समस्या हो यहाँ
2: और ये अच्छा बात जनता के जाने के लिए कि एयरपोर्ट और पोर्ट में भी हमनी जहाँ ऐसा हमनी बाजे ऐसा एचसी ऑफिसर्स एयरपोर्ट और पोर्ट में हम लोग कस्टम्स ऑफिसर्स के साथ में काम करी ला जा और अगर कोई सोचा था कि लादोग लेके आई तो 10 बार सोच लेने का हाँ। क्योंकि यहाँ जब उतरियन जा आवियों में से तो वो लोग के हमनी देखी ला जा हमनी वो लोग के प्रोफाइलिंग करी ला जा अगर कुछ हमनी के जैसे शक हो गए
1: थोड़ा सुन भी
2: यही खातिर देखवा जा कितने लोग बोले ला जा कि हाँ हम तो आवियों में से नहीं का जनी काहे के हमारा अमर वालिस खोल के चेक कर ओके ओके वो नाराज होला लेकिन हमनी के काम हाँ कंट्रोल करी ला जा अभी एक आवियों में 250 की 300 पास आजे बा उतनी डिफिकल्ट बात नहीं मुश्किल बा सबके चेक करे के लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन बा और अच्छा से प्रोफाइलिंग कर लिया जा तो हमने ओके चेक कर अब सा
1: और कोई के हाव भाव भी देख के आप लोग को पता चल जाए
2: वो प्रोफाइलिंग में वो पता चलता है कि ये इतनी दर दर के आवता काजनी कौन ची बा कौन ची होई के बाओ कर संगे तो ई भी हाँ प्रोफाइलिंग कर ला जाए
0: अभी हमें के एक्सपीरियंस जुन बा वो एक ग्रैंड रोल
1: जरूर
0: हाँ और मैं देख के हमने कभी कभी जान जाए ला सर
1: और अभी आप बोलत रहला ढेर कौं पाए करे रह जा और आज के ई कार्यक्रम भी सकब जा बोले कि जनता के जागरूक करे के जनता के ई सावधानी बरते के ई समस्या से एकरे पर आधारित बा तो हमें के थोड़ा अपन जन कार्रवाई करत हो जा कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन जागरूकता अभियान थोड़ा एकर बारे में बोला कहे कि जैसे बोलत है जा दिन ब दिन ई जोन स्थिति बा ई जोन ड्रग्स के रूप बा बदल दे जाता ओकर खतरा भी नवा नवा रूप ले होता अभी आप बोला मैगजीन में बोला स्प्रे करके ये सब जनता नहीं जानेला तो कैसे ई सेंसिटाइजेशन आप लोग करत हो जा और जनता के जो लोग के प्रतिक्रिया जो रेस्पॉन्स बा वो कैसे रहेला
0: तो बोलब जा कि आजसु के अपन एजुकेशन सेल बा जे जनता नहीं जानते तो बोलते है अभी आजसु के अपन एजुकेशन सेल बा ओकर में का कर रोज के रोज एक दिन नहीं बीतेला जे एगो लेकुल मैंने गई सा लेकुल प्रीमियर कोले

0: सेकेंडरी टर्शियरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी में यूथ सेंटर्स में सब जगह पर वर्क प्लेसेस में मैम सर्विस सिविल हो मिनिस्टर हो कि प्राइवेट प्लेस हो प्राइवेट वर्क प्लेस होते हैं जो कंपनी हो मंजा सब कोई हमके एविटी कर जा बस की श्योर टू हम एक लेकुल में है सर हाँ। लेकुल सिकोदे में बस की युवा लोग के चला समझाए कि
1: और समस्या हो जैसे
0: हो जैसे सूर्य हो ला तो लोग के समझावे ला जा जे ऐसे लाधोक रहे ला ऐसे कौन समय करे लन सर कौन कौन से कौन हो ला तो दे पर तोर स्वास्थ्य पर तोर ला फैमिली पर तोर एजुकेशन पर सोसाइटी पर कौन कौन ओके कॉन्सिक्वेंस तो वो लोग समझे ले जा और ये बोली ला सराफे में जे लालवा का बोले ला ढेर युवा लोग जो मर्जी मर्जी करे रन सा नहीं सोचे रन सा एक लालवा बा पीछे तो लोग के बोली ला जा लालवा वो बा हाई हाई चीज के लादो के ऐसा ऐसा लालवा बा जैसे ऐसा चीज कर बता तो ला प्रॉब्लम हो और ये बोली ला सा मोरालिटी एगो चीज अफेयर कर ला एगो केस लादो मिला निमन से पर तो अकादेमिक में अपनी सगरो बात मोरालिटी जब जयबल निकाले एक दिन जयबल यूनिवर्सिटी में जयबल दूसर काम खोजे विदेश में जयबल पढ़ रही तो चला गो मोरालिटी सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर तो ऊ में एगो लाखवा चला तो कौन काम के इतना पढ़ ला लिख ला एगो चीज बेचीज जैसे बोला जा खगोल में कर ला तो एगो लाखवा होगा तुहर मोरालिटी में तुहर काम मिले के तुहर एगो कू मिले के तुहर एगो प्रमोशन मिले के ओके एगो बहाज हो जाए जो आदमी के आप जैसे तो हर आपलिस बा सगरे रजता में खूब जरूरी बा आपलिस हुआ तो जो आदमी के बे बे से बा ओके कमा मिल जाए पास के ओकर सचिव का कहते हैं मोरालिटी हुआ
1: साफ बा
0: साफ बा तो ये समझाए ला सो ओके कि ऐसा इन काम नहीं करे कि सचिव का मोरालिटी और ओके खराब हो जाए
1: जरूर
0: हाँ।
1: और जब लड़का लोग की बात कर रहे थे जा तो जो माता पिता के अब लौकता कि कहूँ पर ड्रग्स के समस्या के खतरा बा या फिर पड़ोसी के हैसियत से आपके लौकता की एगो ड्रग्स के समस्या बा मतलब कि जो पहला जो अर्ली साइंस है पहला संकेत है जैसे आपके नज़र आवा था एगो माँ बाप के या फिर एगो पड़ोसी के एगो जानल व्यक्ति के तक कैसे सबसे सुरक्षित रूप में उलोक सकियन जा ये सब मामला के रिपोर्ट करे
0: हाँ देखा रिपोर्ट करे के बोले कि एगो चीज ला ड्रग के साफे में तो सुन सेंसिटिव है
1: जरूर
0: तो ढेर आदमी बोले ना नहीं हमके प्रॉब्लम हो
1: हाँ
0: तो अगर फासों बातें जैसे हमने के नंबर 248 वो एनोनिम है
1: हाँ
0: सकबा सुने करे जिन्हें नहीं मन करता था कोई सुने करे के तो एगो सकबा एगो लेट लिखे कमिश्नर पुलिस के ढेर आदमी ऐसे करे ला एगो लेट एनोनिम लिख देवे ला जो हियाँ हियाँ है लॉन्ड्रॉ में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बा लेट लिखे लोग डर लगा था बच्चा के टेलीफोन तो सो के टेलीफोन के निम्बो हुआ पागित हुआ था सब कुछ तो लोग सकें लेट लिख के विदा कर एक्सप्रेस तो मिल जाए लोग हमने भी ले तो आए तो हमने पर काम कर
1: जरूर
0: हाँ
1: तो जैसे आप लोग सुना था वजह देखा था वजह ये प्रोग्राम अभी चला था रेडियो मॉरिशस पर और हमने के फेसबुक पेज पर भी लाइव एकर प्रसारण हुआ था और साथ ही साथ एमबीसी टीवी के तीसरा चैनल पर भी ये कार्यक्रम के लाइव प्रसारण हुआ था और हमने आज बात कर रहे थे जहाँ ड्रग्स के समस्या पर कैसे इस समस्या से आजसू यूनिट निपटा था कैसे ड्रग्स की जो नवा नवा रूप बा ओकर खिलाफ जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन बा उ चला था और हमने के अभी और कुछ सवाल बा जेकर जवाब हमने के दोनों अफसर नूतन जी और विमला जी दियन थोड़ा घड़ी में फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

आज की चर्चा में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने आजसू अफसर लोग के साथ है जा नूतन जी हवन और विमला जी जे लोग पुलिस सर्जेंट हवन जा और हमने के सवाल के जवाब देवत हवन जा जो ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष से जुड़ल बा। और अभी आप लोग हमने के बोल जा कैसे सिंथेटिक ड्रग या कोई भी ड्रग रही बहुत ज़रूरी बाकी इस सब व्यक्ति के आप लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाए बचाओ लोग के इलाज चाहिए करे के त लाजसू कैसे ये सब व्यक्ति लोग के रिहैबिलिटेशन के ओर भेजे ला जा और फिर अभी बोल जा कि वो व्यक्ति खुद एगो विक्टिम हा। लेकिन जब आप लोग के ऐसा आदमी मिले ला जो लोग विक्टिम भी हवन जा वो लोग के साथ ड्रग्स भी बा त कैसे आप लोग खाली मतलब सजा देवे ला जा कि वो लोग के रिहैबिलिटेशन सेंटर की ओर भी भेजे ला जा मतलब थोड़ा एक बारे में समझावा जा कैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर

0: और सजा कैसे चलेगा ये दोनों?
1: हाँ तो जैसे हमने बोली सा हमने बहुत प्रेशर भी करना सा तो कि अगर एगो एगो आदमी के पकड़नी जा उकर संगे ड्रग्स मिलल कोई भी ड्रग्स मिलल तो नॉर्मल प्रोसीजर करी ला जा जैसे अपना इंक्वायरी शुरू करी ला सा फिर आवेला एगो मोमा जब एगो ऑप्शन दे मिला जा

0: हमनी वो चालू कर ले हंजा एगो अमेंडमेंट आलबा ए ओकर हमनी ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल सेटअप होलबा जहाँ के जैसे ई लोग जेकी कैन जैसे एतरेसे बा ट्रीटमेंट करे के तो अगर बोली हाँ हम ट्रीटमेंट करब हम के निकले के बा ई प्रॉब्लम में से तो हमनी ओके रिफर कर ली लाजा जो आप जैसे बोलिए ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के और ओके लाखू नहीं भेजी ला सा लामान ये सब पनिशमेंट नहीं दे सा तो वो बोले ला तो सब जो जरूरी पेपर्स है ये सब वो भेजी ला जा और ओके लोपिताल फिर बुलावे ला जा एगो सेंट एडिक्शन वा पांच गो लोपिताल में तो वो लोग के ओके कॉन्टेक्टे करियन जा लोपिताल में से तो कोई बोला जा ई दात के आवे के ट्रीटमेंट के लिए लेकिन दुख की बात ये बा हमने देख लिया ऐसा ऑब्जर्व कर लिया ऐसा कि बहुत लोग बोल के ये ऑप्शन मांग के कि रिहैबिलिटेशन में जाए लेकिन बाद में बहुत लोग नहीं जालन जा तो ये एगो प्रॉब्लम
1: से बच्चे खातिर बोल
0: हाँ बोल जा लेकिन फिर बाद में देखबा तो ये नहीं गलबा फिर वो दोषी वापस आवेला हमने के पास फिर हमने ओब्लीजे होके लाखों भेजब जा
1: और आप लोग के कार्रवाई दुगुना बढ़
2: जाए चीज जरूरत थी तो जैसे विमला जी बोलन ये है सब ट्रीटमेंट दिया ला जो आप सब चीज बा सिनेमा है सब जिस ड्रग यूजर्स ओके है जिन लाद्रोग के सेवन कर रहे हैं छोटा थोड़ी सुन लाद्रोग मिलल तब उन्हें सा है कौन समाशों के है तब है उपशोमा अप्लीके हुए ला
0: ट्रैफिकिंग
2: के नहीं ड्रग डीलिंग के नहीं और जिस सिकोट्रोप तलेवा बोले रही सिकोट्रोप जिन कॉम्प्रीमे बा ओहो के नहीं वो सेक्शन 21 है ओकर एप्लीकेशन नहीं बा
1: ओकर सजा
2: ओकर सजा डायरेक्ट बा है जो आप पढ़ने जाला ट्रीटमेंट पढ़ने जाला है ला लॉ में ऐसे है
1: अच्छा मतलब कि जो लोग खाली विक्टिम हो जा ड्रग्स के शिकार हो जा वो लोग के सामने ये ऑप्शन रहला रिहैबिलिटेशन सेंटर की सजा और अब जब ये लोग की बात करते हैं जा जे लोग एकर से ग्रस्त हो गल हवन जा इस समस्या में पड़ गल हवन जा देखत है जा फेसबुक पर जब ऐसा ऐसा व्यक्ति लोग के पोस्ट करेलन जा तो दूगो प्रतिक्रिया आवेला एगो ये लोग के बहुत भला बुरा बोलल जाला एगो दूसरा ग्रुप बा जो लोग बोले जा फिल्में करे के बजाय सकते जा वो लोग के मत रूप में मदद करे तो देखत है जा कि समाज में एगो हमेशा से रहल लेकिन आजकल जस्ती व्यक्ति एकर में पड़ता तो स्टिग्मा जोन बा एगो कलंक लग जाला इस अब व्यक्ति पर अब खाली वो व्यक्ति पर नहीं वो परिवार पर भी एक तो कलंक और फिर खतरा कि ऐसा परिवार से जे आप संबंध रखबा वो व्यक्ति से संबंध रखबा तो आपके वो आपके भी खतरा रही जे आना जाना रही तो ये जो स्टिग्मा बा जो मानसिकता बा सोचे के जो तरीका बा एक एक कैसे चाहिए बदले के एकर पर आप लोग काम करे रह जा
2: हाँ तो हमने बोली राजा जैसे वो एगो विक्टिम हो गल बा तो वही जाना था दिन में कितना दुख हुआ था ओके सकेला ओ कपान में सोचा था जैसे कैसे निकलब से मन ओके लापो सोच ही नहीं लौकता
1: जे निकले खोजन से तो उन लोग के बहुत परेशानी
2: हो गया बस की बार बार ओके मन करी कर वो लोग के कपार बोली निकले के दिलवा बोली नहीं लेके
1: और लोग के देह खूब मांगे ला
2: हाँ मांगे ला बस की वो लोग विक्टिम हो गल हवन जा हाँ अब नहीं सकत वन सौ कमे से निकले तो चाहे ना हमने के एगो सहायता करे के ना एगो ट्रीटमेंट देके ए गवर्नमेंट ढेर ट्रीटमेंट तो देते बा सैंक लोपिताल रीजनल में जोन बा एगो सौ बा एडिक्शन फैमिली लोग सकें जाए लोग के ले जाए हुआ एगो ट्रीटमेंट मिली लोग के का जानी निकल जाए ओकर में से तो अच्छा हुए बा
0: लेकिन इमें एगो चीज बा जो कि बड़ा वोलोंते
1: जरूर
0: ई वोलोंते रही तो सकबा उनमें से निकले अगर सिर्फ ट्रीटमेंट देव साफ तू वापस आके फिर से उसी में घुसबा तो फिर कोई फायदा नहीं
1: और देखा जाए कि हये हुआ था माँ बाप
0: फैमिली सपोर्ट भी चाहिए
1: जरूर
0: ऐसे नहीं कि जैसे दोला स्टिग्मा कर दिया ओके ओके आप रख दिया ऐसे नहीं ओके चाहे ना समेत के रखे के ओकर से बात करे के ओके इंटीग्रेट होने दे के सबके सामने ओके काट के ऐसे कोने में नहीं
1: देखा है ये होवेला कि अब एकर संगे नहीं सकबा परिवार के बीच जाए
0: डरे लन जा जो जो इंसान ड्रग लेवाता तो बोला ए pas fréquently hein du prend la drogue il chala ta aise ne hi wo ego victim ha bechara aise bol sakte hain tu wo jaise newton ji bol rahe kitna sangharsh chal raha hai nikalne ke liye lekin nahi ho raha hai nahi nikal sakta itna mushkil hai to isliye ego advice hum nahi dewab ja aaj jo officers ki kyunki hum log roz aisan logon se milte hain to hum ye bolab ki don't try first time bhi okay nahi liya ek baar le liya इट्स वेरी डिफिकल्ट.
1: सब कोई बोलेला कि एक बार ही पहला ही बार नहीं ला,
0: जो उससे अच्छा बा छुआ नहीं, नहीं छुई,
1: छुबे नहीं कर,
0: नहीं छुई.
1: और अभी बोलत रहला एगो बात बोलला जो हमार मन में सवाल उठता कि बोलला कि एगो मैगजीन में से केंजा स्प्रे करके तोहरा देवे, ऊ मैगजीन में अनब

0: तब वो कैसे काम करना, मतलब महक से और उस पर अंधे अंधे वो ऑब्सोलीट नहीं हो जाना, मतलब कि ओकर लिफे चल नहीं जाना कैसे, मतलब एकर जो लिफे हा कैसे पड़ेला।
1: लादरोग सिंथेटिक के बारे में बोला था हां,
0: तो
1: लादरोग सिंथेटिक ऐसे है एगो कागज हां इम्प्रिमे बा, इसमें लिखल बा, तू बोल बा एगो डॉक्यूमेंट है, एगो पापिर है, इसमें चिपे करके कुछ लिखल बा, लेकिन इस एके हम ओ लोग एबीबे करे लंजा ओके ट्रॉपे कर देवे लंजा लादो ए सॉल्यूशन में सिंथेटिक के, तो तू ऐसे आज तक तू नहीं देख बा, लेकिन हमने के एक्सपीरियंस ई बा की ओके छुबा अगर तो आंख में गल की तो जरे लगेला और उसमें एक स्मेल भी रहेगा।
0: आप लोग जान जाए,
1: हम नहीं जानी ला जा, लेकिन कोई आम इंसान ओके नहीं मालूम होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कितने फॉर्म में आते हैं, पेपर्स में आते हैं, बुक्स बना के भेजते हैं, पुस्तक ऐसे वो भी हमने के मिलल बा केस, तो ऐसे सब फॉर्म में वो लोग भेजा था वंजा। फिर ये कागज के एगो एगो पापी आका था ही ओके काट काट के स्ट्रिप्स बनावे लंजा पतला पतला, एगो छोटा सा स्ट्रिप्स बना के वही सिगारेट में डाल के फीमे करे लंजा,
0: असर पड़ जा रहा लोग पर।
1: हाँ तो असर हो गया,
0: तो काफी देखते जा एगो बहुत ज्वलंत समस्या बा हमनी के समाज में, ड्रग्स के रूप देखता हुआ कितना आसान हो गल बा, आपके हाथ में ड्रग्स रही और आप पहचान बिन कर बा कि आपके हाथ में ड्रग्स बा। और इ बखत जे हमनी के सुनत हवन जा रेडियो पर या फेसबुक पर या टीवी पर, जे लोग के मन में ई सवाल बा कि उ लोग चाहत हवन जा आप लोग तक कोनो इन्फॉर्मेशन देवे, अभी हम ही के बोला कि एगो निमिहो बासा कहाँ चुत, तो मतलब आप लोग की जो कार्रवाई बा, आप लोग के चाहे जनता के भी सहयोग
1: जी,
0: काहे कि जनता ही के एकर से समस्या होता परेशानी होता उ लोग ही विक्टिम भी बनत हवन जा, तो कैसे जनता के सम्मिलित करके आप लोग ये कार्य सक बजा करे और जनता कैसे सखी निडर होके आप लोग के सहयोग देवे।
1: जैसे बोला एगो निमेरो बा 148 बा और सब डिस्ट्रिक्ट में एगो आचू ऑफिस बा, तो सकियन जा जोन सबसे नज़दीक बा आवे के, अगर नहीं सकत हम सा आवे तो एगो 148 में टेलीफोने करके, या तो हमनी के रीजनल जोन हमनी के डिस्ट्रिक्ट में बीरो बा ओगर निमेरो लेके, तो हमनी सकब सा एनोनिमसली ये जो इन्फॉर्मेशन देवत हम सा ओकर उसके ऊपर हमनी काम करब जा, और हमने वो लोग के लाश्योरेंस देवा था जा कि कहीं पे भी वो लोग के नाम नहीं ले जा,
0: लोग के कोई समस्या नहीं
1: ये हमने के ड्यूटी है कि उनकर वो लोग के सुरक्षित रखे के, तो निडर होके हमने के बोला जा क्या कहाँ कुछ ही होता आपके नाम हमने नहीं ले जा
2: जरूर, जैसे बोली जा तो हम जैसे हमारे संगचा बोला था ये निडर होके चला कमा करेंगे, बस की सब कोई की सहायता चला है को बा को लादोग में
1: एगो संघर्ष है,
2: हाँ, एगो संघर्ष
1: समाज के साथ साथ हम लोग भी कर जाए जा, लेकिन हमनी के भी कितना करब अगर आई जा हमनी की ओर तो हमनी सकब सा मदद करे।
0: हाँ जरूर, और जब इतना अलग अलग प्रकार के ड्रग्स के बारे में जब बता थे जा, तो का ड्रग्स के जो रूप बा जैसे सिंथेटिक बोल कैनाबिस बोल अलग अलग हीरोइन ओकर अलग ड्रग्स के अलग सजा बा कि कोनो जस्ती कि ड्रग्स ड्रग्स है कोनो भी ड्रग्स आपके साथ मिलल तो वो ओकर एक ही सजा बा।
2: हाँ कोनो ड्रग्स जो मिलल तो चला ओकर क्वांटिटी देखेला, हाँ जिस जुजमेंट दे के आगे ओकर क्वांटिटी देखा वैल्यू ऑफ द ड्रग हाँ वो देखल जला तब सजा वहाँ मिलेगा, सब जो धर लो क्वांटिटी से जस्ती।
0: अच्छा
2: हाँ
1: लादरोग के लालवा में डेंजरस ड्रग्स एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बा,
0: जरूर
1: तो कंसुमाटर के लिए एगो सेक्शन बा, और जो डीलिंग कर रहा जो बेचा था जो पताजे कर रहा था वो लोग के लिए और एगो अलग सेक्शन के पुरसिव कर सा, जो जो कंसुमाटर बा वो लोग ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जयन जा, जो डीलर्स हैं ट्राफिकर्स हैं इंटरमीडिएट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी भेजी ला जा केस, डिपेंड्स कितना जैसे नूतन जी बोल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और वैल्यू ऑफ ड्रग्स।
2: और ये थी बात जो लिकुल में एगो लादरोग मिलल, जो यूनिवर्सिटी में लादरोग मिलल, जो लॉपिटल में लादरोग मिलल, जो आदमी एगो लड़का के दिलक लादरोग एगो लड़का हैंडीकैपे के एगो मिने के
1: ओ
2: बिया एगो नर्स एगो डॉक्टर एगो पुलिसिये जो गवर्नमेंट में काम कर रहा वो लोग संगे लादरोग मिलल तो वो अग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस बोलल जला तो ओको लामान दुगना हो जला, जे एगो नॉर्मल जगह मिलल बा हई सबके ऑंडे हो जे धर ल बोलक 10 बरिस के प्रिजों तो हुआ 20 बरिस हो जाए पुलिस वहाँ।
0: अच्छा
2: हर मिसाल अमन वहाँ दुबले हुए ला।
0: और अभी जैसे बोली जा आप लोग के जो

0: जागरूकता अभियान बा, आप लोग अलग अलग जगह पर करेला जा। आज के कार्यक्रम भी यही मकसद से, यही उद्देश्य से करल गए। हमने के पास कब्जा बोले और 3 मिनट बाकी बा। ये 3 मिनट में आप दोनों जना बारी बारी अपन संदेश सक बचा देवे जो आप जनता के देवे चाह था वजह।
1: तो हम बोला पहला चीज कि माँ बाप लोग के, पारों लोग के, जैसे बोली ला जा, अपन युवा लोग के चना निमन से देखे के, वो लोग के फ्रिकाउंटाशों देखे के, एगो लड़का नहीं आवा था आगे आवा था खाए लाता में संगे तो हर अब नहीं आवा था खाए, और बार आगे निमन से कहता हुआ था, निमन से खाजे हुआ था, अब नहीं नहीं करता। और कामगार जो लोग हर आगे जो फ्रिकाउंटे करता आगे वो समझे होगा अचानक तो चला सब देखे के पीती पीती चीज जो घर में बा अब सब पेजी हुआ था तो कि चला देखे कि तो काहे पेजी हुआ था, यहाँ इतना पैसा रखे को चिपो में सब माँ बाप एक पैसा रखे हाँ। हमेशा
0: खाली रहता
1: खाली रहता। तो अपन किसो चार पूछे काहे काहे लेकुआ हमी के संगे नहीं अबता खाए, काहे लेकुआ अपन कमा जो अक्ति रहल आगे नहीं फेंकौते करता, वो सब काहे होता चाहे ना देखे के काहे नहीं जाता अपन दे के कौट ले हाँ। काहे नहीं पढ़े को जाता जैसे आगे सब सगरो आल का रहते अब तक दिखा देगा सब चीज देखे के निमन से जे प्ली वित जैसे बोले जाता देख
0: जस्ती
1: जैसे हाली ओके देखे करब सर को चीज लेवे के शुरू कर लेबा उतने हाली थेतमा देव सर सब निकाल देव में से।
0: और विमला जी
2: हम नूतन ने जो कुंसुमातिया के बारे में जो युवा हन जा उसके बारे में बोलन, हम एगो मैसेज बोलती जो डीलिंग करत हन जा, तू भी सोच लिया कि तोहर भी परिवार बा, तू एगो ऐसा खराब चीज देवा था बेचा था पैसा खातिर, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तू कितना ये कितना हानिकारक चीज बा, कितने परिवार के बर्बाद करा था,
1: फैमिली उजारत हुआ
2: हाँ परिवार के उजारत हुआ, बच्चों को ये खराब चीज में डाला था। तनी सन बैठ के सोचिया कि तू क्या करा था, कि अच्छा करा था कि बुरा करा था, पैसा मिले के हाँ अच्छा बात है, दूसरा जरिया ढूंढा
0: ये तरीका नहीं,
2: ये तरीका नहीं है, तोहर लड़काई में पड़ी तो तोरा कैसे फील हो।
0: जरूर तो हमने के ये दोनों महिला अफसर के बहुत बहुत धन्यवाद। आज फजीर फजीर आप लोग अपन समय निकाल के काम के साथ साथ घर परिवार छोड़ के आप लोग अला जा और ये सब जानकारी देला जा। हमने के देश के जो ड्रग्स के समस्या बा ओकर खिलाफ संघर्ष कैसे चलता ये सब पर जानकारी देवे खातिर आप दोनों जना के बहुत बहुत धन्यवाद, और आप श्रोता और दर्शक लोग के भी बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुभ दिन।
3: आज

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेता अक्षरागस मुद्दे को लेकर अभी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने वाले विधेयक को फिलहाल अलग रखे जाने के बाद डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के लॉर्ड उबेयर ऑफ बालीहोल्म ने कल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी भी आगे की प्रक्रिया को रोकना है। उन्होंने इसमें तीन शर्तें रखी है, यानी तीन तरह की बाधाएं। उनका कहना है कि जब तक ये

0: शर्तें पूरी नहीं होती तब तक मुश्त सिन द्वीपों पर अपना अधिकार आधिकारिक रूप से लागू नहीं कर सकेगा। और ओलिविए बॉन्कल जिस समय लंदन में शागत शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद है, पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टीफन डाउटी, ब्रिटिश सांसदों, ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कॉर्बिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविए बॉन्कल ने मॉरिशस और यूके के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागत वासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया। कैबिनेट ने इबोला वायरस के अफ्रीकी प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी यात्रियों के लिए यात्रा से पहले स्वास्थ्य घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा और कोंगो, युगांडा तथा दक्षिण सूडान के से आने या होकर गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं मॉरिशस नागरिकों और वैध वीजा धारकों को 21 दिनों की क्वारंटीन शर्त पर प्रवेश की अनुमति होगी। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, जोखिम मूल्यांकन यानी रिस्क असेसमेंट और निगरानी को सख्त किया जाएगा ताकि कुछ मामलों में तुरंत आइसोलेशन लागू होगा। योंगबेल स्थित साज रिक्रिएशन सेंटर को क्वारंटीन केंद्र घोषित किया गया है और निगरानी प्रणाली तथा संक्रमण नियंत्रण उपायों को भी और मजबूत किया गया है। दो घरेलू विवाद 24 घंटे के भीतर दुखद घटनाओं में बदल गए। पहली घटना गुरुवार शाम काथोबोन में हुई जहां एक बहस ने जानलेवा रूप ले लिया। नीलम मुनिसामी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी पति अपने साथी फैब्रिनो कुपिडो की हत्या की। उनके अनुसार फैब्रिनो उन पर सिंथेटिक ड्रग्स लेने का आरोप लगा रहा था जिसे वो पूरी तरह गलत बताती है। दूसरी घटना कल सुबह लिसालिन में हुई। 29 वर्षीय प्रवेश चंग्या ने अपनी साथी स्नेहा जुटन पर चाकू से हमला कर दिया। पोटविस्वित की सीआईडी द्वारा पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसे अपनी साथी की बेवफाई का शक था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड नियमों पर अपने सख्त रुख में नरमी लाई है। सीईओ और उद्योगपतियों के दबाव के बाद प्रशासन ने वर्क वीजा पर असर न पड़ने का आश्वासन दिया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

इससे मालूम हुआ कि इंसान जब दीन की बात करे तो कुरान और हदीस का, शरीयत का इल्म हो तो बात करे, वरना बगैर इल्म के अगर वो बात करेगा तो गलत बात जबान से निकलने की सूरत में बर्बाद हो जाएगा। वयत्तबियु कुल्ल शैतान मरीद, और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं, हर सरकश शैतान की बातें मानते हैं। ये आयत नदर बिन हारिस काफिर के बारे में नाजिल हुई, जो बड़ा ही झगड़ालू था और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताता था और कुरान के मुतालिक कहता था कि ये पुराने जमाने के लोगों के किस्से हैं और मौत के बाद उठाए जाने का ये मुनकिर था। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु, जिस पर लिख दिया गया है कि जो शैतान से दोस्ती करेगा, फअन्नहु युदिल्लुहु, तो ये जरूर उसे गुमराह कर देगा, वयहदीही इला अजाब सईर, और इसे जहन्नम के अजाब की राह बताएगा। यानी ये बयान किया जा रहा है कि ये बात लोगों को बता दी गई और लोग जानते हैं कि शैतान की जो पैरवी करेगा शैतान उसे जहन्नम में ले जाएगा। शैतान के इत्तिबा से जजर फरमाने के बाद जो मुनकिरीने बास हैं, कयामत के दिन उठने का जो इनकार करते हैं, उन पर हुज्जत कायम फरमाई जा रही है। या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासी, अगर तुम्हें कयामत के दिन जीने में कुछ शक हो, कयामत के दिन दोबारा उठने के बारे में अगर तुम्हें शक हो, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, तो ये गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, यानी तुम्हारी नस्ल की असल, तुम्हारे जद्दे आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। सुम्मा मिन नुत्फा, फिर पानी की बूंद से, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को और सारी नस्ल को पानी की बूंद से पैदा किया। सुम्मा मिन अलाकतिन, फिर खून की फिटक से, कि वो नुत्फा गाढ़ा खून हो जाता है। सुम्मा मिन मुदगतिन मुखल्लकतिन व गैरी मुखल्लका, फिर गोश की बोटी से नक्शा बनी और बेबनी, यानी फिर वो खून से गोश की बोटी बनती है और फिर इसमें कुछ नक्शा बना होता है, कुछ नहीं बना होता, और फिर आहिस्ते आहिस्ते शक्ल पूरी होती है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का मादाए पैदाइश माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफा रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत खून बस्ता हो जाता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश की बोटी की तरह रहता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है जो इसका रिस्क, इसकी उम्र, इसके अमल, इसका बदबख्त होना या नेकबख्त होना लिखता है, फिर इसमें रूह फूंकता है। अल्लाह ताला इंसान की पैदाइश इस तरह फरमाता है और इसको एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल करता है। ये क्यों बयान फरमाया गया? लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियां जाहिर फरमाएं, और तुम अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत के कमाल को समझो और अपनी इब्तदाए पैदाइश के हालात पर नजर करके समझ लो कि जो कादिर बरहक बेजान मट्टी में इतने इनकलाब करके जानदार आदमी बना देता है, वो मरे हुए इंसान को जिंदा करे, तो इसकी कुदरत से क्या बईद है। وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، और हम ठहराए रखते हैं माओ के पेट में जिसे चाहें एक मुकर्रर मियाद तक।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। ला टूकेनिग, एवेन्यू दे ला टूकेनिग, एलमोन, फ्लॉक्स, मल्टीप्लियन, मिगेट्स, जास्मीन, बोहिनिया, एंड्रियानम, पोचुलाकास, जिनिया, मियोसोटिस, पेचुनिया, क्रोटन, हिबिस्कस, ग्लायल, इरिस और जेरानियम के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फोंडिसाक, रूज टेर, बाजार, बुआमोंग, मौसम और लंदन टावर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और घोंसा के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 8 जून को दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीएन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
3: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस बाला।

દુનિયાના રંગો એની નજરે બતાડે, બોલે મીઠું મત જેવું બધાને ફસા.

0: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Marches.
1: नमस्कार, इस समय दिन के 2:15 बजे है। हमारा आपका साथ है, हमारी आपकी मुलाकात है। हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं और हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी पसंद कार्यक्रम। बस मन में यही दुआ लेकर आए हैं कि आप खुश रहें, खुश होंगे, आप संतुष्ट होंगे। आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, स्मूथली गुजर रहा होगा आपका, और आप अपने कार्यों को अंजाम दे पा रहे होंगे। बस खुशी रहे आपके मन में, यही हमारी दुआ है, यही हमारी उम्मीद है। लेकर आए हैं आपकी पसंद कार्यक्रम, आप लोगों के लिए आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए।
2: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप हमें फ़ोन करेंगे 5250-8050 पर। तो हमारी आपकी ये मुलाकात हो रही है, और इस बार अगर आप फ़ोन करेंगे 4028085 पर, हम आपकी फरमाइशें लेंगे, आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचाएंगे, बल्कि आपके गीत, आपके चुने हुए गाने आप तक पहुँचाएंगे। जहाँ भी होंगे आप खुश रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और ये जो पहला गाना हमने चुना है, साजन मूवी से लिया गया, ये हम आप सबों के नाम करते हैं बड़े प्यार से, बहुत ही खुशी के साथ।

और चलिए 2:21 हुए हैं, हम पेश करते हैं कोरा कागज़ मूवी का गाना, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं सुनीता जी के लिए। कोरा कागज़ मूवी का ये गाना आप किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिएगा। इसकी फरमाइश सुनीता जी ने गांव गोप से की है, कुंगुमा की अपनी बहन विमाला के नाम।

और इस बार हम गायत्री जी की तरफ से पेश कर रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ का ये गाना, दुश्मन मूवी से लिया गया। उन्होंने ये गाना अपने बेटे अजय के साथ मिलकर अपनी बेटी रेखा की याद में मांगा है।

आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में इस बार हम आपको सुनवाएंगे जोहर महमूदीन गोवा का ये गाना, और इस गाने की फरमाइश वाकवा से की है शनाया और रेहांश ने।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे और जुल्फों वाली हसीना की ये चर्चा करते हैं। और ये गाना हमने लिया है दिलविल प्यार व्यार से, डोंट वरी। ये पुराना गाना है लेकिन नए अंदाज में है, अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज़ों का ये गाना है, सुदेवी जी की तरफ से, वाकवा की सुदेवी जी की तरफ से, उनकी दीदी ललिता जी के लिए और कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के विकास, अक्षय, स्नेहा, कृति, कृषिका, लक्षिका और राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार और कुवाहू परिवार के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

नमस्कार 41 मिनट हमारी आपकी मुलाकात आज के आपकी पसंद प्रोग्राम में हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं और साथ साथ चलते हुए हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए जिंदगी और मौत का गाना। ये है आशा भोसले की आवाज़ का गीत और इस गाने की फरमाइश करने वाली हैं मेधा जी फ्रॉम पॉम्पलेमूस। उन्होंने ये गाना दीदी कमला के लिए और भैया सुभाष के लिए मांगा है।

दिल लगाने वालों से पूछिए ये जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी से यूं बेरुखी न रखिएगा। इश्क करने वाले जिंदगी में बहुत कुछ पा जाते हैं, और वैसे भी जिंदगी बहुत हसीन होती है। जिंदगी से बेरुखी ना रखना ही बेहतर होता है कि जो कुछ नहीं मिला है उन चीज़ों को आप भूल जाइए, जो कुछ मिल रहा है उन पर गौर कीजिएगा, जो गौर कीजिएगा उन बातों पे जो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है जिंदगी में, तो उन बातों से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। बस कंसंट्रेट आप अच्छी बातों पे कीजिएगा, जो भी बुरा हो रहा है उसे बस जाने दीजिएगा। आपकी पसंद कार्यक्रम है ये, और पसंद इस बार हम पेश कर रहे हैं माला झरी जी की। माला झरी जी ने मांगा है फिल्म मेम साहब का ये गाना, और उन्होंने ये गीत हमारे सभी स्टाफ के लिए मांगा है। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ये गीत रीमा के लिए, बेटी रीमा के लिए, बेटे दीपक के लिए, पति ईश्वर के लिए मांगा है, और पूरे झरी परिवार के लिए जो प्यूचित के रहने वाले हैं।

0: 800 calories. This is Radio Mauritius.
1: आपकी पसंद पसंद आपकी होगी और इस प्रोग्राम में आप लोगों का साथ हम दे रहे हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम में इस बार हम आशुतोष जी की पसंद का गाना पेश कर रहे हैं और आशुतोष जी ने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मेला मूवी से लिया गया। उन्होंने पिचित्रिया से हमें कांटेक्ट किया है उनके पापा सुखदेव जी के लिए, उनकी मामा कुमारी जी के लिए और भाई आश्ले के लिए उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। बस इतनी तमन्ना की है कि उसके भाई आश्ले की जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा बहुत अच्छी जाए और सफल हो जाए, सफलता उनको हमेशा मिलती रहे, यह दुआ अपने भाई के लिए की है आशुतोष जी ने।

तो बस चलिए अभी हम एक गाना पेश करेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में, 9/2/11 मूवी से लिया गया। इस गाने की फरमाइश अमृता जी ने की है पिछित्र से, उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपने भाई आनंद के नाम की है। तो इस गाने के साथ ही हम थोड़ा सा रोकेंगे हमारे कार्यक्रम को, 3 बजे आप संक्षिप्त समाचार सुन पाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम को। और ऐसे में हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि आप हमें फ़ोन कीजिएगा 5251700 5 पर, परंतु आप ऐसा कीजिएगा संक्षिप्त समाचारों के बाद, हमारे फ़ोन में थोड़ी सी खराबी आ गई है इसलिए हम फ़ोन पर बातें आपसे करेंगे 5251700 5 पर। बस थोड़ी देर में आप फ़ोन कीजिएगा, फिलहाल तो ये गाना आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।

0: 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
1: सपहर के 3 बज रहे हैं। सुनते समाचार यात्रा जी के साथ नमस्कार।
2: सभी को नमस्कार। संक्षिप्त समाचार सुनिए। 24 घंटों के भीतर दो दंपतियों के बीच दो त्रासदियां। काथोबोन में नीलम निसामी ने यह स्वीकारा कि गुरुवार रात एक झगड़े के बाद उसने अपने साथी फैब्रिनो क्यूपिडों की हत्या की। उसका ये आरोप है कि मृतक ने उसे सिंथेटिक ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया था। कल सुबह लेसालिन में भावेश टेंगिया ने अपनी संगीनी स्नेहा जुतन पर कई बार चाकू से हमला किया। पोर्ट लुइस साउथ की सीआईडी द्वारा पूछताछ किए जाने पर 29 वर्षीय संदिग्ध ने बताया कि उसने अपनी हरकत की वजह बेवफाई बताई। शुक्रवार को कुछ ही घंटों के अंतराल में दो हत्याओं की घटना सामने आई। घरेलू हिंसा अब कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर चुप्पी साध ली जाए। यही संदेश आज मॉरिशस पुलिस फोर्स के मेट्रो साउथ डिवीजन द्वारा दिया गया। इस अवसर पर लाइन बराक्स पोटरी में लिंग आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश को झकझोर देने वाली इन दो दुखद घटनाओं के अगले ही दिन सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, विद्यार्थियों आदि ने एक साथ आकर ये संदेश दिया कि हिंसा के मामलों पर चुप्पी तोड़ना, खतरनाक परिस्थितियों की जानकारी देना, पीड़ितों का समर्थन करना तथा सम्मान, समानता और मानवीय गरिमा पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश समाचारों में ऑस्ट्रेलिया में शौक ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। वो 35 साल का था और डाइविंग करने निकला था। बताया जा रहा है कि ये शौक करीब 5 मीटर लंबा है। घायल व्यक्ति को नौका के जरिए तट पर ले जाया गया जहां उसकी मौत की पुष्टि की गई। एक महीने में ये इस समुद्री इलाके में हुआ दूसरा शौक हमला है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। बैठका रोड मोगू में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के श्री नंद कुमार मनरथ जो अनिरुद्ध के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके दामाद राजैन देवीदीन के मकान बैठका रोड मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
3: NBC Radio 24 hours a day.
4: इस समय 3:03 हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस और आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं वो विज्ञप्तियाँ जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से हासिल है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये सूचित करता है कि प्लान वेयर के रू कलकत्ता, रू मद्रास, रू सेरांग और रू महाराता में तथा ला रू मागों के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में कल रविवार 7 जून को सुबह 8:30 बजे से दिन के 1 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। प्लानवेद के ही निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रुकानल बॉटस्ट, रुगुन, रुकारिकाल और रु आसन उसेन में और आसपास के इलाकों में कल रविवार 7 जून को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। लातू केनिंग के निवासियों को सीबी सूचित

करता है कि एवेन्यू ला टोकेनिंग एनिमोन फ्लक्स मल्टीप्लियन म्यूगे जास्मिन बोहिमिया बोहिनिया ओड्रियानम पोचुलाकास जिन्यास मियोजोटिस पेचुनिया क्रोटन हिबिस्कस ग्लाएल इरिस और जेरानियम एवेन्यूज में कल रविवार 7 जून को ही सुबह 8:30 से दिन के 3:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। गौस साहब के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि सोमवार 8 जून को सुबह 9:00 से शाम के 4:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में काटी हुई बिजली की सप्लाई बिना पहले से सूचना दिए ही जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, इस समय 3:06 हुए हैं और हमने वादा जो किया था आपकी पसंद कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे हम संक्षिप्त समाचारों के बाद, तो चलिए अब बढ़ाते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम को। बस इतनी सी इल्तिजा है कि आप 4028085 पर फ़ोन ना करें, फ़ोन कीजिएगा हमें 5251705 पर। आप मैसेजेस भी इसी नंबर पर भेजिएगा और अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। बस नोट कीजिएगा 5251705, क्योंकि हमारी 4028085 में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए आप इस पर फ़िलहाल फ़ोन कीजिएगा जब तक कि यहाँ पर मरम्मत कार्य ना चल जाए। आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा हमको 5251705 पर और हमारे इस प्रोग्राम की शान बढ़ाइएगा। फ़िलहाल तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम मूवी का गाना। ये गाना आप मुकेश की आवाज़ में सुनिएगा, बहुत ही लाजवाब आवाज़ है मुकेश की। ये गाना आप सुनिएगा फ्रीकॉम फ्लैग की अनीता जी की पसंद पर, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके सभी फ्रेंड्स के लिए।
2: चंचल, चंचल।

अभी हमारी नज़र दौड़ रही है उस मैसेज पर जिसे भेजा है फ्रांस से मनीता जी ने। मनीता जी ने सचिता जी के साथ मिलकर अपनी फूफू कांति जी की याद में फिल्म तकदीर के गाने की फरमाइश की है। तो मनीता जी, ये गाना आपकी तरफ से।

और चलिए इस बार हम मन के तराने को सुनते हैं। ज़रा मन में जो तराने उठते हैं वो अपने आप उठते हैं, खुशियों की तमन्नाएं जहां पर अपना मूड बनाती है वहां पर दिल में तराने उठते हैं। तो मन जो गा रहा है वो तराना, उसे सुनिएगा आप सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में और मदालबिया की अनीता जी की पसंद पर। अनीता जी ने गाना करुणा, अमृता और पूरे परिवार के लिए मांगा है।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: रेडियो मर्शिस आप लोगों की सेवा में है, आपकी पसंद आप लोगों के लिए है। ये शो हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए 4 बजे तक। बस एक छोटी सी कठिनाई है कि हमारा जो फ़ोन है 4028085, उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप फ़ोन कर रहे हों तो आप इस नंबर पर मत फ़ोन कीजिएगा, यानी कि 4028085 पर मत फ़ोन कीजिएगा। फ़ोन कीजिएगा उसी नंबर पर जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। नंबर है 5251-7005। हाँ जी, 5251-7005, इसी पर फ़ोन कीजिएगा। हम फ़ोन और मैसेजेस दोनों एक ही नंबर पर ले रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए, आप ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है आप फ़ोन कर रहे हों, आपने हमारा मैसेज पहले नहीं सुना हो, पर इस बार आप ज़रूर रिटेन कीजिएगा। 5251-7005 हमारा वो नंबर है जिस पर हम फ़ोन कॉल्स भी ले रहे हैं। तो इस बार जो गाना हम आपको सुनवाएंगे वो होगा दीवाना मूवी से लिया गया, और हमें फ़ोन करके फरमाइश की है वाकवा के नंदलाल जी ने, और यही गाना हम वाकवा के नंदलाल जी के साथ साथ पेश कर रहे हैं शातो बिनाखस की हमारी श्रोता के लिए, शातो बिनाखस की ज्योति जी की तरफ से, रेखा, सुरेखा और पूरे मंथप फैमिली के लिए।

और चलिए इस बार हम लहू के दो रंग मूवी का वो गाना सुनवाते हैं जिसमें दिल चीर देने वाले अफसाने हैं, जिसमें दिल को बहुत ही घायल करता देने वाली सदाएं हैं। इन सदाओं को सुनकर दिल सच में रो उठता है। चलिए ज़रा सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, और ये आवाज़ें आप सुनिएगा अलिस कालिया के अली जी की फरमाइश पर। उन्होंने ये गाना मांगा है मिलगोज़ के रंजन बाजन जी के लिए।

चलिए उषा जी की पसंद का ये गाना हम शमशाद बेगम जी की आवाज़ में पेश करते हैं, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं उषा जी की तरफ से उनके भाई रवीन के लिए और भाई आश्विन के लिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आपकी पसंद,
2: चलिए इस बार पसंद हम शहनाज जी की पेश करते हैं। वाकवा की शहनाज जी ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनना चाहा है और उन्होंने सुनना चाहा है उम्मीद मूवी का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम में चलिए नसीब वाली बातें करते हैं। नसीब मूवी का ये गाना जो है, लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गीत, हम काथोबोन की मानती जी के नाम करते हैं। मानती जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपनी बेटी श्वेता के लिए और अपने बेटे निर्वेद के लिए, साथ में अपनी देवरानी आशिष्टा के लिए।

और चलिए, अजीब सी जो दास्तां होती है उस दास्तां पर हम ज़रा गौर करें। ये ऐसी दास्तां होती है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। ये ऐसी दास्तां होती है जिसे समझने में ज़माना लग जाता है। जी हाँ, इस अजीब दास्तां की दास्तां सुनते हैं हम दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में। लता मंगेशकर की आवाज़ है ये, और नॉथोदाम के प्रवेश जी ने इस गाने की फरमाइश अपनी पत्नी आशिता के लिए की है।

0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: इस समय 3:57 हुए हैं। कुछ विज्ञप्तियां सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौंसुना कौं दे मास पावे और पिचित काबान तथा यूनिटे के निवासियों को सूचित करता है कि रविवार कल रविवार 7 जून को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, फिर दोबारा दिन के 2 बजे से 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और कौंदेमास के निवासियों को सूचित करता है सीबी के सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक कल रविवार 7 जून को ही मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी बेलमो के निवासियों को सूचित करता है कि क्रीमेशन रोड और शुमै और आसपास की गलियों में तथा आसपास के इलाकों में कल रविवार 7 जून को सुबह के सवा आठ बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और फिर पॉइंट दिफ्लाग के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसिलमा गल्फ और आसपास के इलाकों में कल रविवार 7 जून को सुबह 8:15 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। बस यहीं पर हमारा आपकी पसंद कार्यक्रम भी समाप्त होता है। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक 4 बजे आप सुनिएगा आज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम डॉक्टर अलका धनपत जी से। हमारी आपकी अगली मुलाकात अगली बार होगी। तो हम सुरेखा कल सुबह 6 बजे आपसे मिलते हैं रेडियो मॉर्शस पर। तब तक के लिए शुभ शाम, नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, ठीक 4:51 हुए हैं। मेरे साथ तकनीकी सहायक कविश जुड़ गए हैं और आप सभी का हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ रेडियो मॉरिशस पर जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को सुनना पसंद करते हैं।
2: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण। प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
1: नमस्कार श्रोताओं, साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ मेरे तकनीकी सहायक कविश जुड़ चुके हैं और पूरे उत्साह में आपके फ़ोन कॉल्स वो लेंगे। और फ़ोन कॉल्स का नंबर तो आपको पता ही है, 4028085 पर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे कार्यक्रम होगा, क्या विषय होगा, बात तो तभी आगे बढ़ेगी ना। श्रोताओं, आज 6 जून है, 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। घबराइए नहीं, यह पर्यावरण इतना गहरा विषय है कि समुन्दर की गहराइयों में उतरना पड़ रहा है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। और श्रोताओं, मॉरिशस के लिए महासागर तो बड़ी प्यारी चीज़ है। आप थकान महसूस कर रहे हैं, समुद्र तट पर चले जाइए। आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, समुद्र की लहरों में जाकर थोड़ा खेलिए। आप बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, तो आप समुद्र तट पर जाइए। आपके बच्चे वहाँ कितनी आज़ादी से पानी में, रेत में, लहरों के साथ कितने खुश होकर खेलते हैं। और तो और, देश की पूरी इकोनॉमी का आधार पर्यटक, वे भी मॉरिशस के समुद्रों की, समुद्र तटों की सुंदरता के कारण ही यहाँ पर आते हैं और घंटों वे यहाँ पर सनबाथ करते हैं। मैं तो आपसे पूछती हूँ, हम मॉरिशस में से कितनी बार हम सनबाथ करने गए? लेकिन देखिए, जर्मनी से, इंग्लैंड से जो लोग आते हैं, रशिया से, वे लोग घंटों सनबाथ यहाँ पर लेते हैं। तो श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस कुछ तो है ना इस महासागर में, जिसकी गहराइयों को नापना आसान नहीं है, जिसकी लहरों को तोलना आसान नहीं है, जिसके पास बैठकर मन का समुंदर हिलोरे लेने लगता है और हर लहर के साथ मन के विचार भी आते जाते हैं और जब उठकर घर वापस आते हैं तो मन हल्का हो जाता है। मानो समुंदर की लहरें हमसे बातें करती हैं, कुछ कहती हैं। समुंदर का शोर हमारे भीतर के शोर को काटता है। तो श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस न केवल महासागर की विशेषताओं के कारण, वरन जीवन को जीवन देने वाला यह महासागर ही तो है। गर्मी पड़ती है, उन लहरों से ही वाष्प बनकर बादल बनते हैं और फिर हमें वर्षा मिलती है। इतना खारा पानी, कड़वा पानी, मीठा पानी बनकर हमारे सरोवरों में जमा होता है और हम उसका प्रयोग अपने जीवन के लिए करते हैं। तो श्रोताओं, जितनी नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से, सब इस महासागर में ही तो समाती हैं। तो चलिए एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।

श्रोताओं, इस संगीत को आप सुन रहे होंगे, खूब पहचान रहे होंगे। ओहरे ताल मिले सागर से, और ये सागर, नदियाँ कहाँ कहाँ किस किस से मिलती हैं, जीवन उससे जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस जो 8 जून को मनाया जाता है, 1992 में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि लगने लगा था कि मनुष्य की बड़ी बड़ी नौकाएं, उसके जहाज, पर्यटन, यह सब कुछ कहीं सागर को दूषित कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में जहाँ पर्यावरण की चर्चा होती थी, वहाँ पर अब जल प्रदूषण, महासागर प्रदूषण, इसको लेकर चर्चा होने लगी। पहले केवल जल प्रदूषण था, अरे मनुष्य तो और आगे बढ़ गया, महासागरों को भी उसने दूषित करना शुरू कर दिया। कहीं महासागर में पाए जाने वाले जीव प्लास्टिक के तार में फंसे हुए थे, तो कहीं उनके मुँह में प्लास्टिक था। श्रोताओं, इन सबसे बहुत चिंता होने लगी। तब 8 जून 2009 से लगातार आधिकारिक रूप से महासागर या विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है, और 8 जून इसके लिए निश्चित है। लेकिन श्रोताओं, महासागर को क्या हम जून के केवल एक दिन में बांध सकते हैं? उसकी स्वच्छता को लेकर, उसकी जीवंतता को लेकर अभी तो महासागर की कई गहराइयों को मनुष्य ने नापा भी नहीं है। कितने उसमें ज्वालामुखी हैं, कितने उसमें झरने हैं, कितनी उसमें खाइयां हैं, कितने उसमें पहाड़ हैं, अभी तो मनुष्य वहां तक उतर भी नहीं पाया है। उसकी अंधेरी गहराइयों में कितने प्रकार के जीव जंतु पलते हैं, लेकिन मनुष्य के लालच, उसकी सुविधा, उसका पर्यटन, उसके शौक, इस सब ने महासागरों को दूषित करना शुरू कर दिया है। घर से हम शुद्ध जल के पानी की बोतल लेकर जाते हैं, भारी बोतल है, लेकिन जैसे ही पानी खत्म होता है, हम उस खाली बोतल को अपने पास भी नहीं रख पाते हैं, और हम बिना सोचे समझे समुद्र की लहरों से खेलने के लिए वह पानी की बोतल समुद्र में फेंक देते हैं। हम नहीं समझते कि यह प्लास्टिक समुद्र को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। महासागरों की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तो देखिए, कहीं कहीं पर तेल का रिसाव हो जाता है, अब तो जीवों को बचाना ही मुश्किल हो जाता है। यदि महासागर के बीच में कहीं तेल का रिसाव हो गया, जहाज डूब जाते हैं, तो कितना नुकसान होता है। अब लोगों में जागरूकता लानी पड़ रही है। लोग सोचते हैं इतना बड़ा समुंदर है, थोड़े से कूड़े से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, बूंद बूंद से सागर बनता है। यदि बूंद बूंद कूड़ा भी 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग डालते हैं, तो समुद्र का प्रदूषण बढ़ने लगता है। फिर सागर के महत्व को अब समझाना चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी। इस सब के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। और सागर कितने लोगों की खाद्य की आवश्यकता को पूर्ति करता है। कोई क्राब खाता है, कोई मछली खाता है, कोई ऑक्टोपस खाता है, कितने जीवों का आयात निर्यात पूरी दुनिया में इस सागर के कारण ही हो पाता है। लेकिन जैसे आपको याद होगा, मॉरिशस में भी मछुआरों के लिए कुछ समय के लिए मछलियों को पकड़ना या निकालना बैन होता है, ताकि क्यों? क्योंकि उस समय मछलियां अंडे दे रही होती हैं, उनकी प्रजनन कार्य हो रहा होता है, तो अगर लगातार उनको निकालते जाएंगे तो मछलियों की कमी हो सकती है। तो ये खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, मतलब प्रकृति के चक्र को बनाए रखना। पहले क्या होता था, जो गांव समुद्र के

आसपास थे उन गांव के रहने वाले मछुआरे थोड़ा बहुत मछली निकाल लेते थे और आसपास के एक बाज़ार में बेचते थे। लेकिन आज क्या है, विश्व जो है औद्योगिकरण की ओर बढ़ चुका है, बाज़ारवाद की ओर बढ़ चुका है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो बल्क में मछलियों को निकालती हैं और फिर उनको संवार कर डब्बों में पैक करके दुनिया भर में उसका एक्सपोर्ट किया जाता है और कुछ लोग उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो छोटे स्तर पर आपने 10 मछलियाँ मार ली, 15 मार ली या 50 मार ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हज़ारों मछलियों को समुद्र से निकाला जाता है तो खाद्य सुरक्षा का भी संकट पैदा होने लगता है। फिर जैव विविधता, समुद्र का हृदय इतना बड़ा है कि उसके अंदर कितने तरह के जीव मिलते हैं हम सोच ही नहीं सकते। जब हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, समुद्र में ऐसा भी जीव है, समुद्र में सी हॉर्स भी है, समुद्र में सर्प मीन भी है, समुद्र में तरह तरह के कछुए भी हैं। बहुत ही हैरानी होती है, मछलियों का हज़ारों का झुंड है, पीली मछलियां हैं, नीली मछलियां हैं। तो श्रोताओं, जो जैव विविधता है, समुद्र के जो कोरल्स हैं उनमें हज़ारों तरह की मछलियां पलती हैं और कोरल्स भी जिंदा हैं, उनको भी जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण के संतुलन के लिए समुद्र की रक्षा, उसके जीवों की रक्षा बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ हम अपने समुद्र तटों से अपने निर्माण कार्य के लिए रेत निकालते जाते हैं और जब रेत ज़्यादा निकालते हैं तो समुद्र का तट दूर तक पानी आ जाता है, जिससे वह कभी कभी आसपास की बस्तियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बड़ी लहरें, सुनामी या पूरी की पूरी बस्ती को ख़त्म कर सकती हैं। तो श्रोताओं, पर्यावरण के संतुलन के लिए समुद्र की सफाई, समुद्र का ध्यान, समुद्र को एक संवेदनशील हृदय से देखना बड़ा ही आवश्यक है। चलिए एक गीत सुनाते हैं और फिर मैं और कविश आपके साथ आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि सागर हम सबका बड़ा ही प्रिय है। गंगा स्नान हो कि छुट्टी का दिन हो, कि कोई उपवास हो कि पूजा हो, कि थोड़ा आनंद करना हो,

0: कोई मेहमान विदेश से आ जाए तो सबसे पहले हम उसे सागर तट पर ही लेकर जाते हैं। समुद्र तट तो हमारे बहुत ही प्यारे हैं। यह चमकीली सफ़ेद रेत, नीला आसमान और हरे और नीले रंग का पानी, यह जो स्वच्छता और सौंदर्य है, यह तो मॉरिशस की विशेषता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर, और कविश आपके फ़ोन कॉल लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज विश्व महासागर दिवस की। तो हमारे साथ एक श्रोता जुड़ ही चुके हैं। हेलो।
1: हाँ बेटी।
0: नमस्ते नानी जी।
1: नमस्ते जी।
0: कैसे हो नानी जी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए।
1: हाँ, अच्छा आवाज आना।
0: जी जी बिल्कुल।
1: एक अथी है, शिव जी के भोजपुरी में बोला था।
0: अच्छा सुनाइए।
1: हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, मोर शिवा बाबा के सिरे गंगा जल, मोरे शिवा बाबा के सिरे चंद्रमा, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, मोर शिवा बाबा के गले सरपों की माला, मोरे शिवा बाबा के गले सरपों की माला, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, हमारे शिवा मोर शिवा बाबा के हाथ में दमरू, मोरे शिवा बाबा के बगले में झोरी, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, मोरे शिवा बाबा के देव में महादेव, मोरे शिवा बाबा देव में महादेव, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी, हमारे शिवा काहे तू भइले या नारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी, आप बहुत सुंदर लोकगीत हमें सुनाती हैं और एक बार फिर से जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करती हैं। बहुत धन्यवाद नानी जी। तो चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो।
2: हेलो अलका दीदी, प्रणाम।
0: प्रणाम, कैसी हैं बहन जी?
2: जी मैं अच्छी हूँ, मैं हूँ राधा।
0: राधा जी कुछ सुनाइए।
2: हाँ मैं सुनाऊंगी, मैं एक छोटा सा टुकड़ा सुनाऊंगी एक गाना का जिसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है।
0: वाह सुनाइए।
2: ये गाना बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जरूर सुनाइए।

0: है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार,
1: वाह राधा जी, बहुत
0: ये
1: सुंदर।
0: ऐसे चित्रकार ईश्वर को ही, हम ईश्वर जी, ईश्वर ही ने, वही वो चित्रकार है जिसने ये चित्रकारी की है।
1: हाँ, ये कौन चित्रकार है सचमुच।
0: इतना इतने सुंदर प्रकृति ईश्वर ने हमें दी है और उन्होंने ही हमें भी बनाया है दीदी।
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल,
0: हमको अपनी प्रकृति की कैसे उनकी रक्षा करनी चाहिए,
1: हाँ उसके बिना
0: उसको
1: हम
0: प्रदूषित
1: खत्म हो
0: नहीं करना
1: जाएंगे,
0: है।
1: खत्म हो
0: हाँ
1: जाएंगे बिल्कुल।
0: खत्म हो, कहीं कहीं जाते हैं तो इतनी सुंदर सुंदर घाटियां, वादियां, वो हरे भरे पेड़ दिखते हैं
1: बिल्कुल
0: कि मन खुश हो जाता है। शहर
1: जी
0: से भी
1: जी
0: ज्यादा मन वहाँ खुश हो जाता है क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: वहाँ शांति होती है ना, शांति, ठंडी हवा, शीतल हवा
1: बहुत
0: बहती है,
1: सुंदर,
0: मंद सुगंध पवन बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत
0: तो हमको
1: धन्यवाद
0: उसे
1: राधा जी।
0: बचाना है।
1: हाँ बहुत
0: हाँ
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद दीदी, और
1: बहुत
0: शुभ
1: सुंदर
0: संध्या
1: आपने गीत
0: आपको।
1: सुनाया, इसके लिए बहुत
0: जी
1: बहुत धन्यवाद। एक और
0: जी
1: श्रोता को लेते हैं। हेलो,
0: हेलो डॉक्टर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप तो हरे भरे खेतों के मालिक हैं, कहिए।
0: जी मैं धनी हूँ
1: जी,
0: जी। डॉक्टर जी, इस दुनिया को बनाने वाला
1: हाँ
0: हमें दिखाई नहीं देता है,
1: लेकिन महसूस होता है।
0: महसूस अवश्य होता है, क्योंकि अगर ईश्वर न होते तो हम जीवित न होते।
1: बिल्कुल, और कभी कभी उसकी

0: मदद का हाथ भी महसूस होता है।
1: जी जी अवश्य अवश्य, ये अवश्य।
0: संसार छोड़ सकता है लेकिन वह अपने व्यक्ति को साथ रखता है।
1: जी कुछ लोग सोचते होंगे कि ये समुद्र, हाँ, ये धरती।
0: जी
1: देखिए, धरती पर हमें जीवन मिलता है और समुद्र में भी अनगिनत अनगिनत मछलियाँ, न जाने कितने कितने प्रकार की मछलियाँ,
0: ढूंढना ही मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है।
1: एक जीवन है समुद्र में, हाँ, वो मेंढक जैसे चलता है,
0: हाँ,
1: वो उसे पेंगुइन कहते हैं।
0: जी
1: जी, तो ये देखिए कितने अनगिनत कभी कभी गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। कभी कभी कितने मछलियां मर जाती हैं।
0: जी बिल्कुल सही।
1: तो लोग जाकर तेल छिड़क देते हैं पानी में,
0: हाँ,
1: समुद्र के पानी में, फिर निकालना पड़ता है उस तेल।
0: जी जी बिल्कुल, झेला वाकाशियो का मॉरिशस ने, बहुत कठिन समय देखा सबने।
1: जी और पेट्रोल भी मिलता है ना,
0: हाँ, जहाजों से
1: पेट्रोल भी मिलता,
0: हाँ,
1: है समुद्र में।
0: बिल्कुल, और कभी कभी आग भी लग जाती है इन सब के कारण।
1: जी, तो यूनिवर्सिटी कितना रिसर्च कर रहा है।
0: जी बिल्कुल मरीन,
1: सभी आपने बोला कि कोरल, ये कोरल का सब जरूरी है,
0: हाँ,
1: समुद्र पानी में। तो भगवान ने इंसान को जीने के लिए,
0: भगवान ने तो संतुलित किया लेकिन हमारे लालच ने गड़बड़ कर दी।
1: जी तो यही है कि वो अनजान है, अपने मुंह में डाल देते हैं, अपने उसके शरीर में हो जाता है, वो खा लेते हैं,
0: हाँ,
1: तो वो मर जाते हैं।
0: सही,
1: अनजान है,
0: बहुत जरूरी है जागरूकता, बहुत जरूरी है।
1: कितने मछुए का जीवन चलता है,
0: जी,
1: मछलियाँ हम खाते हैं तो हमारा जीवन मिलता है।
0: वही बोल रही हूँ ना, पहले गांव के आसपास के मछुआरे थोड़ा कितनी मछलियाँ मार लेंगे, लेकिन अब जब फैक्ट्री लेवल पर काम होता है, इंडस्ट्री लेवल पर होता है, तब महासागर का बहुत नुकसान होता है।
1: डॉक्टर जी,
0: जी
1: ये मैं तो अनपढ़ हूँ, फिर भी आपसे, ये तूफान जो आता है,
0: हाँ,
1: कुछ देकर जाता है ना?
0: हाँ, जीवन का संदेश देकर जाता है।
1: जीवन का संदेश देकर,
0: हाँ,
1: जाता है और हमें फिर से जागने का अवसर मिलता,
0: हाँ,
1: है।
0: मिलता है, प्रकृति चेताती है, लेकिन हम अगर फिर भी ना जागे तो आप जगाए हुए को कौन जगाएगा?
1: जी
0: आप सोए आदमी को जगा सकते हो, उसके मुंह पर पानी डालो, उसे डांटो। अब एक आदमी जागा ही हुआ है, उसको कैसे जगाओगे आप? दिक्कत वहां आ रही है। सब कुछ समझते हुए भी हमारा लालच इतना हावी हुआ पड़ा है।
1: तो इंसान ऐसा है जो अपने अपने भला के लिए वो
0: स्वार्थ के लिए
1: देते हैं,
0: भाई साहब, स्वार्थ
1: के लिए, धरती पर चाहे, हाँ, समुद्र में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो सोचते हैं कि मेरा आसान हो गया,
0: हाँ, मेरा काम हो गया। बहुत धन्यवाद धनी जी, आपके इस भाव के लिए और चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो,
2: हेलो बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कहिए।
2: ढेर दिन के बाद आपको से बात हो रही है।
0: आप ढेर दिन के बाद बात कर रही हैं जी।
2: हाँ जी, हाँ, देखे ये हमारे पर्यावरण का
0: विषय है, बिल्कुल
2: है?
0: उसका एक भाग है,
2: हाँ,
0: बहुत जरूरी भाग है।
2: हाँ, इसका दिवस आदि सब हम मना रहे,
0: हाँ,
2: पहले तो कभी तो दिवस नहीं मनाए गए,
0: जरूरत ही नहीं थी,
2: नहीं थी, लेकिन अभी मना रहे हैं। क्यों? हमें चितने के लिए मना रहे,
0: हाँ,
2: हैं।
0: जरूरत से ज्यादा नुकसान, हाँ, हो रहा है।
2: हाँ, देखते हैं ना, तो हमारे जो आदत है, हमारे आदत को बदलना चाहिए।
0: हाँ, बहुत सुंदर बात कही आपने।
2: हाँ, क्योंकि हम एक कुछ भी खाते हैं,
0: वही फेंक कर आ जाते हैं,
2: फेंक देते हैं।
0: जी जी,
2: कुछ भी पीते हैं वही फेंक देते हैं,
0: बिल्कुल।
2: लेकिन ये आदत हमें बदलना चाहिए।
0: जब अपना एक छोटा कूड़ेदान साथ में रखो, जो,
2: हाँ,
0: कूड़ा है भर दो जहाँ कूड़ेदान दिखाई दे, या, हाँ, घर लाके अपने डस्टबिन में डाल दो।
2: हाँ, बोलते हैं प्लास्टिक का बोतल बने है रे, सब हो रही है, लेकिन जब हम नहीं इस्तेमाल करेंगे
0: तो अपने आप व्यापार बंद होगा, बिल्कुल,
2: तो बंद हो जाएगा। बटल तो पहले लोग, हमने छोटे में बड़े में कोई भी,
0: हाँ,
2: सब बटल इस्तेमाल
0: करते, बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन जब हम ये आदत बदल देंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कभी नहीं बनाएंगे।
0: हाँ, मतलब हमें बाजार को बदलना होगा,
2: हमें बदलना चाहिए,
0: बहुत सुंदर,
2: हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तब जाकर ये बंद होगा।

0: और हमारी एक बुरी आदत है, हम खा लेते पी लेते अपने घर साफ कर देते सब कुछ कर देते हैं, कहाँ पर फेंकते हैं जाकर समुद्र में,
1: बिल्कुल
0: फेंक देते हैं, हमारे काम हो गया। लेकिन हम नहीं देखते हैं कितने प्राणी वहाँ पर जी रहे हैं, हम उसे तकलीफ दे रहे हैं।
1: उनको तो क्या तकलीफ, बाद में हमको ही मिलने वाली है तकलीफ।
0: सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, सब जितना हमारे घर में सब चढ़ते हैं, मंदिर में चढ़ते हैं, सब कुछ बटोर कर
1: वहीं फेंक देते
0: हैं, भर कर समुद्र में बिक देते हैं। तो क्या है ये पूजा पाठ,
1: ढकोसला है फिर तो। अगर आपने देखो, समुद्र भगवान का रूप है।
0: हाँ, यही चीज हम बटोर कर
1: ठीक से प्लास्टिक में अपने कूड़ेदान में डालें,
0: कूड़ेदान में डालें या नहीं तो आपके प्लास जगह है वो मट्टी खोड़ कर,
1: हाँ, क्योंकि फूल फूल है, पत्ते हैं, ये सब खाद बन जाते हैं,
0: ये खाद बन जाते हैं। यही मेरे कहना।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी,
0: बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सभी को भगवान भला करे।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात आपने कही कि छोटा छोटा कूड़ा ही समुद्र को मैला कर रहा है। हमें देखना चाहिए इस तरह के कूड़े, या तो गड्ढा खोद के डाल दें, या किसी एक उसमें डालें, बॉक्स में डालें, या किसी बड़े ड्रम में डालें, ताकि वे खाद बन जाए और फिर पौधों को शक्ति दे सके। एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो।
2: हाँ बहन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
2: गंगा मैया को प्रणाम।
1: हाँ, गंगा मैया ना हो तो बड़ी मैया कहाँ से मिले।
2: हाँ बहन जी, तो हर एक देश की शोभा और उसकी पहचान उनकी प्राकृतिक दृश्यों से होता है।
1: बिल्कुल बहन जी, इसी को देखने तो टूरिस्ट जाते हैं।
2: हाँ हाँ,
1: आज क्यों हम कहते हैं स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, यही प्राकृतिक छटा है वहाँ पर ना।
2: हाँ हाँ हाँ बहन जी, दूर से मैंने देखा है, एरोप्लेन में से मैंने देखा है।
1: नो, मैं तो गई हूँ, बहुत सुंदर देश है, बहुत ही हरियाली और साफ सुथरा, सबसे बड़ी बात साफ सुथरा देश है बहुत।
2: जी, तो कैसे कहते हैं बहन जी, जो कैसे कहते हैं
1: सागर, समुद्र देव का,
2: हाँ, सागर की जो लहरें हैं ना बहन जी, वो तो हमें मोह कर रख देता है ना।
1: बिल्कुल, मैंने कहा ना, उसके तट पर बैठ जाइए, सारा डिप्रेशन बह जाता है।
2: हाँ हाँ, तो जब हमारे पूर्वज आए थे ना बहन जी, तब तो हवाई जहाज नहीं था, है, तो इसी सागर के लहरों में लोग नाव खींचते
1: हुए महीने का सफर,
2: हाँ, मारीच देश में आए थे ना
1: जी,
2: मारीच देश का दर्शन किया था ना।
1: हाँ बिल्कुल,
2: तो यही तो एक सवारी थी, नाव थी, और ये समुद्र था ना,
1: और यहाँ भी आकर फिर क्वारंटाइन में उनको रखा जाता था।
2: हाँ,
1: आसान नहीं था उनके लिए, बहुत कठिन यात्रा
2: वो
1: थी।
2: जो जहाँ पर वो क्वारंटाइन है ना बहन जी, हमारे घर के आसपास है।
1: अच्छा।
2: वो दिखता है थोड़ी दूर में, लीज प्लाट जिसे कहते हैं, लीज प्लाट।
1: अच्छा।
2: तो हमारे घर के आस ही पास है, दिखता है, हम जब समुद्र तट जाते हैं ना बहन जी, तो सब हम देखते हैं। तो महासागर की लहरों को देख देख कर कवि अपनी कविताओं की रचनाएं करती है बहन।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: लेखक अपने लेख लिखते हैं। हाँ, तो सागर की लहरों को देखकर मन मस्तिष्क का खुश हो जाता है बहन जी।
1: बिल्कुल सही।
2: हाँ, जितना भी निहारो उतना हमारे लिए कम पड़ जाता है, लहरों से लहरों का टकराना।
1: इसीलिए आप देखिए, 10 बार समुद्र तट जाओ फिर भी मन नहीं भरता है।
2: नहीं, कभी नहीं भरता है।
1: फिर आप अगले सप्ताह फिर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। बस मौसम
2: अगर
1: अच्छा
2: बैठेंगे ना बहन जी, मेरी कहानी है इस पर।
1: अच्छा?
2: पहली कहानी मैंने लिखी थी।
1: कौन सी कहानी का शीर्षक क्या है?
2: भूल तो गए बहन जी।
1: अच्छा,
2: वो
1: चलो कोई बात नहीं,
2: लेकिन
1: आपने लिखी, यही बड़ी बात है।
2: तो हम कैसे कहेंगे बहन जी कि उनका जीवन तो पानी है, जीव जंतु का जीवन तो पानी है ना, जीव जंतु वहाँ पर
1: घर है, वो
2: उनका घर है वो। हमारा टापू तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है बहन जी,
1: इसीलिए
2: तो पानी,
1: इसीलिए पोल्यूशन कम है ना, हवाएं चलती ही रहती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं है, बहुत गाड़ियाँ हैं।
2: हम तो पानी के पिंजरे में रहते हैं बहन जी। हाँ बहन, जिस दिन ये पानी का पिंजरा टूट जाएगा बहन जी, पता नहीं क्या
1: जल प्लावन हो जाएगा।
2: पता नहीं। तो समुद्र तट का नजारा बहन जी, फिर बालू के घर उंदे बनाना और तोड़ना, सीप खोदना, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होती थी।
1: बचपन है ये, बचपन।
2: समुद्र के किनारे झावे के पेड़ है बहन जी,
1: जी।
2: हाँ, समुद्र तट की शोभा बढ़ाता है, होटल है, पर्यटक लोग आते हैं।

0: इसी महासागर के दर्शन के लिए हमारे देश में आते हैं ना बहन जी, कहाँ मिलेगा उन्हें? वो तो देखो पैसे फेंक कर आते हैं यहाँ पर।
1: और मैं तो एक बात कहती हूँ, वे लोग पैसे फेंक कर आते हैं सन बाथ के लिए, मॉरिशस के सूरज के में बैठकर सूर्य स्नान करते हैं। लेकिन मैं तो मॉरिशन लोगों से कई बार पूछती हूँ, क्या हमने कभी सन बाथ किया? हम लोग कितने लकी हैं कि हम तो सड़क पर चल रहे हैं तो भी हमें सूरज की किरणें मिल जाती हैं। लेकिन वे लोग विदेश से आते हैं क्योंकि 6 महीने वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो वे यहाँ पर आकर सूर्य स्नान करते हैं।
0: तो हम बहुत सौभाग्यशाली है बहन जी कि हमारे देश में छोटे छोटे टापुओं, हमारा देश ना छोटे छोटे टापुओं से घिरा हुआ है बहन जी।
1: और भी कई टापू हमारे हैं
0: हमारे देश के इर्द गिर्द, और हमारे देश का नाम चारों तरफ चर्चित है बहन जी। कहीं भी जाए तो लोग पूछते हैं कि वो जैद मॉरिशियन, यू आर मॉरिशियन, ऐसे पूछते हैं बहन जी। कहीं भी जाइए तो जैसे कि हमारे माथे पर लिखा हुआ है
1: सम्मान की तरह से, हाँ बिल्कुल,
0: हमारे लिए बहुत गर्व की बात है बहन जी कि हम मॉरिशियन।
1: जी जी, बहुत धन्यवाद बहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: आपको भी धन्यवाद,
1: और गीत सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, हाँ बसंती जी सुनाइए कुछ
2: जी। सागर, गंगा माँ, हम माँ गंगा को माँ बोलते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमें जल जीवन देती है। जब आपके जल नहीं है तो मृत्यु,
1: जीवन ही खत्म हो जाएगा,
2: जीवन खत्म हो जाती है। तो मैं एक दो लाइन गाकर आपको सुनाऊंगी।
1: सुनाइए
2: जी। सागर से भी गहरा बंदे सतगुरु देव का प्यार है, देख लगा कर डोटा इसमें तेरा बेड़ा पार है। भव सागर में इन दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, हर तरफ अंधकार है। सागर से भी गहरा बंदे सतगुरु देव का प्यारा है, सागर से भी गहरा बंदे सतगुरु देव का प्यारा है।
1: बहुत सुंदर बसंती जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुंदर गीत के लिए। हेलो, एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
3: शुभ नमस्कार अलका बहन।
1: नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आज हमारे साथ
3: आपके साथ
1: कविश जुड़े,
3: कविश जी को भी सादर से प्रेम नमस्कार है।
1: हमारे नवीन भाई हमारे टेक्नीशियंस को भूलते नहीं है।
3: नहीं, सबके सबके सहयोग से ये काम चलता है।
1: हाँ, सचमुच सच,
3: और सहयोग में योग है।
1: हाँ, सहयोग में योग है, बिल्कुल।
3: हाँ, अगर सहयोग को योग नहीं कहे।
1: बहुत सुंदर
3: बहन जी, मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा क्योंकि मेरी छोटी भाभी आ रही है।
1: अच्छा।
3: और भाई, तो अच्छी बात है मुझे।
1: तो आज घर पर पार्टी है।
3: बहन जी, मैं हमेशा पूजा को प्रश्न भेजता रहता हूँ।
1: अच्छा।
3: गरम गरम पकौड़ा के लिए।
1: हाँ।
3: तो गत सप्ताह मैंने पूछा था किसको पानी की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा।
3: तो श्रोतागण बड़ी कठिनाई से
1: उत्तर दे पाए।
3: हाँ, दे पाए, न जाने कौन, मैं भूल गया।
1: अच्छा।
3: तो समुद्र कहा।
1: हाँ, बिल्कुल,
3: उनको तो पानी की जरूरत नहीं क्योंकि वही तो जल
1: भंडार है, बिल्कुल
3: भंडार है,
1: वही जल का
3: पानी
1: भंडार
3: है। लेकिन नदियां क्या करती हैं, दौड़े दौड़े उनको मीठा पानी पिलाते हैं। वो चाहते हैं कि समुद्र को मीठा करे, तो ये असंभव है। समुद्र तो ज्यादा है, नदियों तो
1: चाहे खारा है, लेकिन जब बादल बनकर बरसता है तो मीठा पानी देता है,
3: मीठा पानी देता है। और एक बात आपसे कहूँ कि ये पानी, ये समुद्र में जो मछलियां हैं, सब मानव ने खा लिया, इंसान ने खा लिया।
1: इंसान की भूख खत्म ही नहीं हो रही है,
3: खत्म नहीं हो रही है और संतुलित नहीं बन रहे हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, ये लोग जब मछुए लोग जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं मछली की जगह में हमको जूते मिलेंगे समुद्र में, प्लास्टिक
1: अरे
3: मिलेंगे।
1: बाप रे बाप। अच्छा।
3: मच्छी अब नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लोग जब चलाते हैं वो जो मच्छी पकड़ने वाला जो यंत्र
1: जाल
3: है,
1: जो डालते हैं,
3: जो जाल डालते हैं, तो उनमें कभी कभी जूते मिल जाते
1: हैं। हाँ, क्योंकि लोग अपना कूड़ा फेंकते ही रहते हैं वहाँ पर,
3: फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: तो ये बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि समुन्द्र जो है साफ रहे, क्योंकि समुन्द्र का पानी ये जब आदमी के

0: घाव नहीं अच्छे होते हैं, वो लोग
1: हाँ
0: समुद्र में स्नान करते हैं तो एक दवा बन जाता है और सचमुच ठीक हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा
0: जब हम बचपन में, मुझे याद है, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को माता पिता वो ले जाते थे समुद्र में
1: अच्छा
0: स्नान कर,
1: अच्छा
0: सचमुच ठीक हो जाता है।
1: हाँ, और मैंने
0: तो
1: सुना है
0: मुझे
1: कि समुद्र तट पर यदि लंबी लंबी सांसें ली जाएं तो वह जो उसका नमकीन पानी की हवा है वो आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है,
0: बहुत अच्छा। हाँ,
1: खास करके टीबी के मरीज के लिए तो बहुत बढ़िया होती है।
0: बहुत अच्छी बात,
1: जी
0: बहुत अच्छी दवा है। धन्यवाद बहन जी,
1: बहुत धन्यवाद नवीन
0: कहूंगा,
1: भाई।
0: शुभ नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: शुभ
1: अपने
0: संध्या।
1: मेहमानों का स्वागत कीजिए और आज की
0: धन्यवाद।
1: पार्टी को बढ़िया कीजिए।
0: नहीं,
1: बहुत बहुत
0: पार्टी नहीं, वो
1: धन्यवाद।
0: लोग हमको देखने आए
1: हाँ,
0: क्योंकि धर्म पत्नी उनका
1: उतना
0: स्वास्थ्य ठीक
1: विश्वस्त
0: है।
1: नहीं है। चलिए कोई
0: कभी
1: बात
0: फोन
1: नहीं।
0: करूंगा आपको। धन्यवाद
1: हाँ,
0: बहन जी,
1: ओके जी, शुभ
0: शुभ
1: संध्या
0: संध्या,
1: आपको, शुभ
0: नमस्कार।
1: संध्या। नमस्कार जी। तो चलिए श्रोताओं, एक गीत सुनते हैं और फिर आपके साथ जुड़ते हैं।

श्रोताओं, सागर जीवन है। वास्तव में हमारे जीवन का आधार है। भोजन, ऑक्सीजन और हमारी जलवायु, इन सबको संतुलन देता है सागर। और ये जो सागर दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है कि हम सब मिलकर अपने सागरों को स्वच्छ रखें। और देखिए, अध्यात्म के दृष्टि से भी सागर का बड़ा महत्व है। स्वच्छ सागर रहेंगे तो जीवन हमारा स्वस्थ रहेगा। और भारतीय दर्शन में तो सागर को परमात्मा

0: आत्मा का रूप कहा गया है, और हम आत्मा मानो जल की एक बूंद हैं जो अंततः उसमें समाने के लिए तरसते हैं और बूंद से सागर हो जाएंगे, अर्थात आत्मा परमात्मा में समा जाती है। गुरु को ज्ञान का सागर कहा जाता है, मतलब जिसमें जैसे सब नदियां समाती हैं वैसे ही गुरु के ज्ञान में सब शास्त्र समाये होते हैं। तो जिसे जीवन में सच्चा गुरु मिल गया, समझो ज्ञान का सागर उसे मिल गया। फिर सागर को ब्रह्म की उपाधि भी दी गई है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की तुलना सागर से की गई है। फिर देखिए हमारे पौराणिक संदर्भों में समुद्र मंथन की कहानी आती है, जिसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें से अमृत भी निकला और विष पिया शिव ने, अर्थात जो शिव तत्व होते हैं वो समाज से विश्व को लेते हैं और समाज को अमृत देना पसंद करते हैं, चंद्रमा का उनके साथ संबंध है। तो शिव जब विनाश भी करते हैं तो प्रलयंकारी रूप, वह भी सागर का ही एक प्रलयंकारी रूप है। विष्णु के रूप में देखिए क्षीर सागर पर विष्णु शयन करते हैं और वहाँ लक्ष्मी उनके चरण दाबती हैं, और शेष नाग मतलब सर्प भी क्षीर सागर पर विष्णु भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात पूरी प्रकृति को हमारा जो पौराणिक संदर्भ है वो बटोर कर चलता है, अर्थात पूरा सम्मान उसको देता है। और फिर नदियाँ जो बार बार समुद्र से जाकर मिलती हैं, अभी नवीन भाई से यही बात हम कर रहे थे कि नदियाँ मीठा पानी लाती हैं लेकिन समुद्र में जाती हैं तो वे भी खारी हो जाती हैं, पर वही खारा समुद्र वही नमकीन पानी फिर से जब भाप बनकर बादल बनता है और नदियों में गिरता है, सरोवरों में गिरता है पानी, तो वह मीठा हो जाता है। हम मॉरिशस में इन्हीं सरोवरों का ही पानी पीते हैं, तो देखिए उस पानी में हमारा जीवन बसता है, इसीलिए सागर को स्वच्छता प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एक श्रोता को लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार।
1: जल्दी जल्दी मैं अब क्या बोलूँ, सोचती हूँ जितना कुछ जो कुछ मैंने कहने को सोचा था तो सारा सार आपने बोल दिया।
0: नहीं नहीं, आपके पास और विचार बहुत होंगे, आप शुरू तो करिए।
1: लेकिन जल्दी जल्दी में एक दो बातें, मैं
0: कोई बात नहीं, शुरू करिए, आपके देखिए विचार आएंगे।
1: हाँ, पौराणिक दृष्टि से जैसे आपने कहा,
0: जी जी जी,
1: सब तो मैं भी बोलने वाली थी।
0: नहीं, और भी बहुत कुछ है।
1: सागर का बहुत बड़ा महत्व है कि वो तो हमारे भगवान विष्णु का ससुराल है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जैसे कि अभी वो 14 रत्नों की आपने बातें,
0: हाँ हाँ,
1: प्रकृति भी उससे जुड़ी हुई है।
0: जी जी,
1: प्रकृति से जुड़े हुए हैं,
0: मतलब सागर रत्नों का सागर है।
1: जी जी जी जी, खान है वो तो।
0: हाँ, इसीलिए जलधि उसको कहते हैं।
1: हम हिंदू जब समुद्र जाते हैं तो हम प्रणाम करते हैं।
0: हाँ सच में, जल को छू कर
1: तो फिर सागर में जो हमारे विष्णु जी लेटे हुए हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और बहुत आदर देती हूँ। तो जिस जगह को हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं,
0: उसे गंदा कैसे कर सकते हैं,
1: करेंगे ना।
0: और सही बात है,
1: प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें जो जल है, जल तो हमारा जीवन है।
0: बिल्कुल, और जैसे मंदिर को साफ रखते हैं ऐसे ही सागर को भी साफ रखना जरूरी है।
1: इससे प्रकृति भी, अगर प्रकृति के साथ हमेशा सामंजस्य बना कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनका प्रकोप होगा तो फिर तो हमारी खैर नहीं।
0: सुनामी का प्रकोप झेल चुके हैं हम लोग।
1: प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए भर तक उसे साफ सुथरा, इसीलिए तो देखिए अभी लोग देश, हमारे देश के मेरे टापू की भी बात है, सच में हमारा टापू तो संसार में
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है,
1: और हमें सच में हमें बहुत गर्व है इस देश में, हमारा जन्म इस टापू में हमारा।
0: जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल अपनी मिट्टी पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल,
1: तो ऐसा यही मैं कहना चाहती हूँ कि काफी कुछ आपने कह दिया, जो जो मैंने सोचा था दिमाग में कहने के लिए, तो आपने सागर का जो विस्तृत वर्णन आपने किया, तो मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ।
0: बहुत धन्यवाद जी,
1: अवगत भी हूँ
0: जी।
1: सागर का नाम सागर है तो सच में वो सागर ही है, उसके तो था हम नहीं पा सकते।
0: असीम असीम
1: असीम है, असीम, उसका न आर न पार है, क्योंकि हम तो जो है चारों तरफ तो उसी से हमारा सौभाग्य घिरे हुए हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जो है
0: उसकी वजह से प्रदूषण कम होता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि देखिए मॉरिशस में भी रोज सुबह 600,000 गाड़ियां सड़क पर उतरती हैं, तो प्रदूषण कैसे नहीं होगा छोटे से टापू पर। लेकिन इधर से हवा आती है, उधर को निकल जाती है, और महासागर इतना बड़ा है कि मॉरिशस को स्वच्छ हवा मिल जाती
1: है। वो सब जो पोल्यूशन है वो सब अपने में समा,

0: निकल जाता है सब
1: और हम सुरक्षित रहते हैं। इससे हमारे देश में भी जो बड़ी बड़ी वो जो होती प्रकोप होता
0: हाँ,
1: नहीं है,
0: थोड़ा बचाव हो जाता है,
1: हमें झेलना नहीं पड़ता
0: जी,
1: है
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, हम इससे सुरक्षित रह ये सब भगवान का बहुत बड़ा वरदान है।
0: सही कह रही है।
1: तो प्रकृति का सम्मान करें, उसकी रक्षा करें जहाँ तक हो सके, पेड़ पौधों की, क्योंकि हम सभी जो है उन्हीं के आश्रित है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत धन्यवाद।
1: प्रकृति तो माँ दुर्गा का साक्षात रूप ही है।
0: जी जी,
1: एक तरह से अगर हम उनको ऐसा करते हैं तो उन्हीं को दुखी करते हैं और उनका दंड तो हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसकी सुरक्षा का के लिए कदम उठाना चाहिए।
0: बहुत धन्यवाद बीना जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि जीवन में जब पूजा कर रहे हैं जल की और सागर को भगवान मान रहे हैं तो गंदा क्यों करना। बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या आपको।
0: आपको भी। और श्रोताओं, हमारे साथ काशीनाथ हैं जो सचमुच मॉरिशस के लेखक भी हैं, कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं। सोमदत्त काशीनाथ की चार पंक्तियाँ बड़ी प्यारी हैं। वे लिखते हैं, जितना इस संसार से लिया है उससे ज़्यादा पीछे छोड़ जाना है, चाहे यहाँ मान्यता मिले या ना मिले, बस हमें अपना कर्म करते जाना है। बहुत सुंदर चार पंक्तियाँ उन्होंने लिखी प्रकृति को लेकर। श्रोताओं, इस प्रकृति को हम क्या देकर जाएंगे यह सोचना चाहिए। प्रकृति ने हमें जल दिया, हवा दिया, जीने का मिट्टी दी जिसमें हम सारी उपज, जिसमें सारी हमारी सब्जियाँ फल उगते हैं, इतना कुछ दिया है कि हम क्या चुकाएँगे। एक छोटी सी कलम कोई देता है तो हम थैंक यू करते हैं, कोई हमें एक छोटी सी बोंबो, एक छोटा सा पीस केक, हम उसका मेस्सी करते हैं। प्रकृति का कब मेस्सी करेंगे, क्या उसको गंदा करेंगे? यदि हम मेस्सी करते हैं, थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ हैं, तो उसे गंदा हमें नहीं करना चाहिए। अब सागर तट पर गंगा स्नान के लिए पूजा करने जाते हैं तो अपने सारे फूल नारियल सब वहीं छोड़ देते हैं। अजी, पूजा का सामान है, पैरों के लिए क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? आपने पूजा की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने सामान को वापस लेकर आइए। जो फूल पत्ते हैं उनको ज़मीन के गड्ढे में डालिए ताकि खाद बन जाए। नारियल है, सबको प्रसाद के रूप में बांटिए, बच्चों को विटामिन मिलेगा अगर वे नारियल खाएंगे तो। आपने देखा है ना, केरल के लोगों के बाल कितने घने होते हैं, क्योंकि उनके भोजन में नारियल बहुत अधिक होता है। सब्जी में नारियल, चटनी में नारियल, नारियल का दूध, नारियल वे लोग कच्चा खाते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल के हर रूप को वे लोग इस्तेमाल करते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो आप देखिए वहाँ के लोगों के बाल कितने घने होते हैं। मॉरिशस में नारियल तो है, पूजा हम करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। या तो चीनी डालकर मिठाई बनाते हैं या फिर पूजा के लिए। तो बेहतर है अपने बच्चों को खूब खिलाएं नारियल, पूजा के लिए भी इस्तेमाल करें। क्यों पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं नारियल? क्योंकि नारियल एक ऐसा फल है जिसे कोई कीड़ा वगैरह चोट नहीं पहुंचा पाता, तो वह एक पवित्र फल है, इसलिए उसे हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नारियल का पानी तो आप सबको पता ही है, मुर्दे में भी जान पैदा कर देता है, क्योंकि उसमें बहुत विटामिन होते हैं। तो श्रोताओं, अच्छी चीज़ें प्रकृति ने हमको दी हैं। और नारियल के पेड़ कहाँ होते हैं? जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए समुद्र हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ देता है। इसीलिए शारदा प्रसाद, जो भारत की कवित्री हैं, लिखती हैं, यह जीवन रंगों का मेला, बड़ा अनुपम है इसके रूप, कभी दुखों का अंधेरा है, कभी खुशियों की उजली धूप, मिले एक बार ही जीवन, नहीं इसको गंवाना है, जलाकर धैर्य का दीपक पथ अपना सजाना है। तो ये धैर्य का दीपक क्या है भला? ये धैर्य का दीपक है प्रकृति के सभी उपादानों को अच्छे से रखना। एक फेडरिको गार्सिया हैं, विदेशी लेखक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, प्यास से मरती एक नदी। आप देखिए, नदी प्यास के कारण मर रही है। और उस बुक में उन्होंने एक कविता लिखी है, समुद्र पानी का एक गीत उन्होंने लिखा, दूर मुस्कुराता है समुद्र, झाग के दांत ओंठ आसमान के, क्या बेचती हो तुम ओ गमजदा लड़की, समुद्रों का पानी महोदय अपने रक्त में प्रवाहित, कहाँ से आते हैं ये नमकीन आंसू माँ, समुद्रों का पानी रोता है महोदय, दिल और ये गहरी कड़वाहट कहाँ से उपजी है आज।

बहुत कड़वा हो गया है समुद्रों का पानी, कोई नहीं उसकी कहानी का सम्मानी। अर्थात आज हम उसे मान नहीं दे रहे। पर्यटन के लिए हम जाते हैं समुद्र में, लेकिन अपना कूड़ा, प्लास्टिक, कागज़ सब उसमें फेंक देते हैं। हमें लगता है लहरों में कितना मज़ा आ रहा है कि हमारी खाली बोतल कैसे तैर रही है, लेकिन हम नहीं जानते हमारा प्लास्टिक, हमारे टूटे हुए जाल समुद्री जीवों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी

पड़ रहा है, कोरल्स को बचाना पड़ रहा है, मछलियों के लिए, कछुओं के लिए, ऐसे जीवों के लिए जो जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, जिनके समाप्त हो जाने का खतरा है, उन सबको बचाने के लिए आज सागर दिवस 6 जून को मनाना पड़ रहा है। और श्रोताओं, सागर ने हमारे कवियों को, लेखकों को बहुत प्रेरणा दी। बीना जी ने अभी यही कहा कि कवियों का प्रेरणा स्रोत बनी ये लहरें। प्रसाद जी का आकाशदीप कहानी पढ़िए, आकाशदीप की जो चंपा है वह समुद्र के किनारे आकाशदीप लगाती है ताकि कोई भी भूला भटका नाविक समुद्र तट को खोज सके, जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं, उसे संस्कृत में आकाशदीप कहते हैं। आजकल तो लाइट हाउस होते हैं, लेकिन पुराने समय में लाइट हाउस नहीं थे। महिलाएं एक डंडे पर ऊंचे एक दीप जला के रखा करती थी लालटेन की तरह, ताकि दूर कोई भटका ऐसा नाविक या कोई यात्री जो समुद्र की लहरों में है, उसे पता चले कि यहाँ कोई गांव आसपास है। इसी तरह से निर्मल वर्मा ने एक कहानी लिखी है, बाज और सांप, उसमें भी उन्होंने खुलेपन का, आकाश के आनंद की बात की है। और आप प्रवासी साहित्य में तो अभिमन्यु अनंत को नहीं भुला सकते, धुरंधर जी को नहीं भुला सकते। अभिमन्यु अनंत का हम प्रवासी, लहरों की बेटी, लाल पसीना, समुद्र की दुख सुख की गाथा कहते हैं। और पथरीला सोना में धुरंधर जी ने 8 खंडों में जो वर्णन किया, उसमें भी मॉरिशस के समुद्र की चर्चा की है। तो श्रोताओं, अपने समुद्रों को 7 समंदर पार की यात्रा हम करते थे, लेकिन आज यह यात्रा पर्यटन और मजाक बन गई है। जिनके पास पैसा है, साधन है, वे शिप पर जाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन कूड़ा उनका समुद्र में जाता है। कितनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स दिखाती हैं कि समुद्री जीव कितने परेशान हो रहे हैं। सागर बहुत विशाल है, गहरा और नीला है, उसमें मछलियां हैं, उसमें वेल हैं, सीप में मोती छिपे हुए हैं, तारे से चमकते हैं, सागर से बादल बनते हैं, धरती को फसलें मिलती हैं, सागर ऑक्सीजन देता है, मानो सागर धरती का फेफड़ा है। क्योंकि अगर हमने सागर को नहीं समझा, 70% ऑक्सीजन हमको सागर से ही मिलती है, जिसका हमें सम्मान करना होगा। कितना व्यापार होता है, लेकिन इस व्यापार के बावजूद भी हम अपना गंद, तेल, केमिकल्स सागर में छोड़ते हैं। सीप, कछुआ, स्टारफिश, कितने दोस्त हैं इसमें, नदियां जाके मिलती हैं, कितनी अनमोल धरोहर है, लेकिन हम अपना कचरा और प्लास्टिक और धागे फेंककर सागर को गंदा करते रहते हैं। जितना स्वस्थ रहेगा सागर, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। सागर बचेगा तो जीवन बचेगा। प्लास्टिक सागर में डालेंगे तो सागर का सम्मान घटेगा। एक एक बूंद कीमती है। सागर इंसानियत को जिंदा करता है। ब्लू इकोनॉमी ब्लू ओशन के कारण ही जिंदा है। यदि हमने लालच किया और समुद्र का शोषण किया, तो यह हमारे भी विनाश का कारण बनेगा। 70% ऑक्सीजन हमें सागर से मिलती है, यही है समुद्र मंथन का सबसे बड़ा अमृत। अगर ओशन नहीं रहे तो हम नहीं बच सकेंगे। बहुत ज़रूरी है कि जो हमें जीवन देता है, उसके जीवन को हम बनाए रखें। सांस लो, ये ऑक्सीजन सागर से आई है, सागर को बचाओ। सागर दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। नीली लहरें हों, साफ किनारे हों, प्लास्टिक ना हो वहाँ पर। सागर जीवन देता है, हम उसे कचरा ना दें। लहरों की आवाज़ तो सुनिए, वो कहती हैं मुझे बचाओ, सागर दिवस है, दृढ़ संकल्प लो ताकि आप मुझे बचाकर आप अपने जीवन को बचा सको। यदि अपने जीवन को नहीं बचाया तो सागर नहीं बचेंगे, और सागर को नहीं बचाया तो जीवन नहीं बचेगा। श्रोताओं, सागर को बचाना अति आवश्यक है। चलिए, इसी के साथ मुझे और कविश को अनुमति दीजिए, आप सभी को 6 जून सागर दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय सागर दिवस बन गया है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सब संकल्प लें कि हम ज़रूर समुद्र तट पर जाएंगे, उसकी लहरों से बातें करेंगे, लेकिन उसके घर में अपना कूड़ा नहीं छोड़कर आएंगे। हम मेहमान बन के वहाँ जाते हैं तो बाइज्जत जाना चाहिए, और सागर को पूरी इज्जत देनी चाहिए। जो हमारा कूड़ा है, उसे घर वापस लाके यथास्थान यथा योग्य रखना चाहिए।

0: साहित्य दर्पण जिज्ञासु लोगों के दिलों की धड़कन शाम के ठीक 5 बजे हैं।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी
0: नमस्कार और आदाब देवी और सज्जनों, AM2 रेडियो मॉरिशस पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, शनिवार की है मनभावन शाम, ऊपर से ये प्रोग्राम बस करना है आप ही लोगों के नाम। इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। रोशन आपका सेवक यहाँ पर उपस्थित है और प्रोग्राम के दौरान होता है एक दिलचस्प प्रश्न उत्तर का खेल और सही उत्तर देकर आप बनते हैं खिलाड़ी, इसीलिए तो कहते हैं खेल खिलाड़ी। 2 भागों में विभाजित हुआ है ये प्रोग्राम। 5:30 तक पहला भाग सिनेमा दिल से और दूसरे भाग में 6 बजे तक मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर होंगे प्रश्न वर्ल्ड कप पर, फुटबॉल, स्पोर्ट्स एवं जनरल नॉलेज पर। तो आशा करते हैं कि अंत तक आप लोग साथ जरूर देंगे हमारा, क्यों नहीं, हम जानते हैं कि आप लोग अवश्य हमारा साथ देते रहते हैं।
3: 819 kilohertz

तो पहला भाग सिनेमा दिल से और आज का जो विषय है फिल्मी हस्ती फुटबॉल के मस्ती। जी हाँ, फिल्मी हस्ती फुटबॉल की मस्ती। हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कितनी फिल्में हैं जिनमें अभिनेता अभिनेत्री फुटबॉल की शौकीन है। दोस्तों के साथ ये फिल्मी हस्ती करते हैं खूब फुटबॉल में मस्ती। ये विषय रखा है हमने क्योंकि इसी महीने में वर्ल्ड कप 2026 की महाप्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो चलिए पहला गाना आपके लिए इस सेगमेंट में हम चलाते हैं और इस सेगमेंट को हम आरंभ तो करते हैं मशाल फिल्म के गाने से, जहां पर चार मवाली यार गाते हैं फुटबॉल खेलते हुए। जी हाँ, गाना तो चल पड़ा है। इन यारों में से एक अनिल कपूर जी हैं और दूसरा बैटमैन ऑफ इंडियन सिनेमा गुलशन ग्रोवर भी है। तो आपको हमें बताना पड़ेगा अच्छी तरह से सुनकर, इस गाने में चार गायक कलाकार हैं। इनमें से केवल दो गायकों के नाम आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। 402-808-5 पर मशाल का ये गाना सुनिए गौर से और हमें बताइए इसमें चार गायक कलाकार ने आवाज दी है। केवल दो गायक कलाकारों का नाम बता देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। 402-808-5।

फुटपाथों के हम रहने वाले मशाल फिल्म में ये गाना अनिल कपूर, गुलशन ग्रोवर और दो साथी मिलजुल कर फुटबॉल खेलकर ये गाना गाते हैं मस्ती में। और हमने सवाल किया था कि कौन से चार गायक कलाकार ने ये गाना गाया है, केवल दो जवाब आपको देने थे। सही जवाब है शैलेंद्र सिंह साहब,

0: सुरेश भातकर जी, हरिहरन जी और अनूप जलोता जी। जी हाँ, एक रेयर सॉन्ग है और ये जो कॉम्बिनेशन है वेरी रेयर इंडीड। सही जवाब अली साहब फ्रॉम लिस्कालिये, विजय भाई फ्रॉम क्लबेट सेवास्तोपोल, ओकुले से अमृता जी, सूर्यवी जी फ्रॉम मोका और स्वस्ति जी फ्रॉम कटबोन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिल्मी हस्ती और फुटबॉल की मस्ती। चलिए अगला गाना भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, धन धना धन गोल। अरे यार, फुटबॉल तो है अनमोल। धन धना धन गोल फिल्म का नाम है और इसी फिल्म में मुख्य पात्र में सनी एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो इंग्लैंड में खेलता है, जिस टीम में शान अली खान कप्तान है और कोच टोनी सिंह है। जी हाँ, उस टीम में सनी एक फुटबॉल खिलाड़ी है, उस टीम का कप्तान जो है वो शान अली खान है और जो कोच है वो है टोनी सिंह। अच्छा, आप ज़रा खोज के बताइए प्लीज़ कि कौन से दो अभिनेताओं ने फुटबॉल खिलाड़ी सनी और शान अली खान की भूमिका निभाई थी। बड़ा आसान सा प्रश्न, हम आपको बता देते हैं कि कोच इस फिल्म में थे टोनी सिंह और कोई नहीं बल्कि बोमन ईरानी ही ने टोनी सिंह की भूमिका निभाई थी। तो सनी की भूमिका किसने निभाई और शान अली खान की भूमिका किसने निभाई थी, जरा आप सोच के हमें बताइए। 402-8085
1: This is Radio Mauritius.

0: दलेर मेहंदी की आवाज में हल्ला बोल धन धना धन गोल फिल्म का नाम है। इस फिल्म में दो खिलाड़ी हैं, फिल्म में दो खिलाड़ी हैं और टीम में जो कैप्टेन है उसका नाम शान अली खान है और शान अली खान का किरदार निभाया था अरशाद वर्सी ने। और उसमें जो मुख्य रोल में जो एक्टर थे, जो अभिनेता थे, वो सनी के रोल में भूमिका निभाई थी जॉन अब्राहम। तो जॉन अब्राहम और अरशाद वर्सी ही सही जवाब है। और बहुत से लोगों को पता नहीं चला, थोड़ा कठिन था, लेकिन दो नौजवानों को ये पहले से ही पता था। फ्लिकॉम्पो से ट्रिशा जी ने पहली बार के लिए फोन करके सही जवाब दिया और फ्लिकॉम्फ्लक्स से केविन ने भी सही जवाब दिया। चलिए इस फुटबॉल की मस्ती को हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मैदान फिल्म जो 2024 में रिलीज हुई थी, उसमें अजय देवगन मुख्य पात्र में नजर आते हैं और वो जो पात्र वो निभाते हैं वो है अब्दुल सैयद रहीम। वो इंडियन नेशनल टीम का कोच है इस फिल्म में, जो 1962 के एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाता है। जी हाँ, फुटबॉल का कोच होकर इस फिल्म में वो भारत को स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल दिलाता है 1962 के एशियन गेम्स के दौरान। ये तो बहुत ही, ये एक रियलिटी फिल्म है। बताइए किस देश के विरुद्ध फाइनल में भारत की जीत होती है इस फिल्म में। वैसे तो ये रियल में भी ऐसा ही हुआ था। सोच के हमें बताइए कि कौन सा देश, ये तो एशिया का देश ही होगा क्योंकि एशियन गेम्स है 1962 में, भारत के विरुद्ध कौन सी टीम फाइनल में आई थी और भारत जीत कर गोल्ड मेडल प्राप्त करता है और अजय देवगन उस टीम को गोल्ड मेडल दिलाता है। 4028585 और आपके लिए मैदान फिल्म का ये गाना।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: ए आर रहमान और अभयंकर की आवाजों में फिल्म मैदान का ये बहुत ही प्रेरणादायक गाना। इस फिल्म मैदान में अजय देवगन कोच का रोल निभाता है और टीम इंडिया को स्वर्ण पदक दिलाता है। फाइनल में किस टीम को हराता है 1962 के एशियन गेम्स में, और वो है एशियन गेम्स में हराता है जिस टीम को, वो है साउथ कोरिया। और फर्स्ट राउंड में साउथ कोरिया से हार पाती है ये टीम, अंत में फाइनल में इसी टीम को हराती है टीम इंडिया। और एक ही श्रोता ने सही सही जवाब दिया और वो है लिस्ट का लिए की इंद्राणी जी। चलिए थोड़ी देर में हम आपके लिए लाएंगे दूसरा सेगमेंट जिसमें आप लोग बिल्कुल दिलचस्पी रखते हैं, जनरल नॉलेज फुटबॉल वर्ल्ड कप पर हम प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। और स्पोर्ट्स के दौरान जिंदगी में भी किस्मत की जो बाजी होती है, कभी साथ देती है तो कभी बाजी पलटती भी है।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: घड़ी मिलाते चलिए शाम के 5:27।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

0: जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, संगीत प्रेमी और खेलकूद लवर्स, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम का दूसरा भाग मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर सवाल के रूप में फुटबॉल, वर्ल्ड कप और जनरल नॉलेज पर प्रश्न होंगे और सही जवाब देकर आप लोग बनेंगे पक्का खिलाड़ी। तो चलिए हम आरंभ करते हैं बिल्कुल फुटबॉल के साथ। हम तो जून महीने में हैं और सभी फुटबॉल टूर्नामेंट्स यूरोप में समाप्त हो गए, चाहे वो चैंपियनशिप्स हो, चाहे चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग या नेशनल कप्स जैसे इंग्लैंड में होता है एफए कप या कराबाओ कप, स्पेन में कुप दे रॉय यानी किंग्स कप यानी कोपा डेल रे। एफए कप और कराबाओ कप का विजेता तो मैनचेस्टर सिटी हुई और कुप दे रॉय यानी कोपा डेल रे स्पेन में उसका विजेता है रियल सोसिएडाद, जिन्होंने एटलेटिको माड्रिड को हराया फाइनल में। चलिए एक रिकैप करते हैं आप लोगों के लिए यूरोप के सबसे मजबूत चैंपियनशिप्स की। इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो चैंपियंस था वो आर्सेनल टीम और रनर अप मैनचेस्टर सिटी, टॉप स्कोरर अर्लिंग हालैंड। और स्पेन में लालीगा में स्पेन का जो चैंपियंस थे वो बार्सिलोना और रनर अप रियल मैड्रिड और टॉप स्कोरर किलियान एम्बापे। फ्रांस में लीग में पीएसजे और पेरिस सेंट जर्मेन जो है एक बार फिर चैंपियंस घोषित हुए रन अप के रूप में लॉन्स, और जो टॉप स्कोरर है वो है लुपल एस्टेबान। जर्मनी में बुंडेसलीगा में चैंपियंस बायर्न म्यूनिख और रन अप बोरुसिया डॉर्टमुंड, और जाहिर सी बात है कि टॉप स्कोरर है हैरी केन। और इटली सेरी आ में जो चैंपियंस टीम है एक बार फिर इंटर मिलान, और रन अप है नापोली और लोटारो मार्टिनेज वो है टॉप स्कोरर। पर जो सबसे बड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता है विश्व में निस्संदेह वो है वर्ल्ड कप 2026, और परिश्रम और पराक्रम का मिक्स। तो चलिए आप तो जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ल्ड कप है चैंपियंस कौन घोषित होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। चलिए पहला जो प्रश्न आपके लिए है वो है फुटबॉल और मैथमेटिक्स पर। अब आप पूछ रहे हैं कि फुटबॉल और मैथमेटिक्स दोनों? जी हाँ, इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो 20 टीम्स हैं, 20 टीम्स हैं, और हर एक टीम को बराबर 38 मैचेस खेलने पड़ते हैं यानी 38 मैचेस। होम और एवे को कुल मिलाकर 38 मैचेस टोटल खेलने पड़ते हैं हर टीम को। अब अपने गिनने की शक्ति को आप जगाइए, काउंट कीजिए और बताइए कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक टीम को मैक्सिमम पॉइंट्स कितने प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, एक टीम को मैक्सिमम पॉइंट्स कितने प्राप्त हो सकते हैं, एक टीम टोटल मिलाकर 38 मैचेस खेलती है तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि एक टीम को मैक्सिमम पॉइंट्स कितना हासिल हो सकता है। मिनिमम पॉइंट्स आपको बता दें 0, क्योंकि अगर एक टीम को 38 मैचेस में कोई भी जीत हासिल नहीं होती है, कोई भी ड्रॉ भी हासिल नहीं होता है, तो वो 0 पॉइंट्स पर होता है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ ए टीम कितना होता है कुल मिलाकर बताइए, 4028085। और इस प्रश्न का जवाब देकर आप भी बन सकते हैं चैंपियन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस।

0: जी हाँ, आप लोगों ने सही जवाब देकर चैंपियंस का सम्मान पा लिया है। फुटबॉल आपका तो बहुत ही बढ़िया है आपकी जानकारी, और मैथमेटिक्स में तो आप अव्वल नंबर के महारथी हैं। हमने पूछा था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक टीम का जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है वो कितना हो सकता है अगर एक टीम कुल मिलाकर 38 मैचेस खेलती है तो मैक्सिमम मार्क्स यानी हर मैच वो जीतती तो है, और एक जीत के लिए उन्हें प्राप्त होते हैं 3 अंक 38 times 3, टोटल कुल मिलाकर 114 अंक। और जो चैंपियंस बने हैं वो है हरीश भाई फ्रॉम बोबासें, वाशेगी से ऋषि भाई, विजय भाई फ्रॉम क्राबित सेवास्तोपोल, फिनिक्स से सिरिक भाई, आत्मा जी फ्रॉम तुडोदूस और इंदिरा जी फ्रॉम मोरालबेर। चलिए अगला प्रश्न जरा गौर से सुने। अभी आपने हमें सुना मैक्सिमम और मिनिमम अंक कहते हुए। चलिए आपकी भाषा की जानकारी का हम परीक्षण करेंगे। अभी आपको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है हिंदी में, बताइए मिनिमम और मैक्सिमम को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप रोज मौसम का हाल सुनते हैं रेडियो पर या टीवी पर तो आपको दिक्कत नहीं होगी, खोज नहीं करना पड़ेगा, और हम तो जानते हैं कि आपका प्रेम हिंदी के प्रति अटल और अटूट है। तो सोच के हमें बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम को हिंदी में हम क्या कहते हैं।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,

ओटों को करके घोल हम कहेंगे ऑल इज वेल। हाँ जी, और आपका जो जवाब है ऑल इज वेल है। हमने पूछा कि मैक्सिमम को हिंदी में क्या कहते हैं और सही जवाब है अधिकतम। जी हाँ, अधिकतम। और किसी ने कहा उच्चतम, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर हम कहते हैं अधिकतम। जब आप मौसम का हाल सुनते हैं तो कहते हैं अधिकतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम को कहते हैं न्यूनतम, कभी कभी कहते हैं अल्पतम, जो संस्कृत शब्द है, लेकिन ज्यादातर न्यूनतम प्रयोग में लाया जाता है। और जो वेल जो सही जवाब दिया है वो है इंदिरा जी फ्रॉम मोदाल बे, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, इंद्रानी जी फ्रॉम लिस्कालिये, हरीश भाई फ्रॉम बुबासे, उमा जी फ्रॉम रोजबेल, ओकुले से अमृता जी।

चलिए अगला प्रश्न हम पूछेंगे वर्ल्ड कप पर। वादे के मुताबिक हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं वर्ल्ड कप 2026 पर सवाल। फुटबॉल का है अनोखा गेम, वर्ल्ड कप का अजब फेम। आयोजक तीन देश और 45 अन्य देश, एक वर्ल्ड कप एक ट्रॉफी विशेष।

केवल 5 दिन है शेष वर्ल्ड कप को आरंभ होने में। 3 आयोजक टीम पहली बार के लिए कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। 48 देश पहली बार के लिए। 104 मैचेस पहली बार के लिए। 12 ग्रुप में 4-4 टीम्स पहली बार के लिए। 4 बार विजेता वर्ल्ड कप विजेता इटली इस कंपटीशन में नहीं है पहली बार के लिए। 1 चैंपियंस टीम लगातार 3 बार वर्ल्ड कप में नहीं है। किसकी होगी जीत अंत में? स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्राजील, पोर्टुगल या अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई टीम? फैंस तो बड़े ही है उत्सुक है, वर्ल्ड कप का समा है कुछ ऐसा है। पहली बार के लिए 3 मस्कट्स कनाडा से। मफल द मूस, एक हिरन की तरह मूस। मेक्सिको से जायू द जगुआर और यूएसए से क्रच द बाल्ड ईगल यानी गरुड़।

पहली बार के लिए चार देश वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुए हैं, पहली बार के लिए डेब्यूट जिसे कहते हैं। कौन से हैं वो देश, कौन सी हैं वो टीम्स जो पहली बार के लिए वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रही है ये टीम? चार चार देश हैं, आप केवल दो देशों के नाम बता देंगे तो काफी होगा। तो चार देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप में पहली बार के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप उन चारों देशों में से केवल एक दो देशों के नाम बता दीजिए। 4028085।

जी हाँ, हमने सवाल किया था कि कौन से चार देश हैं जो अपने इतिहास में पहली बार के लिए वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रहे हैं, और आप हो गए कूल और आपने दिया बहुत ही सबा सही जवाब। पहला जवाब है जॉर्डन, पहली बार के लिए भाग ले रहे हैं। उज्बेकिस्तान भी है, और उज्बेकिस्तान के बाद कबवर्ड आइलैंड ये भी है, जिस जो उसका नया नाम है कबोवेर्ड, जो पोर्टुगीज नाम है। और एक है क्यूरासाओ, लेकिन उसे क्यूरासाओ नहीं कहते हैं, ये सिसेजी है इसमें, जो केवल फ्रेंच में यूज होता है। ये क्यूरासाओ नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं क्यूरासो।

रसो। तो ये चार देश हैं जो इस वर्ल्ड कप में पहली बार के लिए भाग लेंगे। तो चलिए एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए। अगर आपने साहित्य दर्पण प्रोग्राम सुना होगा तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओशंस मनाया जाएगा

0: हमें बताइए प्लीज कि कौन सा वो सागर है, कौन सा वो ओशन है जो सबसे गहरा है और सबसे बड़ा भी है। द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन सा है? आपको जवाब इंग्लिश में देना है और हिंदी में भी देना है। याद रहे 402-808-5902-9995।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।

जी हाँ, आपका जवाब भी है हिट हिट। हमने सवाल किया था कि कौन सा वो महासागर ओशन है जो सबसे गहरा है, डीपेस्ट ओशन, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ओशन, और वो है पैसिफिक ओशन। और आपको हिंदी में भी जवाब देना था, और वो है प्रशांत महासागर। सही जवाब दिया दीला जी फ्रॉम मौलाशो, वाकवा से नीला जी, आत्मा जी फ्रॉम तुडोदुस, अली जी फ्रॉम लिस्कालिये, नंदलाल जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्वस्ति जी फ्रॉम कटरबोन, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, इंद्रानी जी फ्रॉम लिस्कालिये, अक्षय जी फ्रॉम लिस्कालिये और इंदिरा जी फ्रॉम अदालबेया। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। गुरुवार को, थर्सडे को, 11 जून को वर्ल्ड कप की शुरुआत, मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये ओपनिंग मैच है। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में ये आयोजित हो रहा है वर्ल्ड कप, 23rd वर्ल्ड कप। इसमें आप जरूर दिलचस्पी रखें, केवल आप फुटबॉल भी मत देखें बल्कि फुटबॉल खेलें भी। सवेरे आप उठें तो सूर्योदय से पहले, सूर्य के जागने से पहले आप उठ जाएं, खिड़की खोलें, शीतल

पवन को प्रवेश करने दें और लंबी सांसें लें और आप व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार, पद्मासन, योगा या एक्सरसाइजेस करें, जो भी आपसे बन पड़ता है, प्लीज जस्ट मूव और जस्ट ग्रूव। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आप लोगों को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के 6 बजे हैं। बजे के बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। देश दो दरगना कहतियाओं से दहल उठा है। लासोस का थोबोन में एक व्यक्ति की कथित रूप से उसकी पत्नी के हाथों मौत। वहीले सालिन में 23 वर्षीय स्नेहा जुतन की उस

0: इसके पूर्व मंगेतर द्वारा कथित हत्या कर दी गई। इबोला के बढ़ते खतरे को देखते हुए कैबिनेट ने सावधानी के सख्त कदमों को दी मंजूरी। कोंगो गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए नियम और सख्त होने जा रहे हैं। 10 जून से हाथ में मोबाइल लेकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर पहले से अधिक अंक काटे जाएंगे। विदेश में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई सफलता। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का एक और भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। देश एक बार फिर से दो दर्दनाक हत्याओं से दहल उठा है। कुछ ही घंटों के अंतराल में दो लोगों की जान चली गई और दो परिवार गहरे सदमे में डूब गए। लासोस का थोबोन में एक व्यक्ति की कथित रूप से उसकी पत्नी के हाथों मौत हो गई। वहीं लेसालिन में 23 वर्षीय स्नेहा जुतन की उसके पूर्व मंगेतर ने हत्या कर दी। आज स्नेहा जुतन का अंतिम संस्कार किया गया। उनको अंतिम विदाई दी गई, जहां परिजनों और करीबी लोगों की आंखें नम थी। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: एक और त्रासदी जिसने पूरे परिवार, पूरे मोहल्ले और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाली 23 वर्षीय स्नेहा जुतन की शुक्रवार को उनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई। युवती पर चाकू से कई वार किए गए थे। इस हमले को उनके पूर्व मंगेतर ने एक विवाद के बाद अपने घर पर अंजाम दिया। इस शनिवार परिजनों, दोस्तों, स्थानीय निवासियों और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। जहां तक संदिग्ध का सवाल है, 29 वर्षीय माविन चांगिया पर वीकेंड कोर्ट में हत्या का आरोप दर्ज किया गया है। परिजनों के अनुसार पीड़िता पिछले दो वर्षों से हिंसा का शिकार हो रही थी। अधिकारी पीड़ितों से अपील कर रहे हैं कि वे बहुत देर होने से पहले इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाएं और इनकी शिकायत दर्ज कराएं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री अरियाना वोमारी ने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि एक और महिला की हत्या कर दी गई है। इस युवती की क्रूरता से हत्या की गई है। मैं शब्द बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं पीड़ितों से ये मांग करना चाहती हूँ कि वे मंत्रालय से मदद लेने से न हिचकिचाएं। मदद मांगने से शायद एक जिंदगी बच सकती है। लेसालिन में जिस युवती की मौत हुई थी, उस मामले की रिपोर्ट मंत्रालय में दर्ज नहीं की गई थी। अधिकारी डोमेस्टिक अप्यूज बिल के मसौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए ये एक नया कानून है, जिसमें रोकथाम, सुरक्षा और जवाबदेही पर आधारित एक व्यापक रणनीति को प्राथमिकता दी जा रही है।
0: देश को झकझोर देने वाली दो हत्याओं को ठीक एक दिन बाद एक अहम संदेश दिया गया। घरेलू और लैंगिक हिंसा पर अब चुप्पी नहीं। मॉरिशस पुलिस फोर्स की मेट्रो साफ डिवीजन ने आज पोर्टली के लाइन बराक्स में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर लोगों से हिंसा के मामलों को छिपाने के बजाय समय रहते शिकायत करने, पीड़ितों का समर्थन करने और समान तथा समानता पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देने की अपील की गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: ये दुखद घटनाएं एक बार फिर से इस कठोर सच्चाई की याद दिलाती हैं कि घरेलू हिंसा आज भी मॉरिशस में गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। परिवार और माताओं की भूमिका को सम्मान देने वाले विभिन्न आयोजनों के बीच पुलिस ने कैसे मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, जो सीधे मॉरिशन परिवारों को प्रभावित करता है। लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ संघर्ष, ये संदेश बैडेडाम में एक महिला की हत्या के खिलाफ की गूंज भी रही। एक जमीनी हकीकत ये है कि पुलिस को अक्सर तब सूचित किया जाता है जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। WCI नाग्या ने कहा, यदि समय रहते ये मांग मिली होती तो पुलिस स्थल पर जाकर हत्या रोक सकती थी। बहुत देर से मांग मिली, पुलिस स्थल पर गई, सब आवश्यक कदम उठाया। दुर्भाग्यवश एक युवा महिला ने अपनी जान घरेलू हिंसा के कारण गंवाई। पूरे दिन महिलाओं की भूमिका प्रमुख रही। महिला पुलिसकर्मियों की परेड विभिन्न पुलिस इकाइयों के

0: दर्शन पुलिस वाहनों जिनमें ब्लैक मारिया मोटरसाइकिलें और साइकिलें शामिल थीं के प्रदर्शन हुए। इन गतिविधियों का उद्देश्य पुलिस सेवा में महिलाओं के योगदान और हिंसा की रोकथाम में उनकी भूमिका को रेखांकित करना था। सभी कार्यक्रमों का साझा संदेश था, बहुत देर होने से पहले चुप्पी तोड़ें। इसी संदर्भ में नागरिकों से सतर्क रहने और चिंताजनक परिस्थितियों की तुरंत सूचना देने की अपील की गई। WASP अपाडू ने कहा, यदि एक पड़ोसी को असामान्य शोर सुनाई दे, खासकर लड़ाई के, पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहे, हम उचित कदम उठाएंगे। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से पुलिस ये संदेश देना चाहती है कि शिक्षा, रोकथाम और समय पर शिकायत दर्ज कराना लैंगिक आधारित हिंसा से लड़ने के सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ताकि त्रासदी से बच सके।
1: इबोला के बढ़ते खतरे को देखते हुए कैबिनेट ने सावधानी के सख्त कदमों को मंजूरी दी है। कोंगो गणराज्य, युगांडा और दक्षिणी सूडान से आने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी। वहीं मॉरिशस नागरिकों और विभिन्न प्रकार के परमिट धारकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें 21 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी, जबकि रियोंबेल स्थित अनिरुद्ध जगन्नाथ लेजर सेंटर को क्वारंटीन केंद्र बनाया गया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: इस शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक एबेन में आपात बैठक के लिए एकत्र हुए। बैठक का उद्देश्य रियोंबेल क्वारंटीन केंद्र की अंतिम तैयारियों को पूरा करना तथा क्वारंटीन एक्ट 2020 में संशोधन कर इबोला वायरस को उसके प्रावधानों में शामिल करना था।
2: Quarantaine pour durer 21 jours. Donc, tout d'abord, nous pour force trois autres, ça veut dire nous pour finir connu, bien sûr, ça va une personne revenant de sa de sa trois pays là. Depuis l'aéroport, pour sujet bien sûr un thermal screening, ben sanitaire, pour prendre en charge, pour diriger vers une Riambel Recreational Center qui finit identifié. Donc là-bas, nous pour une équipe qui peut suivre les autres pendant 21 jours.
0: हवाई अड्डे पर उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय के सैनिटरी ब्यूरो द्वारा उनकी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बंदरगाह पर भी स्वास्थ्य निगरानी को और मजबूत किया जाएगा और यात्रियों की सूची पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: Il y a un port, il y a des ports au DRC, mais nous n'avons pas de ligne directe de DRC à port lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des navires qui auraient éventuellement touché le DRC. Donc c'est ça la mesure accrue. Il faut bien veiller quels sont les ports qu'ils ont faits, quel est le dernier arrêt qu'ils ont fait au DRC et voir avec le protocole pour l'incubation de Ebola comment est-ce que tout ça marche. Si jamais ça vient avant les 21 jours, comme la santé a demandé, le navire restera au mouillage, ne va pas entrer au port. Pour l'instant, nous sommes dans saison mode des croisières, donc nous n'avons pas de croisière jusqu'à septembre, si je ne me trompe. Donc, on est tranquille de ce côté-là.
0: मॉरिशस को इबोला वायरस से सुरक्षित रखने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। हवाई मार्ग से मॉरिशस आने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्रा से पहले ऑल इन वन ट्रैवल फॉर्म और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। समुद्री मार्ग से मॉरिशस आने वाले यात्रियों को भी यात्रा शुरू करने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। कोई भी विदेशी नागरिक जिसने पिछले 21 दिनों के दौरान लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा की हो या वहां से होकर गुजरा हो, उसे अस्थायी रूप से मॉरिशस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मॉरिशस के नागरिकों तथा कार्य परमिट, निवास परमिट, व्यवसाय वीजा या छात्र वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों को यदि उन्होंने इन तीन देशों की यात्रा की है या वहां से होकर गुजरे हैं, मॉरिशस पहुंचने पर 21 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये सभी उपाय 8 जून से लागू होंगे और 7 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।
1: अफ्रीका में इबोला के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कोंगो में 500 से अधिक संदिग्ध मामले और 131 मौतें दर्ज की गई हैं। स्थिति को देखते हुए अफ्रीका CDC और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रमण को

0: फैलने से रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना शुरू की है।
1: अफ्रीका में इबोला के बढ़ते मामलों के बीच अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी अफ्रीका CDC और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक संयुक्त कार्य योजना शुरू की है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके और प्रभावित देशों को आवश्यक सहायता दी जा सके। जून से नवंबर 2026 तक चलने वाली इस योजना के लिए 518 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत रोग की पहचान, निगरानी, जांच और उपचार और बचाव के उपायों को मजबूत किया जाएगा। ये कदम कोंगो और युगांडा में फैल रहे बुंदी बुग्यो प्रकार के इबोला को देखते हुए उठाया गया है, जहां स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कोंगो में अब तक 513 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 131 लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं युगांडा में भी संक्रमण के पुष्ट मामले और एक मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और समय पर उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। योजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, प्रयोगशालाओं की क्षमता मजबूत करने, स्वास्थ्य कर्मियों को सहायता देने और लोगों में जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बुंदी बुग्यो प्रकार के इबोला के लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका या विशेष दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुरंत जांच की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी देशों से सीमा चौकियों पर स्वास्थ्य जांच को और सख्त करने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील की है, ताकि इस प्रकोप को जल्द नियंत्रित किया जा सके और अधिक लोगों की जान बचाई जा सके।
0: मॉरिशस में तैयार होने वाले कपड़े दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स और मशहूर लोगों तक पहुंचते हैं। अब बदलती पर्यावरणीय ज़रूरतों को देखते हुए क्यूपिप स्थित वेंसम कारखाना और सौर ऊर्जा को अपना रहा है। कंपनी ने इस परियोजना में 30 मिलियन रुपए निवेश किए हैं।
2: क्यूपिप में वेंसम कारखाने की छत पर सैकड़ों फोटोवोल्टाइक पैनल बिठाई जा रहे हैं। इस नीति के पीछे मकसद साफ है, अपनी प्रमुख मंडियों यूरोप और अमेरिका की मांगों को पूरा करना, जो कि कार्बन मुक्तिकरण यानी कि डिकार्बोनाइजेशन है। यहां प्रति साल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्राहकों के लिए करीब 60,000 पोशाक बनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के लिए उच्च यूरोपीय लेबल के अलावा उच्च स्तर की इंग्लिश फुटबॉल के खिलाड़ियों और कोच लोगों के लिए भी। लेकिन आज केवल विशेषज्ञता पर्याप्त नहीं, उत्पाद की किस्म के अलावा ठोस पर्यावरण प्रतिबद्धता भी साथ में होनी चाहिए। वेंसम के डायरेक्टर जनरल अविनाश गोवर्धन कहते हैं,
3: Aujourd'hui la qualité n'est pas le seul réquisite des acheteurs. Ce tout lié à une transparence dans la production. Une transparence sur l'éthique et une transparence sur la continuité. Donc on a investi dans 500 kW sur la toiture de l'usine. C'est dans cette optique de marier le savoir-faire mauricien avec l'avenir.
2: इस सौर स्टेशन की बदौलत ये उद्योग पूर्ण रूप से स्वच्छ ऊर्जा से काम कर सकेगा। निवेश की रकम 30 मिलियन रुपए है। भविष्य में डीजल से चलने वाले उसके बॉयलर को सौर ऊर्जा की एक विद्युत प्रणाली से बदल दिया जाएगा। लगभग 250 किलोवाट का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन CEB के राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में डाला जाएगा। लगभग 350 रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ वेंसम ये साबित करती हैं कि औद्योगिक उत्कृष्टता, प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी एक साथ आगे बढ़ सकती हैं। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मॉरिशस के वस्त्र उद्योग के भविष्य को भी मजबूत कर सकती हैं।
0: मॉरिशस में महंगाई को लेकर राहत भरा अनुमान है। अफ्रीकी विकास बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार 2026 में 6% रहने वाली महंगाई दर 2027 में घटकर 3.9% तक आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले समय में स्थानीय बाजार में दामों पर दबाव धीरे धीरे कम हो सकता है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa's real GDP growth is doing well. It will still be above 4.0% at the end of 2026, even if the conflict continues up to 6 months.
5: मुद्रास्फीति में कमी और आर्थिक विकास में सुधार मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक के ये मुख्य पूर्वानुमान है। महंगाई दर 2026 में 6% से घटकर 2027 में 3.9% होने की उम्मीद है, जबकि इसी अवधि के दौरान आर्थिक विकास दर 2.8% से बढ़कर 3.8% होने का अनुमान है। ये ऐसे परिदृश्य हैं जो परिवारों को कुछ राहत दे सकते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
6: Le pouvoir d'achat pourra sans doute se stabiliser, notamment autour des produits.
5: अर्थशास्त्री मनीषा दुखनी बताती हैं, निश्चित रूप से खरीद शक्ति में स्थिरता आएगी, खासकर जरूरतमंद पैदावारों को लेकर, चाहे खाद्य हो, परिवहन हो या बिजली। कंपनियों के लिए 2026 की तुलना में 2027 में अधिक वृद्धि होगी।
6: Une demande intérieure qui sera potentiellement beaucoup plus dynamique. Que ça ne l'est aujourd'hui parce que on est quand même dans une situation où c'est beaucoup moins et un environnement macroéconomique qui sera potentiellement beaucoup plus prévisible.
5: इन उत्साहजनक संभावनाओं के बावजूद अफ्रीकी विकास बैंक ने रेखांकित किया है कि मॉरिशस अभी भी कुछ आर्थिक असंतुलन का सामना कर रहा है। देश में राजकोषीय घाटे बने रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि देश का खर्च उसकी आय से अधिक रहेगा। बजट डेफिसिट में ये अनुमान है कि हल्की सी बेहतर स्थिति होगी जो बजट से शुरू होगी, जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। ऋण बहुत है और फिस्कल कंसोलिडेशन से हम ऋण को कम कर सकते हैं।
6: De dette assez haut, donc avec la consolidation fiscale, on va aussi potentiellement pouvoir maintenir le cap sur la diminution de notre dette.
5: रिपोर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि आयात अभी भी निर्यात की तुलना में अधिक बना हुआ है। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आने वाले वर्षों में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है।
7: Le plus gros composant de notre trade balance est...
5: हमारे ट्रेड बैलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल से संबंधित है। लंबी अवधि में कीमत कम हो रही है, जिससे करंट अकाउंट में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी घाटा कम होगा। दूसरी ओर पर्यटन और वित्तीय सेक्टर तथा आईसीटी सेक्टर से निर्यात से आय मिल रहे हैं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सकता है।
7: Ça va contribuer aussi à réduire le current account deficit.
5: रिपोर्ट में मॉरिशस को आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के मामले में अफ्रीकी देशों के बीच एक रोल मॉडल के रूप में भी उद्धृत किया गया है। अफ्रीकी विकास बैंक ने विशेष रूप से टैक्स और अन्य सार्वजनिक राजस्व को प्रभावी ढंग से एकत्र करने की देश की क्षमता और साथ ही इसके वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को प्रमुखता से सामने रखा है।
0: गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए नियम और सख्त होने जा रहे हैं। 10 जून से हाथ में मोबाइल लेकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर पहले से अधिक अंक काटे जाएंगे। और इस बीच हैंड्स फ्री उपकरण को भी लेकर कुछ नियम लागू होने वाले हैं। ये सभी नियम 10 जून से लागू होंगे। विदेश की खबरों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई सफलता मिली है। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का एक और भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ये खोज भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: भारत को समुद्री ऊर्जा खोज के सेक्टर में एक नई सफलता मिली है। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का एक नया भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ये खोज अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक खोजी कुएं में की गई है। ये क्षेत्र समुद्री तल से लगभग 355 मीटर की गहराई में स्थित है। ये पिछले एक वर्ष के भीतर इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की दूसरी महत्वपूर्ण खोज है। अब तक खोदे गए तीन खोजी

0: कुओं में से दो में हाइड्रोकार्बन यानी तेल या गैस की मौजूदगी पाई गई है। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान लगभग 1900 मीटर से अधिक गहराई पर प्राकृतिक गैस के संकेत मिले हैं, जिससे इस क्षेत्र में बड़े ऊर्जा भंडार होने की संभावना और मजबूत हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार मिल रही सफलताओं से अंडमान बेसिन के ऊर्जा संसाधनों के बारे में नई जानकारियां प्राप्त होंगी और भविष्य में यहां व्यापक स्तर पर खोज एवं उत्पादन गतिविधियां तेज हो सकती है। ये खोज एक ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा दे रहा है।
1: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
2: दक्षिण से पाए जाने वाले बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। मस्करिंस के दक्षिण से पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बहेगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर। रात के दौरान सामान्य बारिश हो सकती है, ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:40 पर सूरज उगेगा और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। Quand demain Grode petit raffrémé, quand demain Grode petit raffrémé, 68 साल की 68 years old की श्रीमती मीला रंजीत, श्रीमती मीला रंजीत पैदाशी नाम दसवा और जो मीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विशाल रंजीत के मकान कौदुमैग रोड पिछराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। बैठका रोड मोगू में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के श्री नंद कुमार मनरथ जो अनिरुद्ध के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके दामाद राजेन देवीदीन के मकान बैठका रोड मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11:30 AM। विक्टोरिया रोड थुडडुस में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेंद्र हरिमन जो देवीन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी संजीता हरिमन के मकान विक्टोरिया रोड थुडडुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। रॉ रोड क्वीन विक्टोरिया में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुलारी ओहा जो मामा आनंद महादेव के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी बेटी साधना बंधु के मकान रॉ रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। अलीमोंग रोड गुडलैंड्स में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री राजदन ओहिया जो दर्श

शान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विनय उगिया के मकान अलीमोंग रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। ब्रांच रोड लाल माटी में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री केदार सिंह श्री किशुन जो सुवेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी बृंदा श्री किशुन के मकान ब्रांच रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: Unity Radio, 24 hours a day.
1: सीबी की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां सुनिए. प्लेन वेयत, रुई कलकत्ता, मद्रास, सेरोंग, महाराता, रुई मागों और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 7 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. रुई कानाल, पाथर्स्ट, घून, कारिकल, असन, उसेन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. फोंजुसाक, रुशतेया, बाजाल्ट के आसपास के रहने वालों को वामोंग, मोसलमों लंदन टावर और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी. ग्रांबे, मोसलमों नूदाली, जेहानियम रोड और अदुल्फ डिप्लेविट्स और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल 7 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. बिना सूचित किए फिर से बिजली की सप्लाई को जारी की जाएगी. मोका रोड, लिकलेजियो एवेन्यू, मोटाई ओरी, कौ सामी रोड और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. शुमे वैपिये, वैपिये रोड, ग्रांबे, ट्राइबल असेट और मोविलाक के आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 7 जून 2026 को दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. बिना सूचित किए फिर से बिजली की सप्लाई को जारी की जाएगी. सीईबी इन असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी हैं.

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोताओं को अनीता का करजोर नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, जहां आप सुन पा रहे हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम। भक्तों, कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक प्रशंसा हमारी दृष्टि पर एक आवरण रख देती है, हमें वास्तविकता दिखाई बंद हो जाती है। इसलिए अपने प्रशंसकों से सतर्क रहे, क्योंकि हर बार उनका लक्ष्य आपका मनोबल बढ़ाना नहीं, आपका अस्तित्व मिटाना भी हो सकता है। तो इसी विचार के साथ आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तों, कहा गया है कि ईश्वर को आपके कर्म चाहिए, अर्थात वे आपके सही कर्म देखते हैं। धुआं और घी की महक से आपके झूठ और पाप कभी नहीं मिट सकते। आप सोचते हैं कि कर्मकांड से स्वर्ग मिलेगा, परंतु सच में कर्म ही आपका वास्तविक स्वर्ग एवं नरक बनाते हैं।

प्रियजन, ध्यान देने वाली कुछ बातें इस प्रकार हैं कि पायल का मूल्य लाखों में होता है, किंतु उसका स्थान हमेशा पैरों में ही होता है। तिलक का मूल्य कम होता है, फिर भी वह माथे पर लगाया जाता है। दूसरी बात, नमक की कीमत बहुत कम होती है, किंतु उसके बिना भोजन का स्वाद ही नहीं आता। और केसर बहुत महंगी होती है, फिर भी हर पकवान में नहीं डाली जाती है। तीसरी बात, सुई छोटी है, किंतु वही बड़े बड़े कपड़ों को जोड़ने का काम करती है। और कैंची बड़ी होती है, फिर भी वह मात्र काटने का काम करता है। चौथी बात, दीपक छोटा होता है, फिर भी वह अंधेरे को मिटा देता है। अतः हर चीज का अपना महत्व होता है, इसलिए स्वयं को कभी छोटा या शिथिल मत समझिएगा।

भक्तजन, समुद्र बहुत बड़ा है, पर वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। और एक छोटा सा घड़ा, जिसकी क्षमता समुद्र से भी कम है, वह राह चलते पथिक की जान बचा लेता है। इसलिए याद रखना कि बड़ा वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, अपितु बड़ा वह है जो किसी के काम आता है। दिखावे की ऊंचाई से अच्छा है सेवा की गहराई।

श्रोताओं, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण कर लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। सच्ची जीत मन पर विजय में है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, अपितु वह है जो अपने क्रोध और अहंकार को जीत ले। तो इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ ही गए हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

आइए सही बुखारी शरीफ की एक हदीस समात फरमाइए। जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो वुजू करो जैसे नमाज के लिए किया जाता है, फिर अपनी दाएं करवट पर लेटो और ये दुआ पढ़ो। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे सुपुर्द किया, अपने तमाम मामलात तेरे हवाले किए और अपनी पीठ तेरी तरफ की, तुझ पर तवक्कल करते हुए तेरे ही खौफ और उम्मीद से, तेरे सिवा कोई पनाहगाह नहीं।

हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज़ बाजमात अदा की गोया उसने निसफ़ यानी आधी रात क़याम किया, और जिसने फ़ज्र की नमाज़ बाजमात अदा की गोया उसने पूरी रात क़याम यानी इबादत किया है। बहावाला सही मुस्लिम शरीफ। मौज़ सामीन, ये मजलिस थोड़ी ही देर में इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब को श्रोता लोगन के स्वागत बा। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर है कार्यक्रम चली अभी से लेके रात के 11 बजे ले। तो जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हो भोजपुरी तड़का भोजपुरी गीत के आनंद उठावे खातिर ट्यून इन करिए रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। तो चला आज के कार्यक्रम बहुत धमाकेदार गीत के संगे सजावब जा। और इस शनिवार सामदी के रात है, रात के 9:03 हुआ था। रत्ना आप सब कोई के संगे जुड़ गल हवन। तो चला आज के कार्यक्रम में आप सब कोई के दिल से स्वागत करत हैं। और जैसे कि

जानत हव जून महीना जब चलावेला जून महीना के पहला दिमास के दिन हम मनाईला जा फादर्स डे तो खुशियाली के संगे है आज के पहला गीत हम आप सब कोई खातिर लेके आल हैं चंद्रदेव जी बोधन के आवाज में रखल बहुत मजेदार गीत और है गीत है भोजपुरी के आवाज एल्बम से लेवल गए माँ बाप ही भगवान है तो चला कर अब जाए को बढ़िया शुरुआत और जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के तो जरूर बेशक हमनी के तू टेलीफोन करे सकब 402-808-5 और इस साथ ही साथ में सास भी विदा करे सकब 5251-7005 तो चला जुड़ जाइए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे चंद्रदेव जीबुदन के आवाज में रखल आज के पहला गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे संगे जुड़ जाइए और मजेदार गीत के संगे बढ़िया बढ़िया चुटकुला। चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़े आगे तोरा जना देव था अगला गीत जोन है लेखाम जी खातिन चला अब जाओ। उनकर पत्नी हवन देवी कौन तो पास पावे से तू साथ देवत हवा और विक्रम कुलाचन के आवाज में रखल धोती पोती पगड़ी के गीत तू मांग कर।

हवा जरूर चलाओ अब जा है गीत और है गीत हमर जितना पूर्वज लोग हवन उनकर याद में कहे के जब वो भारत से आल रहलन अपन संगे धोती पोथी और पगड़ी अनले रहलन और संस्कार के संगे संस्कृति के संगे जीवन में वो आगे बढ़लन। तो चला आगे चलाओ अब जा है गीत और ओकर से अगाड़ी हमर चचा गजोधर जोन हवन का बोलब हो कौन दिन गोड़ में ओकरा एगो किल एगो कुलू ढुगल। अब तो चिकरते चिकरते चाची तो हाली हाली टैक्सी के बुला के लेके गइलन ओकरा लोपिताल। अब लोपिताल में जाके जब डॉक्टर के बतलावता तो डॉक्टर देखता गोड़ में तो एगो बड़ का कुलू ढुगल बा। तो चचा बोले हाँ बोले कैसे कैसे है ढुगल। बोले हम तो चलत रही तो नहीं देख ली तो एक कुछ गोड़ में तो हमार गोड़ तक कुल्लू पे पड़ गल तक कुलवा ढुक गल हमार पगोड़ में। तो डॉक्टर हाली हाली जाके अपन लेगोवा डाल के जानत हवा कोची कलन एगो गुद लेके आइलन और गुद लेके बोले चचा के बोले हाँ लेट जाइए आँख में डाले शुरू कर देलक। तो चचा बोले अरे बुढ़बक हमार आँख में नहीं हो हमार गोड़ में कुल्लू ढुकल बा। बोले हाँ चाचा जब नीमन से देखते तो कुलू पे नहीं रखते ना अपन गोड़ हाइये से तोहर आँख में पहला गुद डालत हैं।

0: भोजपुरी तड़का
1: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के जितना श्रोता लोगन हमने के संगे जुड़कर हवन बस प्यार से साथ देते रहिए। और जे विदेश में भी हवा था www.mbcradio.tv के माध्यम से तू हमनी के संगे जुड़ल रहे सकबा। और चला हाई जा पर हमनी के साथ देवत हवन राजन रघुपत जी जे भी लंदन से हमनी के लॉन्गलेटिया से भोजपुरी कार्यक्रम सुनत हवन। चल बहुत बहुत प्यार से स्वागत करत है राजन भैया। आउरी मजेदार कार्यक्रम बस ऐसने सुनते रहिए साथ देते रहिए जा। और हैजा पर हमनी के अगला जो श्रोता हवन नवीन लक्ष्मण जी साथ देवत हवन रोजबेल से। आउरी चित्रा जी खातिन बहुत बहुत प्रार्थना करत हैं जेकर तबियत उतना अच्छा नहीं बा पर भगवान के कृपा से अब तनी अच्छा हुआ था। तो चला शिव के महिमा के हई गीत उमांग कर ले हवन। और हई ये गीत चलाओ अब जा उनकर सब परिवार खातिर निवेदित। और सच्चिदानंद जी मेबक से, ललिता और धनराज चरण जी हवन नोडालबिया बगल से, बेटी हवन चित स्वीटी और साथ देवत हवन राज और अमृता उबिलक न्यू ग्रोव से, रमेश और प्रीति जी हवन संगे हाँ बुआ से। तो बस प्यार से साथ देते रहिए। लीलो माथुर सुकन के आवाज़ में रखल है अगला गीत शिव के महिमा, माँ बाप के सुंदर लाठी एल्बम से लेवल गए। तो चल हंसते मुस्कुराते बस साथ देते रहिए जा।

औरी कौन दिन हमर जो चचा है ना तनी उतना एटीएम सब सेवी करे नहीं जाने लन सर त कौन दिन चल गल्ला बैंक में पैसा निकाले खातिन त बैंक में जाके मैनेजर से बोले हमनी के 20,000 रुपया तनी चाहिला। त मैनेजर बोले हाँ जानत हो चाचा अभी कैश जोन है पैसा जोन है फिनी हो गल बात। चाचा बोले अरे कैसे फिनी हो गल बा हम त हमर पैसा मांगत है हम त रखले रहली बला बैंक में। तब मैनेजर बोले हाँ चाचा गुस्सा नहीं करिया तनी शांति से बात करिया। तो चाचा बोले हाँ बुलाओ शांति के हम शांति से भी बतिया लेव बोकर से भी बात कर लेव काहे हमर पैसा नहीं देवा था। बोले चाचा शांति से बात करिए मतलब महिला शांति नहीं हम बोला था तनी कपार ठंडा रख के बात करिए हो।

बार कार्यक्रम संगे सब कोई हंस के हमनी के संगे बतियाता है। ये तो सबसे बड़का खुशी है। चला हईजा पर 9:23 हो गल बा और मजेदार गीत संगे आगे बढ़ता है। हईजा उमा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन फौजू साक से। उनकर दू गो नातिन हवन वाकवा से हवन आरोही और गांव पौ से हवन आहाना खातिन सरिता बुद्धू के आवाज में रखल पानी नहीं बा चिंगन मिंगन पानी भरे हाई गीत के उ मांग कले हवन त चला बचपन के दिन में चल जाब स औरी याद करब स हाई दिन के औरी हमर चचा गजोदर के का बोलब जानत हवा यूट्यूब पे देख देख के जितना अंग्रेजी बोले सीख गल हवन बुढ़वा नहीं जानेला कहा कौन चीज बोले के कौन दिन बिचारी चाची और उनकर से बोले एगो बहुत बड़का चीज बोल देला और निमन से बोले के चाहिला ना अंग्रेजी जब बोलब त समझे के चाहिला कौन चीज कहाँ बोलत हवा। चाची बोले हमर जोन बाल है बहुत उजर हो गल बा। चाची भी तनी अंग्रेजी जाड़ देलक बोले व्हाट शुड आई डू त चचा बोले यू शुड डाई। अरे पूरा वाक्य बोला हो चाचा यू शुड डाई योर हेयर तो बोले यू शुड डाई। चाची तो एक सवात उठा के बिला के मार दिला चाचा के।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम औरी चला आगे बढ़ब सा। और ये अगला गीत जोन है बहुत ही मजेदार गीत लागी नहीं छूटे राम हई गीत करब जा चाची ललिता कुशल खातिन त्रियोले से संगे साथ देवत हवन हमनी के और सब कुशल परिवार खातिन हई गीत चलावब जा। खासकर उनकर बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी संगे हवन छोटी दादी प्रभावती सुखलाल मौसी माला राम झावन भाई आत्माराम और भाई हरीश खातिन हई ये गीत। और संगे संगे घों गोप से साथ देवत हवन सुनीता जी संगे हवन उनकर तीन गो बहिन विमला अमृता औरी वीना जी कोंगो माँ से। तो चला है ये गीत सुनते रह मजेदार गीत। आउरी श्यामा जी जे तू सुनत हवा तो हई गीत तोहर खातिन भी करब जा हई गीत तू भी बहुत ही खुशी हवन सुने के। तो बस हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। गीता जी हमनी के गीता बाई हमनी के संगे जुड़ गल हवन नुएल फ्रांस से। और बेटा हवन शिवाजी पतो हवन श्वेता बाई बेटी हवन सुधा बाई संगे हवन दू गो नातिन बिजवी बाई दिया बाई और प्यारा मल्हार और उनकर खास दोस्त गीता गायत्री जी भी हई गीत के बहुत खुशी रहेलन लागी नाही छूटे राम। आउरी कौन दिन जानत हव चाची गल कौन ची करे चाची देरी से तनी घरे आल तो चाचा पूछे कहाँ गल रले हो बोले हाँ दू दिन पहला राज्यों पे सुनले रली रक्तदान करे के खून के दान करे के बहुत जरूरी है तो हम भी गल रली रक्तदान करे तो चाचा बोले हाँ हमार पीते पीते तनी ओवरफ्लो हो गल हवे से बांटे गल रला।

भोजपुरी दर्द का कार्यक्रम 9:33 होकल बाटे और मजेदार गीत के संगे संगे जितना कोई साथ देवत हवन बस ऐसने साथ देते रहिए जा और बढ़िया बढ़िया गीत संगे जितना कोई हमनी के सुनत हवन आप सब कोई के बहुत बहुत प्यार और चला हाई जा पर अगला गीत जो है गीत आगे जादर के आवाज में रखल माँ बाप के मोल हाई गीत के मांग करत हवन चाची शांता सुकारी से जमील फॉरेस्ट साइड से उनकर पतो किरण संगे हवन उनकर चार गो बेटा लोग सुदेश सुजीत अशोक आविन और नाती हवन फावेश और नातीन हवन संजना जितना कोई सुना था वन उन सब कोई खातिन तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे साथ देते रहिए जा औरी का बोलब चचा कौन दिन गर्ल फीलिंग स्टेशन आहो लिसेंस दलवाई औरी जब हुआ गर्ल त जानत हव कौन ची होल हाउ जा पर एगो बड़का अक्षर में लिखल रहल कि जोन चीज आग लगावेला ना ओकरा बाहर छोड़ दे के काहे कि तू फीलिंग स्टेशन में जात हव तो चचा तो हाल ही से चाची के बोले उतर गाड़ी में से उतर वहां लिखले बा कोई के आग लगावे वाला चीज के बाहर छोड़ के आई अरे चचा माचिस के बोलत हवन चाची के काहे उतार दे लगते

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आगे बढ़ाओ अब सब बहुत मजेदार गीत संगे और ये अगला गीत जन हमार 20 के पास बंतार करी जाइला तो चला हई गीत चलाओ अब जा खास कर जितना हमनी के साथ देवत हवन और हई गीत के मांग करत हवन पंडित राज वर्मा जी पे चितगाफे से उनकर सब बड़ुआ परिवार खातिन तो चला मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और हई कार्यक्रम के संगे संगे चचा गजोदर जब हमनी के बात सुनावेलन जब हमनी के एगो बहुत मजेदार बात जब हमनी के बोलेलन बहुत हंसी लगेला सेलमा कबो कबो बहुत तगड़ा बात बोल देवेला चला 9:40 और जानत हव वो कौन दिन मनोहर भैया के बोले देखा याद रखे के चाहिला अपन बुढ़िया के सामने कबो पड़ोसन के तारीफ नहीं करे के चाहिला जे तू अच्छा अच्छा बात बोल देलक त जानत हव कैसन हो जाए बुझाई जैसे एगो एगो हाउ गैस के सिलेंडर के आगे तू एगो माचिस फेंक देलक ऐसे धमाका होई तो हर घर में समझ गई ला

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम औरी हई गीत रहल अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल त चला अगला गीत भी अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल बा और हई अगला गीत के मांग करत हवन आत्माराम भैया बेले से त चला हई गीत चलावब डा उनकर खातिन बहुते मजेदार गीत ह त हंसते रह मुस्कुराते रह साथ देते रह औरी प्यार से आत्माराम भैया खातिन हई गीत चलावत हई उनकर चार गो बहिन बहिन ललिता बहिन छोटी साथ हवन दादी प्रभावती और श्वेनी खातिन और चाची चाचा के तक का बोला ऐसन ऐसन प्रॉब्लम ऐसन ऐसन झगड़ा हाय रे मामा जानत हव चाची टेम्पो चढ़ैले रहल और चाचा से बोले देखा हम एगो बा एगो काम करे जात हैं हम बाजार जात हैं सब्जी किने तो हाई टेम्पो के तीन बजी तो तू बंद कर दिया सुफले तीन बजी तो बंद कर दिया तो चाची तो गल बाजार से जब ऐलन तो टेम्पो तो फाट के करिया हो गल तो चाची बोले हाय का होल कैसे हमर टेम्पो वा फाड़ दिलक कैसे फट गल बोले हाँ तू बोले रहला ना कि तीन बजे तो बंद करिया तभी तो तीन नहीं बजल बा और जानत हुआ 2 बजे के बाद तो सिटी बंद हो गल नहीं ये सुनात रहलन तो एक कुछ धबाक से आवाज आल जाके देख ली तो टेम्पो फाट गल अरे आदमी हम

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला अभी थोड़ा घड़ी में 10 बजे के बाद और ये अगला गीत चलाओ अब जा बरसेला मूसर के धार और है गीत है फूलवंती जी के पसंद पे और संगे हवन उनकर पति देवानंद बेटी हवन भावना बेटा हवन उषन और इस सब परिवार संगे जुड़ गल हवन और ये चचा गजोधर के तो कमाल सुनते चला चचा गजोधर चाची के बोले हाँ तू का जाने ला हम बहुत एक्स्ट्रा हई जानत हव हमर में बहुत खूबी है एक समय रहल जब हम सब आक्तिया लोग के मिमिक्री करत रहलन ऐसन ऐसन आवाज हम निकालत रहली तो चाची बोले हाँ फिर का होल बोले हाँ फिर हमर शादी हो गल और अब तो हम तनको मुंह नहीं खोले सकत हई तो का हम मिमिक्री करब

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का।

कार्यक्रम और ही मजेदार कार्यक्रम चले संगे चला है जहाँ पर आतिश बागी गति के आवाज में रहल है गीत और है जोन गीत रहल छोड़ के मोरी स्वा है गीत के पसंद करले रलन भाई अबू संगे हवन उनकर बेगम आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी तो चला मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम चलता भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला आगे बढ़ब सा जा पर अगला गीत जो है गीत है मानती जी के पसंद पर नोएल फ्रांस से वो हमनी के संगे जुड़ गल हवन और अनंती आरती साथ देवत हवन और उनका जितना पतो लग हवन आज परिवार दिवस मनावत हवन चला आरती जी के पतो करिश्मा भी संगे गल हवन साथ देवत हवन अनुषा और उर्वशी उनका दुगो पतो गिरिशा मितिशा और सब परिवार संगे आज परिवार दिवस मनावत हवन त खुशियाली के साथ मनाते रह परिवार के जैसन एगो खुशियाली के त्योहार एगो परब कोनो नहीं है और हम तो हमेशा बोलीला सब कोई के जीवन में सात वार रहेला सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार पर जेकर जीवन में परिवार है ओकर दुनिया बस भरपूर आनंद से खुशियाली के साथ बीतेला चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ब सा पूर्णिमा फोकिरा के आवाज में रखल हाई गीत करब सा उनकर खातिर

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
2: 10:10 भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा रेडियो मॉरिशस आउरी रेडियो मनोरंजन की जितना कोई श्रोता लोगन सुना था मन शाम दी के रात हर 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। वैसे तो रोज चलेरा रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले तो चला ऐसा बढ़िया तड़का के भरपूर मजा भोजपुरी गीत संगे। और चला अगला गीत जोन है चलाओ अब जा शांति जी के पसंद पर। शांति जी हमनी के संगे जुड़ गल हवंती है उस बगल से और दागोचिया के सब मराठी परिवार खातिन और खास कर ओम उनकर भगीना जे अपर दागो जैसे हमनी के हमेशा साथ देवेलन। और अगला गीत जोन है मुकेश चेदी के आवाज़ में चलो मोरिसवा घूमे। चला हाइये गीत करब जा गायत्री जी खातिन जे हमनी के साथ है दिवत हवन वेलफॉन्स से आज उनकर बेटी सुनीता और दामाद रावीन उनकर हियाँ घूमे आल हवन और साथ दिवत हवन नातिन केशिका और नाती केशव। तो चला रात भर आज रुकियन सा मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए बहुते प्यार से और गायत्री जी आप भी साथ देते रहिए बेटा अजय मामी कल्याणी मोहन और तोहर भाभी शकुंतला खातिन हाइये गीत करब जा मुकेश शेदी के आवाज में रखल। और चचा गजोधर हमनी के बोले हमनी के तो बहुत राका लगल हम बोली का है कौन ची बोल चचा बोले जानत हो का जानी रात के हमनी के ऐसा सपना हम देख ली हम तो डिड़ा गई नी। हम बोली का है कौन सपना देख ल बोले हम रात के देख ली कि हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हैं हम भगवान से बोलनी कि भगवान तू काहे हमर मन्नत नहीं सुनत हवा हम जो मांगत है काहे तू नहीं सुनत हवा हमर प्रार्थना काहे नहीं सुनत हवा। तो जानत हवा वो फोटोआ में से शिवजी एक कुछ प्रकट होके हमनी के बोले हाँ हम तोहर बात नहीं सुनब तोहर प्रार्थना नहीं सुनब बस कि तू रोज हमर संगे आगे आके हमर संगे बकवास करेल हये से तोहर ब्लॉके कर दे रखी भगवान ऐसा बोलक हमनी के ऐसे फट से हमर नींद खुल गल तो हम तो डरा गई नी सच्चे का भगवान हमनी के ब्लॉक कर दे हवा

मेरी तड़का कार्यक्रम और अगला गीत जन हा हई चलाओ अब जा बहुत मजेदार गीत शोभा जी खातिन और शोभा जी हई गीत के मांग कर ले हवन खास कर उनकर समधन खातिन जेकर आज जन्मदिन है समधन जी हवन शकुन शकुन जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई तोहर समधिन शोभा जी की ओर से और समधिन शकुन जी आज अपन जन्मदिन मनावत हवन उनकर पति उनकर दूगो बेटी दूगो बेटा संगे हवन परिवार सब सब परिवार की ओर से उनकरा ढेर ढेर बधाई देवत है और जन्मदिन के बहुत बहुत बस खुशहाली और अच्छा स्वस्थ हमेशा रही। तो चला अगला गीत जन है और है गीत है राजीव मंगर के आवाज में रखल हैप्पी बर्थडे तोहरा और हाइये गीत करब जा उन सब कोई खातिन जे आज अपन जन्मदिन मनावत हवन।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:24 और चला आगे बढ़ब। स मीराबाई द मिया हमनी के संगे जुड़ गल हवन मॉडल बिया बगल से सब द मिया परिवार और पादिया परिवार, खास कर उनकर बेटी और दामाद खातिन अगला गीत के उमांग कले हवन बिजमावती संपत के आवाज में रखल। तो चला है गीत उनकर खातिन चलावब जा और चचा गजोधर के का बोलब, नवा लोटो किनलक सेलमो जानत हो लोन लेके लोटो किनलक, तब लोन नहीं भरे सकता तो लाबों का के ओकर लोटोवा सेजी कर देलक। तो चचा तो कपार पे हाथ रखे बोलता, हाय जे जनती तो शादी भी लोन लेके करती।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और भोजपुरी कार्यक्रम के संगे संगे हैजा पर कुमारी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन दागोचिया से और साथ देवत हवन और आज के कार्यक्रम में अपन सब बेटी लोग के नाम जोड़े के खुशी हवन प्रतिमा सुधा लता और उनका जितना गोतनी हवन उनकर जितना बहिन लोग हवन उन सब कोई खातिन परिवार खातिन चला एक संगे हैजा पर बाद वाग विदेशी जी भी हमनी के साथ है देवत हवन अनुषा अपन खास दोस्त के संगे और अगला गीत अभी मनु हरपाल के आवाज में रखल है ये गीत करब जा हैजा पर हवन नीला निमन जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन होशनुआ से और उनकर बेटी हवन सुनीता राम जी संगे हवन उनकर पति और उनकर सब निमन परिवार खातिन करब जा है अगला गीत चला खुशहाली के साथ जुड़ जाइए और ही पप्पू भैया के का बोलब पप्पू भैया कौन दिन खुशी खुशी में चचा से बोले हाँ चचा हम शादी करत हाँ और जेकर से खुशी रहली ना वो भी शादी करता तब बोले हाँ तब बुड़बक काहे तू दोनों के बोलत हव खाली बोलिए तू शादी करत हव बोले नहीं नहीं चचा जेकर से खुशी रहली वो भी शादी करता और हम भी शादी करत हई बोले का बोलत हवे बुड़बक बोले हाँ तो हम अभी उत में शादी करत हैं और वो नवाम में शादी करता है ये तो खुशहाली के बात है। हे पगला

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे चला आगे बढ़ब सा और हैजा पर हमने के संगे जुड़ गल हवन रंभा जी स्विट्जरलैंड से साथ देवत हवन और जुब्बे दालो तो लेके जाए है अगला गीत के का गीत मांगत हवन अपन भगिनी और उनकर बेटी अमीशा खातिर तो बस साथ देते रहिए जा 10:34 हो गल बा मजेदार कार्यक्रम भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: गीत सुनब जा श्वेता बाबूलाल और किशोर खीमिया के आवाज़ में रखल और हाय गीत करब जा साजिद जी खातिन जे हमनी के रोज हिल से साथ देवत अवन और उनकर खास दोस्त दीना सरोवर खातिन जे विदेश में हवन और हाय गीत हा ओ बलमा।

कलकत्ता से छूटल जहाज और है गीत अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लैग से हमनी के संगे जुड़ गल हवन उनकर खातिर उनकर सब परिवार खातिर और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिर पूर्णिमा फुकीरा के आवाज में रखल ये गीत करब जा नीता खेदनी खातिन सेंट जूलिया विलार से उ साथ देवत हवन और खेदनी परिवार और खास कर उनका दोस्त स्वादिका खातिन।

0: बजे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: ललिता पुनीत जी के आवाज में रखल है गीत ओ नारी, और है गीत सब महिला लोग खातिर, सब माता लोग खातिर।

तो चला श्रोता जी, आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे के समय हो गल बाते। सुदेवी जी हमने के वाकवा से साथ देवा थवन ललिता कुशल उनकर खाती नगला गीत, और आत्माराम भैया साथ हवन राम रतन परिवार मालेगा से, और श्यामा रघुनंदन और सब रघुनंदन परिवार खातिन चलाओ अब जा। शारदा सिन्हा के आवाज में रखल है गीत हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गए, और है ये गीत संगे आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त करब जा। आप सब कोई हमने के बहुत प्यार से साथ देलन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करब जा कि है वीकेंड तोहर खातिन बहुत सुखद रही, अपन परिवार संगे एगो बढ़िया समय बिताइया, और आवत समय तोहर खातिन बहुत खुशहाली लेकर आई, बहुत ऊर्जा लेकर आई है ये प्रार्थना करब जा। फेरों से भेट आप सब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम ने सांदी के रात के 9 बजे से 11 बजे ले। तो चलो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि सभी को।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेनिस के साथ आज के स्पोर्ट्स बुलेटिन को शुरू करेंगे। फ्रेंच ओपन में टाइटल फेवरेट वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका बाहर हो गई। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका को हराया जाना श्नाइडर ने 3-6, 7-5, 6-0 से। वीमेन सिंगल में ही क्वालिफायर श्वालिंस्का सेमीफाइनल में पहुंची कालिंस्काया को हराकर। लड़कों में कुबोली ने उग आलियासिमे को हराया और नाल्दी भी क्वालिफाई हुआ अपने हमवतन बेगेचिनी को हराकर। आज लड़कियों का सेमीफाइनल कोस्ट्रिक खेलेगी अंद्रीवा के खिलाफ श्नाइडर श्वालिंस्का। कल लड़कों का सेमीफाइनल मेंसिच वेरेव और नाल्दी कुबोली, ये कल के लिए है। ट्रांसफर न्यूज। ट्रांसफर बाजार का गरम माल है नॉटिंघम फॉरेस्ट का इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन। मैनचेस्टर सिटी का पहला प्रस्ताव, उसका पहला ऑफर स्वीकार नहीं किया गया। फॉरेस्ट अपने जवान शेर को सस्ते में नहीं बेचेगा, उसके लिए एक ब्रिटिश प्लेयर रिकॉर्ड फी चाहिए। अभी ये रिकॉर्ड 105 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का है जो डेक्लन राइस के लिए दिया गया था। सो सस्ते में नहीं बेचा जाएगा एलियट एंडरसन। वैसे मैनचेस्टर सिटी की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के सांड्रो टोनाली पर भी है। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज कल खेले गए। नेदरलैंड्स की हार हुई, अल्जीरिया ने उसे 1-0 से हराया। पोलैंड 2, नाइजीरिया 2, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 0, डेनमार्क 0, अल्बेनिया 0, इजराइल 1 और इटली की जीत लुक्जमबर्ग पर 1-0 से। आज भी अनेक मैच खेले जाएंगे, इनमें फ्रांस आइवोरी कोस्ट के खिलाफ खेलेगा, फिर स्पेन इराक, स्वीडन ग्रीस। वर्ल्ड कप के दौरान डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिलने वाला है। यह अवार्ड उन्हें 12 जून को लॉस एंजेलिस में दिया जाएगा। ये स्टार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है। अमेरिका में फुटबॉल का क्रेज बढ़ाने और ग्लोबल कल्चर पर उसके असर के लिए डेविड बेकहम को सम्मानित किया जाएगा। टेनिस ITF CAT 14 एंड अंडर सर्किट में अलेक्जेंडर तेवेव ने डबल चैंपियन बना। सिंगल्स और डबल जीतकर फाइनल में अलेक्जेंडर ने एडविन सनासी को हराया। और साइकिलिंग में टू डेलिल सिक्लिस के दूसरे चरण सेकंड स्टेज में साउथ अफ्रीका के चानो सिल्वा की जीत हुई। येलो जर्सी अभी फ्रांस के साइक्लिस्ट गियोम जरवेलिया के पास है। कल के एटाप में अलेक्जेंडर मेयर चौथा स्थान ले पाया। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

ये क्या छुपा है इशारे जैसा तुम्हारे होंठों की खामोशी में।

MBC रेडियो, वजह मुस्कुराने की।